मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। आज दिन है बुधवार, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:55 और 35 सेकंड हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की ये पहली सभा।

सुबह की पावन बेला और चिड़ियों की चहचहाहट के साथ आइए करते हैं दिन की शुरुआत। तो श्रोताओं नमस्कार, लखनऊ में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करता है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर पर इस वक्त आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए आइए रुख करते हैं आकाशवाणी दिल्ली की ओर, जहां से अब से बस थोड़ी ही देर बाद यानी 6 बजे से रिले किया जाएगा हिंदी समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब

0: इमारात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपये तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, खेती किसानी से जुड़ी जानकारियों के लिए आइए चलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर। तो प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा, जिसमें आज संकर धान की उन्नत कृषि तकनीक विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रामलखन सिंह। इनसे इस विषय पर बात करने जा रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय। आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां खरीफ में धान उत्पादन की योजना बनाए हैं और खास करके संकर धान, तो इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र सेकेंड मनकापुर गोंडा से वैज्ञानिक सस्य विज्ञान डॉक्टर रामलखन सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां इस बार संकर धान उत्पादन करना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो क्या सलाह है आपकी?
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, संकर धान की उत्पादन के लिए भूमि

0: का चयन, प्रजाति का चयन किसान भाई कर लें। भूमि के चयन के लिए दोमट से मटियार दोमट मिट्टी जिसकी जल धारण क्षमता अच्छी होती है वह भूमि उपयुक्त है। इसकी उन्नतशील प्रजातियों में पंत संकर धान 1, पंत संकर धान 2, नरेंद्र संकर धान 2, PHB 71, KRH 2, प्रो एग्रो 6201, प्रो एग्रो 6444, PAC 835, पूसा आर एस टेन सुगंधित भी है
1: जी,
0: अच्छी प्रजात है, और गंगा नरेंद्र ऊसर संकर धान 3 जो ऊसर भूमि में बोने के लिए अच्छी प्रजात है, सह्याद्री 4, US 312, एराइज प्राइमा 27P31 जिसकी उपज क्षमता ज्यादा है 32 से 35 कुंटल प्रति एकड़ है
1: जी।
0: तो ये प्रजातियां हैं, इनकी उपज 4 से 5 कुंटल प्रति एकड़ सामान्य प्रजातियों से अधिक होती है।
1: अच्छा।
0: संकर प्रजातियां
1: जी,
0: तो इनका किसान भाई अगर उत्पादन लेते हैं, संकर धान की खेती करते हैं तो उनकी उपज अच्छी मिलती है और प्रति इकाई क्षेत्रफल में ज्यादा आय प्राप्त होती है।
1: डॉक्टर साहब, संकर धान की उन्नत कृषि तकनीक की बात चल रही है तो संकर धान की रोपाई करना अच्छा होगा या सीधी बुआई?
0: अगर वैज्ञानिक तकनीक से धान की सीधी बुआई करते हैं तो उससे भी बराबर उत्पादन मिलता है।
1: क्या अभी भी संकर धान की जो उन्नत प्रजातियां हैं उनकी नर्सरी पड़ सकती है?
0: हाँ, इसकी नर्सरी जून के अंतिम सप्ताह तक किसान भाई बुआई कर सकते हैं,
1: यानी नर्सरी डाल सकते हैं।
0: जी।
1: तो नर्सरी प्रबंधन में क्या कुछ खास है डॉक्टर साहब?
0: नर्सरी के लिए जैसे किसान भाई 1 एकड़ में संकर धान की रोपाई करना चाहते हैं तो इसके 10वें से 12वें से 350 से 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में इसकी नर्सरी तैयार करते हैं
1: जी,
0: नर्सरी ऊंचे स्थान पर हो, अच्छी तरह से खेत की तैयारी करें, इसमें सड़ी गोबर की खाद अच्छी तरह से मिला लें,
1: हाँ,
0: और इसकी मात्रा जो होगी 350 से 400 वर्ग मीटर के लिए 7 किलोग्राम मात्रा यूरिया की, DAP की 4.3 किलोग्राम मात्रा और म्यूटा पोटास की 3.3 किलो मात्रा की जरूरत होगी।
1: डॉक्टर साहब मात्रा एक बार खाद की दोबारा दोहरा दें।
0: 1 एकड़ क्षेत्र में संकर धान की रोपाई के लिए इसके 10वें से 12वें हिस्सा 350 से 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में
1: जी
0: धान की नर्सरी तैयार की जाती है, और इस क्षेत्रफल में नर्सरी के क्षेत्रफल में यूरिया की 7 किलोग्राम मात्रा, DAP की 4.3 किलोग्राम मात्रा और म्यूरेट ऑफ पोटास की 3.3 किलो मात्रा की जरूरत होगी।
1: यानी 3 से 3.5 किलो पोटास
0: जी जी
1: उतने नर्सरी के लिए,
0: हाँ
1: एक एकड़
0: जरूरत
1: की
0: है
1: रोपाई के लिए।
0: जी।
1: बीज की मात्रा कितनी लगेगी एक एकड़ के लिए डॉक्टर साहब?
0: 6 से 8 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है
1: जी। फिर नर्सरी की देखभाल में कुछ खास सावधानियां होंगी डॉक्टर?
0: नर्सरी की देखभाल में ये देखा जाता है कि नर्सरी में जिंक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं,
1: और कभी कभी लोहा पोषक तत्व।
0: हाँ लौह तत्व की कमी के लक्षण, जब सफेद रंग की नर्सरी दिखाई देती है, ऊपर का हिस्सा नर्सरी का सफेद दिखाई देना, पत्तियां शुरू हो जाती हैं, तो ये लौह तत्व की कमी के लक्षण होते हैं। जिंक की कमी की पूर्ति के लिए 5 ग्राम जिंक सल्फेट प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें, और जब लौह तत्व की कमी जिसमें सफेद पत्तियां दिखाई दें उस समय फेरस सल्फेट की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे संकर धान की उन्नत कृषि तकनीक के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 9120-85-30-29 9120-85-30-29 9120-85-30-29।
1: डॉक्टर राम लखन सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और संकर धान की उन्नत कृषि तकनीक क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: संकर धान की उन्नत कृषि तकनीक, इस विषय पर खेती किसानी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे किसान भाइयों को जानकारी दे रहे थे डॉक्टर राम लखन सिंह, जिनसे इस विषय पर बातचीत कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। मीडियम वेव के मीटर पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। और अब प्रस्तुत है आज का सुविचार।
3: हमारे जीवन में जल का विशेष महत्व है।

0: तभी तो कहा गया है जल ही जीवन है। वेदों में स्वच्छ पर्यावरण के प्रति जो जागरूकता थी उसे बड़े सशक्त ढंग से प्रस्तुत किया गया है। पहले हम ऋग्वेद में वर्णित जल की महिमा के संबंध में चर्चा करेंगे। नदियों ने जल देने के साथ ही साथ ज्ञान की भी ज्योत जगाई है। इनके किनारे बसे तीर्थ इसके प्रमाण हैं। इसी संदर्भ में कहा गया है, प्रवाहित होकर सरस्वती ने जलराश उत्पन्न की है और इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के ज्ञान का जागरण किया है। महो अर्णा सरस्वती प्रचेत यति केतुना धियो विश्वा विराजत। जल हमारा हितैषी बंधु है। हम एक जेक्षुओं का मात्र स्थानीय जल एक यज्ञ मार्ग से जा रहा है। वह जल हमारा हितैषी बंधु है। वह दूध को मधुर बनाता है। अमूर या उप सूर्य याभिर्वा सूर्य सह तानो हिन्वंत धर्म। अर्थात यह जो सारा जल सूर्य के पास है अथवा सूर्य जिस सब जल के साथ है वह सब जल हमारे यज्ञ को प्रेम पात्र करे। जल में अमृत और औषधि है। इसकी शुद्धता बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य है। हमारी गायें जिस जल का पान करती हैं उसी जल का हम आह्वान करते हैं। जो जल नदी रूप होकर बह रहा है उस जल को हव्य देना हमारा कर्तव्य है। अपो देवी रूपम वे यत्र गाव विवंतिना सिंधुभ्य कर्तुम हवि। आज हम जल के महत्व को समझ नहीं रहे हैं। ऋग्वेद के एक मंत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जल में अमृत है, औषधि है। हे ऋषियों, उस जल की प्रशंसा के लिए उत्साही बनिए। अवसंतरम तप्सु भेषजम अपामुत प्रशस्तये देवा भवत वाजिनः। अगले मंत्र में जल में सब तरह की औषधि होने की बात कही गई है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि इसमें संसार को सुख देने वाली अग्नि है। अवसुमे सोमो अब्रवीत अंदर विश्वानि भेषजा अग्निम च विश्व शंभुम आपश्य विश्व भेषजी। ऋषि कहते हैं, सोम ने मुझसे कहा है कि जल में औषधि है, संसार को सुख देने वाली अग्नि है। जल को रोग नाशक बताया गया है। यह शरीर को पुष्ट करता है। ऋषि की प्रार्थना है, आपह प्रेणित भेषजम वरुथम तन्वे मम योग सूर्य दिशे। अर्थात हे जल, मेरे शरीर के लिए रोग नाशक औषध पुष्ट करो जिससे मैं बहुत दिन तक सूर्य को देख सकूं, अर्थात मेरी आयु बढ़ जाए। जल से ही समस्त जीव प्राण धारण करते हैं, इसलिए जल का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। नदियां अन्नपूर्णा हैं। यदि हम नदियों को प्रदूषण मुक्त रखेंगे, उनकी गति को बाधा रहित रखेंगे, उनमें कूड़ा करकट न डालकर उन्हें शुद्ध रहने देंगे तो वे माता के समान हमें सुखी रखेंगे। अगली ऋचा में सरस्वती की प्रतीक रूप में स्तुति इसी भाव को प्रस्तुत करती है। यजुर्वेद में जल को औषधियों का रस बताया गया है। जल के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। जल विविध रूपों में हमारी रक्षा करता है। वह हमारा जीवन है। ऐसे जल को प्रदूषित होते देख मन अशांत हो जाता है। जल हमारी माता के समान है, यह यजुर्वेद का वाक्य है। आपो अस्मान मात्रा शुद्धयन्तु। अर्थात माता के समान जल जो जगत के निर्माण में सक्षम है हमें पवित्र करे। जब जल माँ के समान है तब हम इसे प्रदूषित क्यों करते हैं? क्या आज का जल हमें पवित्र कर सकता है जबकि वह स्वयं प्रदूषित है? जल को प्रदूषण मुक्त करना हम सबका पुनीत कर्तव्य है। अथर्ववेद के अनुसार जल सुखदायक हैं, इसीलिए उनसे प्रार्थना की गई है, आपो हिष्ठा मयोभुवस तान ऊर्जे दथातन महे अणाय चक्षसी। अर्थात हे जलो, क्योंकि आप सुखदायक हो इसलिए हमें सुखोपभोग करने, रमणीय तत्वों के दर्शन करने तथा परब्रह्म से साक्षात्कार के लिए परपुष्ट करिए।
1: जल जीवन का आधार। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर आशाराम त्रिपाठी के स्वरों में आज का ये सुविचार। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। और श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आस्था प्रार्थना आत्मा व परमात्मा के प्रेम भाव से परिपूर्ण कार्यक्रम

भगवान गणेश की महिमा अपरंपार है। प्रभु अपने भक्तों का सदैव हित करते हैं। हे प्रभु, हम सभी के दुखों का आपको ज्ञान है। हमारी इच्छाओं से, हमारी आशाओं से आप भली प्रकार परिचित हैं। हे प्रभु, आपकी शरण में आकर हम सभी भक्तों को सुख मिलता है।

हमारा जीवन तो बहते पानी के समान है, अगर रास्ते में किसी को शीतलता दे पाएं तो वो हमारा सौभाग्य होगा। तो आइए अपने जीवन को जनहित के काम में लगा दें, क्योंकि जो काम व्यर्थ चला जाता है वो तो कभी वापस लौट कर नहीं आता ना।

हे माँ गंगे, आपकी ममता की कोई सीमा ही नहीं है। माता के चरणों में ही हम सभी भक्तों को सुख मिलता है। माता की इसी ममतामयी छाया में आकर हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जपते हैं गंगा मैया का नाम।

सही अर्थों में वास्तविक धर्म है मानव धर्म। हे मानव, यदि तू अपने हृदय में सत्य, शांति, दया व अहिंसा की भावना रखेगा तो ईश्वर तुझे अपने हृदय में ही मिल जाएगा, क्योंकि ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर आस्था और विश्वास का केंद्र बिंदु है।

हम सभी पर ईश्वर की कृपा यूं ही बनी रहे और हम सभी का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो। इसी शुभेच्छा के साथ आज का भक्तिमय कार्यक्रम आराधना यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। और अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से आज का संगीतमय पाठ। आज सुनिए भाग 205।

भरत जी को चित्रकूट के मार्ग पर अग्रसर होते देख देवराज इंद्र के मन में जो सोच और चिंता हो गई थी, देवगुरु बृहस्पति के शीतल वचनों से उसका शमन हो जाता है। यमुना तट पर पहुंच प्रेम विफल भरत की आंखों में प्रेम और व्यथा के आंसू उमड़ आते हैं। श्री राम के विरह रूपी सागर में डूबते उतराते उनका विवेक जागृत होता है कि शीघ्र ही उन्हें अपने आराध्य के दर्शन होंगे। निषाद राज की सेवा और सहायता से उन्हें पूर्ण संतोष मिला है। मार्ग में जहां जहां श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण ने विश्राम किया था, उन स्थानों को वो श्रद्धा भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। आसपास के गांवों के स्त्री पुरुष भरत का रूप और भ्रातृप्रेम देख परम आनंदित हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से आज का संगीतमय प्रसंग। स्वर अनूप जलोटा और उत्तरा केलकर के थे और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, सुबह के 6:55 होने को हैं। अब से बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले संस्कृत समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मिलित्वा श्रीमोदी अवधानं दत्तवान् यत् भारत जापान देशयोः सम्बन्धः विविधेषु क्षेत्रेषु निरन्तरं सुदृढं भविष्यति। फ्रांस देशस्य एवियन नगरम अद्य वैश्विक कूटनीतेः केन्द्रः अस्ति यत् G7 शिखर सम्मेलनस्य महत्वपूर्णे चरणे अस्ति। भारतस्य सहभागी देशस्य रूपेण सहभागित्वेन सर्वेषां दृष्टिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेन सह बहुप्रतीक्षितायां द्वैपाक्षिक सम्मेलने दृढतया निबद्धः अस्ति यत् अद्य शिखर सम्मेलनावधौ भविष्यति। 25,000 फरवरी मासे वाशिंगटन डीसी इत्यत्र अंतिम वारम मेलनानंतरम उभयोः मध्ये एतत् प्रथमं मेलनं भविष्यति। अद्यतनस्य संवादस्य समये तौ बहुविध क्षेत्रेषु द्वैपाक्षिक सहयोगं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यतः तथा च परस्पर हितानां क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु चर्चां करिष्यतः इत्यपेक्षा अस्ति। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना सह मेलनम् अतिरिच्य अद्य प्रधानमन्त्री श्रीमोदी सर्वेभ्यः लाभाय सन्तुलितं सर्वसमावेशं सुस्थिरं च आर्थिकवृद्धेः पुनरुत्थानम् इत्यस्मिन् विषये तथा कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः सुरक्षितं द्रुतप्रभावी उपयोगं सुनिश्चेतुम् इति विषये G7 इत्यस्य कार्यसत्रे अपि भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमंत्री ईयू परिषदः अध्यक्षेण एंटोनियो कोस्टा इत्यनेन सह ईयू अध्यक्षस्य आयोगस्य अध्यक्षया फॉन डेर लेयन इत्यनया सह त्रिपक्षीय सम्मेलनं करिष्यति। जर्मन चांसलर फेडरिक मर्ज इत्यनेन सह अपि द्वैपाक्षिकोपवेशनं भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः फ्रांस देशस्य एवियन नगरे G7 शिखर सम्मेलने नूतन सहभागित्वस्य निर्माणं तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यभावस्य पुनर्निर्माणं इत्यस्मिन् विषये सत्रम् अभिसम्बोधितवान्। विदेशमन्त्रालयेन सूचितं यत् सत्रावधौ प्रधानमन्त्रिणा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागित्व विनिर्माणे विशेषतः वर्धमान परस्पर सम्बद्ध विश्वे विश्वासस्य महत्वम् अधोरेखितम्। सभायां प्रधानमन्त्रिणा अधोरेखितं यत् भारतं सर्वदा मानवतायै प्रथमम् इति दृष्टिकोणम् अनुसरति। सः अग्रे अकथयत् यत् भारतस्य अन्ताराष्ट्रिय सहभागित्वस्य दूरदृष्टिः वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्य कालातीतदर्शनस्य आधारेण अस्ति, विश्वमेकः परिवारः अस्ति इति। फुट्बाल् क्रीडायां गतरात्रौ न्यूजर्सी क्रीडाङ्गणे प्रथमसमूहस्य आरम्भिकक्रीडायां फ्रांस देशेन सेनेगल देशं 3-1 इति अंकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, हमारी दिनचर्या और हमारी रोज़मर्रा की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, ये रोज़ हम आपको बताते हैं हमारी स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत। और श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में नीना सोनकर हमें बताने जा रही हैं स्वाद और सेहत का दुर्लभ संगम पत्थर फूल के बारे में। आइए सुनते हैं।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, हम बात करने जा रहे हैं आज एक ऐसे मसाले की जो नाम से जितना अनोखा लगता है उतना ही अनमोल भी है। ये है पत्थर फूल, जिसे कई लोग कालापासी या डैगड़ फूल के नाम से भी जानते हैं। आम मसालों की तरह न दिखने वाला ये काले रंग का फूलनुमा तत्व असल में हमारी पारंपरिक पाक शैली और आयुर्वेदिक ज्ञान का एक दुर्लभ रत्न है। पत्थर फूल कोई सुंदर सजावटी फूल नहीं है, बल्कि ये एक सूखी काली और असमान आकार वाली वनस्पति होती है, जिसे हिमालयी क्षेत्रों और विशेष रूप से दक्षिण भारत के जंगलों में पाया जाता है। इसे पेड़ों की छाल से निकाला जाता है और फिर सुखाकर संग्रहित किया जाता है। इसका उपयोग भारतीय रसोई के व्यंजनों में लंबे समय से होता आया है। ये कई प्रकार के औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है। इसकी सुगंध थोड़ी तीखी होती है, कुछ कुछ धुएं जैसी, कुछ कुछ मिट्टी जैसी। जब इसे तेल या घी में भूनते हैं तो ये एक अलग ही खुशबू छोड़ता है जो खाने में

0: गहराई और गर्माहट लाता है। खास तौर पर कुछ एक व्यंजनों में इसका विशेष स्थान होता है, लेकिन शाकाहारी खाना बनाने वाले भी अगर इसे सही मात्रा में इस्तेमाल करें तो इसकी सुगंध और प्रभाव से सब्जियों, दालों या कढ़ी में भी स्वाद की एक नई परत जुड़ जाती है। अब बात करते हैं इसके स्वास्थ्य संबंधी गुणों की, जो शायद आम लोगों को बहुत कम ज्ञात हो। आयुर्वेद में पत्थर फूल को पाचन में सहायक, वात शामक और शरीर को भीतर से गर्माहट देने वाला मसाला माना गया है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, गैस की समस्या रहती है या पाचन कमजोर है, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद होता है। ये आंतों को मजबूत करता है और भोजन को आसानी से पचने लायक बनाता है। यही कारण है कि इसे अधिकतर हैवी और मांसाहारी व्यंजनों में डाला जाता है, ताकि पेट पर बोझ न पड़े। पत्थर फूल में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण भी पाए जाते हैं, जो शरीर को संक्रमणों से लड़ने की शक्ति देते हैं। खासकर बरसात और गर्मियों से लेकर सर्दियों में, जब शरीर जल्दी जल्दी सर्दी, जुकाम या बदहजमी से परेशान हो जाता है, तब पत्थर फूल जैसे मसाले का संतुलित उपयोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है। ये शरीर की गर्मी को बनाए रखता है और विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। सुनने में ये जरूर लगता है कि ये कोई कठिन, पेचीदा या शहरों में दुर्लभ मसाला होगा, लेकिन सच तो ये है कि पत्थर फूल अब ऑनलाइन और कई स्थानीय मसाला दुकानों पर भी उपलब्ध है। बस जरूरत है इसे पहचानने और इसके गुणों को समझने की। ये मसाला दिखने में भले ही अनगिनत और थोड़ा सख्त लगे, लेकिन इसके भीतर छिपी प्राकृतिक औषधीय शक्ति बहुत प्रभावशाली है। ये भी जरूरी है कि हम समझें, पत्थर फूल कोई ऐसा तत्व नहीं है जिसे रोजाना या बड़ी मात्रा में लिया जाए। इसका उपयोग सीमित मात्रा में, कभी कभी विशेष व्यंजनों में किया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी प्रकृति तेज होती है। अत्यधिक सेवन करने से कुछ लोगों को जलन या एसिडिटी जैसी शिकायत हो सकती है, पर जब सही मात्रा में और समझदारी से इसे इस्तेमाल किया जाता है, तब ये भोजन को स्वादिष्ट भी बनाता है और सेहतमंद भी। श्रोताओं, हमारी रसोई सिर्फ स्वाद की जगह ही नहीं, बल्कि ये एक औषधालय भी है, जहाँ हर मसाला, हर बीज, हर पत्ता अपने भीतर कोई न कोई गुण समेटे हुए है। पत्थर फूल उनमें से एक ऐसा मसाला है, जिसे अगर हम अपनी भोजन परंपरा में फिर से स्थान दें, तो यह न केवल हमारी थाली को समृद्ध करेगा, बल्कि सेहत को भी संतुलित रखेगा। तो अगली बार जब आप किसी खास व्यंजन की तैयारी करें, चाहे वो शाही पुलाव हो या किसी ठंडे दिन की गर्मा गर्म कढ़ी, पत्थर फूल को जरूर आजमाइए। इसके स्वाद की परत, इसकी खुशबू और इसके औषधीय गुण तीनों मिलकर आपके अनुभव को खास बना देंगे। आज की स्वास्थ्य चर्चा में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और देसी तत्व के साथ, जो आपके घर की रसोई में छिपा कोई भी रत्न हो सकता है। तब तक स्वाद में परंपरा और सेहत में समझदारी बनाए रखिए। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: स्वाद और सेहत का दुर्लभ संगम, पत्थर फूल। इस विषय पर अभी हमें जानकारी दे रही थी नीना सोनकर, हमारे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। तो श्रोताओं, अब आइए डालते हैं एक नज़र आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर।

न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण का अनुप्रसारण समय रहेगा सुबह 10:10 का। जिले की हलचल आप सुन सकते हैं सुबह 9:15 से, जिसमें आज आप सुनेंगे अंबेडकर नगर और बांदा जिले की हलचल। सुबह 9:30 का वक्त होगा उर्दू कार्यक्रम का। आज की पेशकश होगी आकाशवाणी प्रयागराज के मरकज से, और इस कार्यक्रम में आज पेश किया जाएगा मकाला असगर गोंडवी की शायरी में सूफियाना आहंग। मकाला निगार होंगे डॉक्टर जहांगीर हसन और कला में शायर होंगी ताजवर सुल्ताना। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी,

विषय पर विविधा प्रोग्राम में सुबह 7:10 से आपके साथ होंगी सीमा शाही। मातृ शिशु एवं स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम आंगनबाड़ी के अंतर्गत दोपहर 1:15 से चर्चा होगी, जीवन के पहले 1000 दिनों का महत्व, सुरक्षित प्रसव और अस्पताल में डिलीवरी के फायदे। साथ ही राष्ट्रीय पोषण मिशन और स्वच्छ जल सुरक्षित जल, इस विषय पर आज की भेंट वार्ता आप सुनेंगे नीना सोनकर से। विषय रहेगा क्या होता है सनबर्न गर्मी के मौसम में, त्वचा का कैसे रखें ख्याल, इस विषय पर डॉक्टर प्रदीप शुक्ला की भेंट वार्ता आप सुनेंगे। भेंट करता होंगी नीना सोनकर।

विज्ञान और किसान, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 2:30 से, जिसमें आज आप सुनेंगे धान की उन्नत कृषि तकनीक विषय पर डॉक्टर राजेश कुमार कन्नौजिया की भेंट वार्ता। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय।

श्रोताओं, युवा तरंग कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा शाम 5:10 का, जिसमें आज की बात क्रम के अंतर्गत आज चर्चा होगी तकनीकी शिक्षा पर, साथ ही छोटी बचत का बेहतर उपयोग विषय पर प्रोफेसर अशोक कुमार कैथल की भेंट वार्ता आप सुनेंगे। भेंट करता होंगे डॉक्टर नागेंद्र सिंह रघुवंशी। नई उड़ान कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा शाम 5:45 का। हेलो किसान, किसान भाइयों के लिए ये सजीव फोन इन प्रोग्राम आज प्रसारित किया जाएगा शाम 6:30 से, जिसमें आज के किसान भाई सुनेंगे खरीफ उत्पादन की योजना और तैयारी विषय पर चर्चा, साथ ही साथ गन्ने की फसल में सामयिक प्रबंधन विषय पर निदेशक आज जानकारी देंगे डॉक्टर सत्यानंद सुशील, जो कि निदेशक हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के। प्रस्तुति एवं संचालन होगा डॉक्टर सुशील कुमार राय का। तो श्रोताओं, ये थी हमारी केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। तो श्रोताओं नमस्कार, लखनऊ के इस खास सेगमेंट में अब पेश है विविधा, आइए सुनते हैं।

0: कार लखनऊ के इस खास सेगमेंट में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, आभार। विविधा, ये खास प्रोग्राम लेकर आज हाजिर हूँ मैं सीमा शाही।
1: कि बुंदेली हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिनका नाम भारतीय इतिहास में साहस, शौर्य और देशभक्ति के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा चुका है। जी हाँ, ये हैं खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जब भी भारत की स्वतंत्रता संग्राम की बात होती है तब एक नाम पूरे सम्मान और

0: पुत्र के साथ लिया जाता है और वो है रानी लक्ष्मीबाई का नाम। उनका जीवन साहस, आत्मसम्मान और राष्ट्र प्रेम का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि देशभक्ति और वीरता किसी एक वर्ग या फिर लिंग की पहचान नहीं होती, बल्कि ये एक दृढ़ संकल्प और आत्मबल की पहचान होती है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका, जिन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। बचपन से ही साहसी, निर्भीक और आत्मविश्वासी थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल का विशेष प्रशिक्षण भी प्राप्त था और आगे चलकर उनका यही गुण उन्हें भारतीय इतिहास की सबसे वीर महिलाओं में शामिल कर चुका है।
1: चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी।
0: मणिकर्णिका यानी मनु के विवाह के बाद वो झांसी की रानी बनी, लेकिन उनके जीवन में एक कठिन समय तब आया जब उनके पति महाराजा गंगाधर राव का निधन हो गया और इसी बात का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने अपने लैप्स के सिद्धांत के आधार पर झांसी को अपने अधिकार में लेने का प्रयास किया। लेकिन उस समय रानी लक्ष्मीबाई ने दृढ़ता से इस बात का घोर विरोध किया और घोषणा कर दी कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी।
2: मैं लक्ष्मीबाई हूँ झांसी की रानी, झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने दूंगी।
0: ये केवल एक वाक्य नहीं था, बल्कि ये भारत की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की एक बुलंद आवाज थी। सन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। इस संघर्ष में रानी लक्ष्मीबाई ने अद्भुत नेतृत्व और वीरता का परिचय दिया था। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजी सेना का डटकर सामना किया। युद्ध के मैदान में उनका साहस देखकर क्या मित्र क्या शत्रु दोनों ही आश्चर्यचकित रह जाते थे। इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में आज भी दर्ज है कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर वो युद्ध भूमि में उतरी थी। ये दृश्य केवल एक माँ का नहीं, बल्कि एक वीर योद्धा का भी प्रतीक था, जो अपने कर्तव्य और मातृभूमि की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करने को बिल्कुल तैयार थी।

रानी लक्ष्मीबाई का जीवन केवल युद्ध की कहानी नहीं है, ये आत्मसम्मान, नेतृत्व, साहस और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणादायक गाथा है। उन्होंने उस समय महिलाओं की शक्ति और क्षमता का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसने आने वाली पीढ़ियों को एक प्रेरणा दी। महान कवित्री सुभद्रा चौहान ने उनकी वीरता का वर्णन कुछ यूं किया है कि बुंदेली हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, इन पंक्तियों ने रानी लक्ष्मीबाई को जन जन के हृदय में अमर बना दिया। आज भी जब साहस, त्याग और राष्ट्र प्रेम की चर्चा होती है, तब तब रानी लक्ष्मीबाई का नाम सम्मान पूर्वक लिया जाता है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि यदि मन में दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी बाधा हमें अपने लक्ष्य से नहीं डिगा सकती। तो दोस्तों, हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने कर्तव्यों का निष्ठा पूर्वक पालन करना चाहिए। अंत में चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगी कि वीरता केवल रणभूमि में नहीं बल्कि सत्य, न्याय और कर्तव्य के लिए खड़े होने में भी होती है। आइए हम सभी रानी लक्ष्मीबाई के साहस, आत्मसम्मान और राष्ट्र प्रेम से प्रेरणा लें और अपने जीवन में दृढ़ संकल्प और सकारात्मक सोच को अपनाएं। इसी प्रेरणादायक विचार के साथ आज के विविधा कार्यक्रम से सीमा शाही को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नमस्कार लखनऊ का ये खास प्रोग्राम विविधा। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। अब से बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे गोरखपुर केंद्र से रिले प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था, आगामी त्योहारों, नीट UG पुनः परीक्षा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। 21 जून को प्रस्तावित नीट UG पुनः परीक्षा में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में अभ्यर्थियों को 50% छूट के दिए निर्देश। नीट UG पुनः परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाया प्रतिबंध। संदेश संपादन सुविधा भी 30 जून तक रहेगी बंद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 19 जून को पूर्वांचल को देंगे 3 रेल सेवाओं की सौगात। अब छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का मऊ के रास्ते होगा संचालन। और राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े स्कूलों और मान्यता प्राप्त स्कूलों में 24 जून तक बढ़ाया ग्रीष्मकालीन अवकाश। अब 25 जून से शुरू होंगी शैक्षणिक गतिविधियां। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था, आगामी पर्व त्योहारों, नीट UG पुनः परीक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि 21 जून को प्रस्तावित नीट UG परीक्षा में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में प्रवेश पत्र दिखाने पर किराए में 50% की छूट दी जाए। मुख्यमंत्री ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग

0: दिवस के अवसर पर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों एवं 762 नगरीय निकायों में अमृत सरोवरों एवं ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों पर योग कार्यक्रम आयोजित करने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान श्री योगी ने मुहर्रम के दौरान निर्धारित नियमों व मानकों का पालन करवाते हुए शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा आगामी 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले दशक में बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड स्तर पर उन्नयन हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने देश के लोगों के लिए अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया ताकि विकसित भारत के स्वप्न को साकार किया जा सके। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आधुनिक अवसंरचना किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान होती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के यशस्वी नेतृत्व में भारत ने बीते 12 वर्षों में इस दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धियां अर्जित की हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल लखनऊ में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5,37,00,000 आवास का आवंटन किया है, जिसमें से 62,00,000 से अधिक परिवार यूपी के शामिल हैं। श्री खन्ना ने कहा कि इस दौरान स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
1: 2014 से पहले हमारे देश में इतने मेडिकल कॉलेज नहीं थे, इतने डॉक्टर्स नहीं थे कि हम ठीक प्रकार से सभी लोगों को इलाज की सुविधा दे सकें। तो उसके पहले उन्होंने ये मन बनाया कि हम ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स पैदा करेंगे और डॉक्टर्स पैदा होते सिर्फ मेडिकल कॉलेजों में 818 मेडिकल कॉलेज, जिसमें से 431 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का उन्होंने मन बनाया। और MBBS में कुल 1,28,976 सीटें थी, जिसमें से 77,628 सीटों की वृद्धि की गई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्करे तैयबा, जैश-ए- मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में रेल सेवाओं के विस्तार और यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने से जुड़ी कई मांगों को रेल मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। ये जानकारी प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आगामी 19 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश को कई रेल सेवाओं की सौगात देंगे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में रेल

0: मुख्यमंत्री बिहार के छपरा से ऑनलाइन जुड़कर जनता को संबोधित भी करेंगे। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री श्री शर्मा ने बताया कि उनकी मांग पर दोहरेघाट औड़ियार नई मेमू ट्रेन का वाराणसी तक संचालन, मऊ आनंद विहार स्पेशल ट्रेन का मऊ से नियमित संचालन और छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन मऊ के रास्ते किए जाने को मंजूरी मिल गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच आज लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। मैच को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: इकाना क्रिकेट स्टेडियम में श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय मैच के लिए दोनों टीमें लखनऊ पहुंच चुकी हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय मैच के मद्देनजर स्टेडियम के अंदर और बाहर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने स्टेडियम के आसपास कई मार्गों पर यातायात डायवर्जन भी लागू किया है जो कि सुबह 9 बजे से रात में मैच की समाप्ति तक लागू रहेगा। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रदेश में बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े स्कूलों और मान्यता प्राप्त स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश को 24 जून तक बढ़ा दिया है। बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक अब हर साल गर्मियों की छुट्टियां 20 मई से 24 जून तक रहेंगी और नियमित शैक्षणिक गतिविधियां 25 जून से शुरू होंगी। हालांकि शिक्षक, शिक्षा मित्र, प्रशिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी 22, 23 और 24 जून को स्कूलों में उपस्थित रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था, आगामी त्योहारों, नीट यूजी पुनर्परीक्षा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। 21 जून को प्रस्तावित नीट यूजी पुनर्परीक्षा में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में अभ्यर्थियों को 50% छूट के दिए निर्देश। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाया प्रतिबंध। संदेश संपादन सुविधा भी 30 जून तक रहेगी बंद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 19 जून को पूर्वांचल को देंगे 3 रेल सेवाओं की सौगात। अब छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का मऊ के रास्ते होगा संचालन। और राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े स्कूलों और मान्यता प्राप्त स्कूलों में 24 जून तक बढ़ाया ग्रीष्मकालीन अवकाश। अब 25 जून से शुरू होंगी शैक्षणिक गतिविधियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
0: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: मीडियम वेव 401.6।

मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, जिसमें आइए आज सुनते हैं अंकित सिंह का ख्याल गायन। राग है भैरव, विल एक ताल में और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है। आइए सुनते हैं।

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अंकित सिंह का ख्याल गायन, राग था भैरव, द्रुत तीन ताल में निबद्ध थी। आपके साथ तबले पे संगत करता थे सौरभ सिंह व हारमोनियम पर संगत थी दिनकर द्विवेदी की। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। सुबह के 8 बजने को हैं, अब से बस थोड़ी ही देर में रिले किया जाएगा समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत

0: दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 800

0: 50 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
1: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपये तक की मांग की जा रही है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
3: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन

0: जिनसे जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्ता की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजादे मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reach consensus on implementation of long-pending Keshau Dam project to revive Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of 3-match series in Lucknow this afternoon. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has called on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Avion, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life. Highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia, Prime Minister said, it is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to building international solidarity and needed to be addressed as a priority. The French city of Avion remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President

0: Now for a look at today's newspapers. It's over to Tanvi Khurana.
1: Thank you, Sarabjit. Most newspapers today open with the details of the G7 in France, addressing an outreach with Trump present, Modi flags seafarers' safety at G7 is the lead in the Hindustan Times. The Indian Express informs government bans Telegram until 22nd of June in bid to secure NEET retest. The Statesman in its editorial piece captioned, "Peace without peace," writes, "The announcement of a framework agreement between the United States and Iran has understandably been greeted with relief. Oil prices have retreated from their wartime highs, stock markets have rallied, and governments dependent on Gulf energy supplies have welcomed what appears to be a retreat from the edge. But relief is not the same as resolution. For weeks, the conflict demonstrated how a regional confrontation can swiftly become a global economic problem." The Delhi Tribune says to curb pollution, Delhi may soon allow only BS6 vehicles. And finally, with the weather being benevolently pleasant on Tuesday, the Statesman has captured a picture of people relaxing under the shade of trees on the lawns near India Gate. And with that, it's back to you, Sarabjit.
0: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reach consensus on implementation of long-pending Kishau Dam project to revive Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of three-match series in Lucknow this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सभी मुल्कों से जोर देकर कहा है कि आलमी बहरी गुजरगाहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और मल्लाहों को टकराव से वाबस्ता खतरात के तनाजुर में तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के शहर एवियन में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। दरियाए जमुना के आहया के लिए तवील अरसे से जेर इल्तवा किशाऊ डैम प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के बारे में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के माबेन इत्तेफाक राय हो गया है। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने उम्मीदवारों से नीट के दोबारा इम्तिहान का पर्चा लीक होने के दावों से होशियार रहने को कहा है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में तेज़ बारिश के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान 3-1 रोज़ा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज दोपहर लखनऊ में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सभी मुल्कों से जोर देकर कहा है कि आलमी बहरी गुजरगाहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और मल्लाहों को टकराव से वाबस्ता खतरात के तनाजुर में तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। फ्रांस के शहर एवियन में कल G7 की सरबराह कॉन्फ्रेंस में एक राबता इजलास से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मगरबी एशिया में लड़ाई से आलमी तजारत में रुकावट पड़ गई है और जानी नुकसान भी हुआ है। मगरबी एशिया में बहरी तिजारत को लाहिक बढ़ते हुए खतरात और अदम इस्तेहकाम की इंसानी कीमत को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मल्लाहों की सलामती को यकीनी बनाना हमारी जिम्मेदारी है जो आलमी बहरी तिजारत के जरिए सभी मुल्कों को बाहम मुंसलिक करते हैं। वजारत खारजा ने बताया कि वजीर आजम ने बैन अलावामी साझेदारी कायम करने, खासतौर पर बढ़ती हुई बाहम मुंसलिक दुनिया में एतमाद की अहमियत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि बैन अलावामी साझेदारी को अतिया देने वाले और लेने वाले फरीक से आगे बढ़कर यगानगत और मुसावियाना मिल्कियत की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि बैन अलावामी कानून के लिए एहतराम का फुकदान बैन अलावामी यकजहती कायम करने में सबसे बड़ी रुकावट है

0: और इस पर तरजीही बुनियाद पर तवज्जो दिए जाने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की खातिर बैन-उल-अक़वामी साझेदारी में मुज़ाकरात और सिफारतकारी को तरजीह दिए जाने की ज़रूरत है। फ्रांस का शहर एवियां इस वक्त आलमी सिफारतकारी का मरकज़ बना हुआ है। वहाँ G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस अहम मरहले में दाखिल हो रही है। भारत एक साझेदार मुल्क की हैसियत से इसमें शिरकत कर रहा है। सबकी निगाहें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान आज होने वाली दोतरफा मीटिंग पर लगी हुई हैं, जिसका काफ़ी इंतज़ार किया जा रहा था। ये मुलाकात सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर हो रही है। फरवरी 2025 में Washington DC में दोनों लीडरों के दरमियान मुलाकात के बाद से ये पहली बिल मुशाफा मीटिंग है। उम्मीद है कि आज की मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमा मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा इश्तराक को मजीद वसअत देने के लिए वसीतर तबादले ख्याल करेंगे। साथ ही वो इलाकाई और बाहमी मफाद के आलमी उमूर पर भी बातचीत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ये मीटिंग काफ़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि भारत एक बड़ी आलमी ताकत के तौर पर उभरा है और आलमी बिरादरी भी पेशीदा आलमी चैलेंजों के हल के लिए अब और ज़्यादा भारत का रुख कर रही है। आलमी मामलात पर तबादले ख्याल को जहद देने में भारत के बढ़ते हुए रोल से उसका सिफारती रबते का दायरा बढ़ने और मुख्तलिफ फोरमों में आलमी रहनुमाओं के साथ सरगम रबतों की अक्कासी होती है। कल सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रबता इजलास में वजीर आजम ने बैन-उल-अक़वामी साझेदारी कायम करने और ख़ास तौर पर बढ़ती हुई बाहम मुंसलिक दुनिया में एतमाद की अहमियत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने इस बात को भी उजागर किया कि भारत ने हमेशा इंसानियत मुकद्दम का रवैया इख्तियार किया है। वजीर आजम ने कहा कि भारत की ज़ेर कमान किए गए मुख्तलिफ इकदामात से इस बात की अक्कासी भी होती है, जिनमें बैन-उल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद कुदरती आफात से पैदा हालात से निमटने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे का मखलूत इत्तेहाद, आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम मुहिम शामिल हैं। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि बैन-उल-अक़वामी साझेदारी के भारत के नजरिए की बुनियाद वसुधैव कुटुंबकम यानी दुनिया एक कुनबा है के दायमी फलसफे में पिन्हा है। फ्रांस के शहर एवियां से अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: अमरीकी सदर के साथ मुलाकात के अलावा वजीर आजम नरेंद्र मोदी G7 वर्किंग इजलास में भी शिरकत करेंगे, जिसका मौजू है सभी के फायदे के लिए मुतवाजन जामे और पायदार माशी तरक्की को फ़ाल बनाना। इसके अलावा जनाब मोदी मसनूई जहानत के महफूज तेज रफ्तार और मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के मौजू पर वर्किंग लंच में भी शामिल होंगे। वजीर आजम मोदी यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर अंतोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन के सदर वॉन देर लेन के साथ सिफरीकी मीटिंग करेंगे और जर्मनी के चांसलर फ्राइडरिख मर्ज के साथ दोतरफा मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर कनाडा और बरतानिया के वज़राए आज़म और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के साथ दोतरफा बातचीत की थी। जनाब मोदी ने केनिया, मिस्र और जनूबी कोरिया के सुदूर नीज जापान की वजीर आजम से भी मुलाकात की। G7 मुल्कों ने भारत समेत कई साझेदार मुल्कों के साथ सेहत और तरक्की से मुतालिक आलमी इश्तराक को मुस्तहकम बनाने के लिए कई इकदामात का ऐलान किया है। G7 के रहनुमाओं ने जमहूरिया कांगो और युगांडा में इबोला बीमारी के फिर से जोर पकड़ने के तनाजुर में तालमेल के साथ बैन-उल-अक़वामी कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर दिया। भारत, मिस्र, केनिया और जनूबी कोरिया ने भी इकदामात में तेज़ी लाने की अपील की, जिसमें राबते में आने वाले अफराद का पता लगाना, सरहद पर निगरानी और बेदारी पैदा करना शामिल है। इन रहनुमाओं ने इबोला वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीन तैयार करने, तशखीस और इलाज मुआवजे के लिए मदद करने का भी वादा किया है। वजीर दाखला अमित शाह ने तवील अरसे से जेर इल्तवा केशाऊ कसीर मकसदी बांध प्रोजेक्ट के मामले पर कल नई दिल्ली में एक अहम मीटिंग की सदारत की। इस प्रोजेक्ट का मकसद दरियाए जमुना का अहया करना है। एक बयान में उमूर दाखला की वजारत ने कहा है कि मजकूरा प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत करने से इत्तेफाक किया है। इसके बाद केशाऊ प्रोजेक्ट को मंजूरी के लिए मरकजी काबीना के सामने पेश किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। इम्तिहानात का इनाकात कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने वालदैन और उम्मीदवारों से जोर देकर कहा है कि वो नीट इम्तिहानात से पहले घोटाला

0: फर्जी सबूत के वीडियोस भी गर्दिश कर रहे हैं जिनमें इम्तिहान से पहले की चैट्स दिखाई गई हैं। एनटीए ने अपने डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह की वीडियो भी जारी की है जिसमें वो मुल्क में इस ऐप तक रसाई को ब्लॉक करने की वजह बता रहे हैं। भारत ने पिछले 12 साल में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों की बुनियाद पर काबिल-ए-ज़िक्र तब्दीलियां की हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की भलाई और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए बहुत से अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम मुल्क की विरासत के तहफ्फुज और फरोग के तहत हुकूमत के इकदाम का जिक्र कर रहे हैं।
1: जनवरी 2024 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में अजीमुश्शान श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अंजाम दी, जो सदियों से जारी एक उमंग को पूरा करने का वक्त था। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए एक अकीदतमंद पंकज जारिया ने अपने ख्यालात का इजहार किया।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: अक्टूबर 2022 में मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में महाकाल लोक प्रोजेक्ट के पहले मरहले को मुल्क के नाम वक्फ किया गया। इस राहदारी में अजीमुश्शान मुजस्मों, म्यूरल्स और फन तामीर के जरिए भगवान शिव की जिंदगी और रिवायतों की अक्कासी की गई है। वाराणसी में दिसंबर 2021 में काशी विश्वनाथ राहदारी का इफ्तिताह किया गया था। इस राहदारी के जरिए काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी से मिलाया गया है। हमारे नामानिकार से बात करते हुए वाराणसी के एक शहरी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ राहदारी से मंदिर आने वाले अकीदतमंदों को काफी सहूलत मुहैया हुई है।
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: इन बड़ी तब्दीलियों से मुस्तकबिल की तरफ बढ़ने के साथ साथ सकाफती जड़ों को मजबूत करने की जानिब मुल्क के अहद की अक्कासी होती है।
0: भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज ज़ैली, हिमालयी, मगरबी बंगाल और सिक्किम में कुछ मकामात पर शदीद बारिश की पेशगोई की है। आसाम, मेघालय, बिहार, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में औसत से शदीद बारिश का इम्कान है। IMD के मुताबिक राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज चमक का इम्कान है। इधर छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के हालात का इम्कान है। साहिली आंध्र प्रदेश, गंगाई मगरबी बंगाल, कोंकण, गोवा और उड़ीसा में आज गर्मी और हब्स का मौसम रह सकता है। मर्दों के क्रिकेट में आज लखनऊ में 3 मैचों की सीरीज के दूसरे ODI में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम इस सीरीज में 1-0 से आगे है और वो आज का मैच जीतकर इस सीरीज को अपने नाम करने की कोशिश करेगी। खवातीन क्रिकेट में आज लीड्स के हेडिंगले में ICC खवातीन T20 आलमी कप में भारत और नेदरलैंड्स आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। हरमनप्रीत कौर की क्यादत में भारतीय टीम इतवार को बर्मिंगम में खेले गए पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रन से शिकस्त देने के बाद अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने की कोशिश करेगी। फुटबॉल में नॉर्वे ने फीफा आलमी कप में अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में ग्रुप एक के अपने पहले मैच में इराक पर 4-1 से जीत हासिल करके वापसी की है। अब नॉर्वे ग्रुप एक में सरफहरिस्त आ गया है। इससे पहले फ्रांस ने न्यू जर्सी स्टेडियम में फीफा आलमी कप 2026 के ग्रुप एक के पहले मैच में सेनेगाल को 3-1 से हराया था। इस मैच में काइलियन मैप्पे ने अपने करियर का 58वां गोल करके एक रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने आलमी कप में लियोनेल मेस्सी का भी अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने फ्रांस के शहर एवियान में मुनाकिदा G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत से मुतालिक खबर को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब और कई दीगर अखबारात ने

0: ये गीत आप सुन रहे थे अलका याग्निक और अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ में। माया गोविंद की रचना थी और संगीत था अनुमलिका, फिल्म थी टक्कर। और आइए आपको बताते हैं इस गीत की फरमाइश का मेल हमें कहां से आया था। जी हां, ये मेल हमें आया था जसपुर उत्तराखंड से। लिखने वाले हमारे श्रोतागण हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफ़त, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर ने। तो हमने आपको सुनवाया आपकी पसंद का ये गीत, और आप सब भी हमें मेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर और सुन सकते हैं अपने पसंदीदा फिल्मी गीत। तो हमारी मेल आईडी नोट करें जल्दी से। हमारी मेल आईडी है आपके गीत आपके मेल आपके गीत @gmail.com।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: पिटारा में सुनिए, रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: आपके मेल आपके गीत प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। तो श्रोताओं, चलिए शामिल करते हैं इस कार्यक्रम में हमारा अगला मेल, और आइए आपको बताते हैं ये मेल हमें किसने लिखा है। ये मेल हमें लिखा है बाल कृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा, राहुल शर्मा ने। इन्होंने ये मेल हमें लिखा है नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब के गांव से। तो आपने सुना चाहा है डर फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जो कि उदित नारायण की आवाज़ में है। तो आइए आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: उत्तर प्रदेश के प्रथम नैक ए प्लस प्लस मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, बीसीए, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: श्रोताओं, प्रत्येक बुधवार शाम 6:30 से आप सुन सकते हैं कार्यक्रम हेलो किसान, जिसके प्रायोजक हैं इफ्को, और साथ ही एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। श्रोताओं, आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। तो जल्दी से करें हमें मेल इस ईमेल आईडी पर aapkemailaapkegeet@gmail.com। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले मेल की ओर और जानते हैं अगली फरमाइश किसकी आई हुई है। तो ये फरमाइश आई है सिद्धार्थ गोंडानी, अर्चना ताई गोंडानी, हीरामण शेंडे और प्रणय प्रसिद्धि प्रतिभा गोडानी। तो इन्होंने भेजा है हमें ये मेल ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से। तो चलिए आपको सुनवा देते हैं ये गीत फिल्म इम्तिहान से आपकी फरमाइश पर। अमित कुमार की आवाज़ है, अनु मलिक का संगीत और फैज़ अनवर की रचना।

अमित कुमार की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फैज़ अनवर का लिखा ये गीत अनु मलिक की बनाई तर्ज पर। फिल्म थी इम्तिहान। श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत, और इस कार्यक्रम में आइए अगला गीत शामिल करते हैं बाजीगर फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं जफर गोरखपुरी ने, संगीत है अनु मलिक का और आवाजें हैं आशा भोसले और विनोद राठौर की। तो आइए

इस गीत को सुनवाने से पहले आपको बता देते हैं इस गीत की फरमाइश का मेल हमें कहाँ से आया है। जी हाँ, इस गीत की फरमाइश का मेल हमें लिखा है आर्यन वर्मा ने। तो आइए आपकी फरमाइश पर आपको सुनवा देते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: मुजफ्फर गोरखपुर की बनाई तर्ज पर आप सुन रहे हैं, माफ कीजिएगा, जफर गोरखपुरी की रचना आप सुन रही हैं हनु मलिक की बनाई तर्ज पर बाजीगर फिल्म से। गीत को गाया है आशा भोसले के साथ विनोद राठौर ने। इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। और श्रोताओं, अब प्रस्तुत है जिले की हलचल, तो आइए आपको सुनवाते हैं आज अंबेडकर नगर और बांदा जिले की हलचल, आइए सुनते हैं।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अंबेडकर नगर और बांदा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अंबेडकर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुराग चौधरी का।
2: केंद्र सरकार के 12 साल पूरा होने पर अंबेडकर नगर के सभी विकास खंडों में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर एवं स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार युवाओं, महिलाओं और गरीबों के कल्याण पर विशेष ध्यान दे रही है। सरकार अपने जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के हर तबके के लोगों को लाभ पहुंचा रही है और इसी का परिणाम है कि आज हमारा देश सशक्त बन रहा है। अंबेडकर नगर में भूमि विवादों के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी ईसाप्रिया के निर्देश पर जिले के सभी तहसीलों के ग्राम पंचायतों में भूमि विवाद निस्तारण चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अकबरपुर तहसील की उप जिलाधिकारी प्रतीक्षा सिंह ने बताया कि ग्राम प्रतापपुर चमुरखा में 56, लोरपुर पालहन में 75, चोनगांव में 39, तारा खुर्द में 30 और औरंगाबाद में 35 भूमि विवादों का निस्तारण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर मिझौड़ा चीनी मिल में जन जागरूकता एवं बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्रमिकों को लेकर चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया गया कि श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले या सुनिश्चित किया जाए। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अंबेडकर नगर में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 21 जुलाई को शून्य दुर्घटना दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए कलेक्ट्रेट सभागार में एक प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया है। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने अंबेडकर नगर का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान चारू चौधरी ने जिला अस्पताल, वन स्टाफ सेंटर, वृद्धा आश्रम का निरीक्षण किया। चारू चौधरी ने सर्किट हाउस में आयोजित जन चौपाल में महिलाओं की समस्याओं को सुना और उनके निदान का निर्देश दिया। अंबेडकर नगर में जिलाधिकारी ईसाप्रिया की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई। बैठक में जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं और कर्मचारियों की उपलब्धता एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़करण पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। सरकार की यह योजना पक्के मकान में रहने की गरीबों की मुराद पूरी कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी इंद्रावती ने बताया,
3: हमारा परिवार एक झोपड़ी में रहता था, पक्का मकान एक सपना जैसे था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे उस सपने को पूरा कर दिया। अब हमारे पास अपना पक्का घर है।
2: अंबेडकर नगर में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस विशेष अभियान चला रही है। महिला पुलिसकर्मी सार्वजनिक स्थलों, बैंकों, तहसीलों आदि स्थानों पर जाकर महिलाओं को उनके अधिकार और सुरक्षा के बारे में जागरूक कर रहे हैं। मुहर्रम के त्यौहार के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पुख्ता तैयारी कर रहा है। संवेदनशील इलाकों में जगह जगह सुरक्षा चौकियां बनाई जा रही हैं। जिलाधिकारी ईसाप्रिया और पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने शहर का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था

0: का जायजा लिया। अम्बेडकर नगर में इस समय विकास कार्य तेजी से चल रहा है। जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत के द्वारा ग्रामीण इलाकों में तेजी से विकास कार्य कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और नाली निर्माण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अम्बेडकर नगर में महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज द्वारा मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा निर्णय लिया गया है। कॉलेज प्रशासन अब शाम 4 बजे तक ओपीडी का संचालन कर रहा है। शाम 4 बजे तक मरीजों को अस्पताल की सारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में सिर्फ अम्बेडकर नगर मेडिकल कॉलेज में लागू हुई है। कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुकेश कुमार यादव ने बताया कि मरीजों की सुविधा के लिए यह कदम उठाया गया है और इसका लाभ भी मिल रहा है। अम्बेडकर नगर में मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना को धरातल पर लागू करने के लिए प्रशासन सक्रिय है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को अनुदान मिलेगा। इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी ईशा प्रिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु जनपद के कृषकों एवं उद्यमियों को विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्राप्त लक्ष्य एवं अनुदान आदि की समीक्षा की गयी। बैठक में जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत इच्छुक कृषक अपना पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं अथवा जन सेवा केंद्र के माध्यम से करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद अंबेडकर नगर को विभिन्न उद्यानिक कार्यक्रमों के लिए लक्ष्य आवंटित किए गए हैं, जिनमें सब्जी क्षेत्र विस्तार, पुष्प क्षेत्र विस्तार, फल क्षेत्र विस्तार, मसाला फसलों का विकास, प्याज क्षेत्र विस्तार, फेसिंग मल्चिंग तथा सघन बागवानी कार्यक्रम शामिल। किसानों को टिशू कल्चर, मशरूम उत्पादन इकाई, EDBE, वर्मी वेड तथा मल्चिंग जैसे कार्यक्रमों का भी लाभ प्रदान किया जाएगा। जिलाधिकारी ने जनपद के कृषकों से अधिक संख्या में योजना का लाभ लेने हेतु समय से आवेदन करने की अपील की है।
1: अम्बेडकर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बांदा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय निगम का।
2: जनपद के प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद विगत 5 जून को पहली बार बांदा पहुंचे प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने स्थानीय सर्किट हाउस में प्रशासनिक समन्वय समिति की बैठक की। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासनिक व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। बाद में स्थानीय कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से बात करते हुए उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि डबल इंजन सरकार के द्वारा बांदा का बेहतर विकास किस तरह से हो, इसको लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक लोगों के साथ चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा जनजीवन किस तरह से सुगम और व्यवस्थित हो, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। जनपद के अधिकारी सरकार की आशा के अनुरूप जनता की बेहतर सेवा कर रहे हैं। जहां असुविधा होगी वहां और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। दिनेश प्रताप सिंह ने वार्ता के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा,
3: केवल सरकार को कटघरे में खड़ा करके सस्ती लोकप्रियता पाने के उद्देश्य से चर्चा करते हैं। जब भारत पे संकट हो तो विदेशी नागरिक नहीं, भारत के नागरिक बन करके देश के प्रधानमंत्री जी का साथ दें। भारत की न्यायालय परीक्षण कर रही है कि राहुल गांधी भारतीय हैं भी या नहीं, इसी कारण वो भारत के विपरीत चर्चा करते हैं।
2: जनगणना कार्य को पूरा करने में प्रदेश में बांदा जनपद प्रथम स्थान पर है। बांदा में काफी तेज गति से जनगणना का कार्य संपन्न हुआ है। इस कार्य में समयबद्ध तरीके से बेहतर कार्य करने वाले प्रगणकों को जिला प्रशासन के द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस वर्ष बांदा पूरे देश में सबसे अधिक तापमान वाला जनपद बना रहा। इसके बावजूद भीषण गर्मी में भी यहां जनगणना कार्य में लगे प्रगणकों ने पूरे मनोयोग से कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा कर लिया। बांदा के जिलाधिकारी अमित आचेरी ने बताया कि प्रभावी मॉनिटरिंग एवं जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों के फल स्वरूप सिर्फ 15 दिनों में कार्य पूर्ण कर जनपद बांदा ने डिजिटल हाउस लिस्टिंग संबंधी कार्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने बताया,
4: बांदा पूरे प्रदेश में सबसे पहला जनपद बना जिसने अपने फेज 1 सेंसस को पूरा किया, और इसके लिए यहाँ के सभी बांदा के जनपदवासी सबको मैं शुक्रगुजार हूँ कि सबने इतना कोऑपरेट किया हमारी टीम्स के साथ, और हमारे न्यूमरेटर्स, चार्ज ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिशियल्स, फील्ड ऑफिसर्स, ये सभी बधाई के पात्र हैं, और इन सबकी मेहनत के कारण हम लोग ये मुकाम हासिल कर पाए हैं।
2: यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य विगत 28 मई को बांदा पहुंचे, जहां वे जनपद के चिल्ली गांव में आयोजित ग्राम तीर्थ स्थापना कार्यक्रम के समापन में शामिल हुए। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय मेडिकल कॉलेज के सभागार में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। बाद में मुख्यमंत्री ने भाजपा जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। जनपद के चिल्ली गांव में आयोजित ग्राम तीर्थ स्थापना कार्यक्रम में आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रगति के साथ छेड़छाड़ करने के परिणाम हम भुगत रहे हैं। हमने पेड़ काटे लेकिन लगाने का काम नहीं किया, जल का दोहन तो किया लेकिन संरक्षण नहीं किया, हमें प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि सभी जगह जनता की सुनवाई हो, साथ ही हमारे कार्यकर्ताओं की समस्याओं का भी समय से निस्तारण हो। कांग्रेस के द्वारा महंगाई पर प्रदर्शन

0: करने को लेकर उपमुख्यमंत्री ने कहा,
1: ऊर्जा संकट के समय एक गंदी राजनीति करने वालों को जनता ही जवाब दे। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिस देश ने डीजल पेट्रोल गैस के दाम न बढ़ाए। सबसे कम दाम बढ़ाने का काम कहीं हुआ है तो भारत में हुआ है।
0: पुलिस ने बांदा नगर क्षेत्र में नकली और मिश्रित गुटखा निर्माण करने वाली फैक्ट्री बरामद कर मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से लगभग 2 लाख की कीमत के निर्मित व अर्ध निर्मित गुटखा और गुटखा बनाने की सामग्री सहित बड़ी कंपनियों के डुप्लीकेट रैपर भी बरामद किए हैं। बांदा की सहायक पुलिस अधीक्षक नेविष्टक ने बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र के कालूकुआं मोहल्ले से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मकान पर नकली व अपमिश्रित गुटखा बनाया जा रहा है। जानकारी होने के बाद तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वहां मौजूद गुटखा निर्माण कर रहे एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया, जिसके पास से पुलिस को अवैध गुटखा बनाने वाली सामग्री सहित भारी मात्रा में निर्मित व अर्ध निर्मित गुटखा बरामद हुए हैं। जनपद के कमासिन क्षेत्र में 74.91 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन सिंह वाहिनी पंप नहर परियोजना का कांड अब कार्य अब अंतिम चरण पे है। 2.5 साल में इस परियोजना का 90% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नवंबर माह तक इसका कार्य पूरा हो जाएगा। इस कार्य की शुरुआत दिसंबर 2023 को हुई थी। इस आधुनिक पंप नहर की क्षमता 50 क्यूसेक की है। कमासिन और इसके आसपास के दर्जनों गाँव के किसानों को सिंचाई के लिए पानी की समस्या होती है, लेकिन सिंह वाहिनी पंप नहर के निर्माण से अब किसानों की यह समस्या दूर हो जाएगी।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: अभी आप सुन रहे थे जिले की हलचल। आपने सुनी अंबेडकर नगर और बांदा जिलों की हलचल। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण।
4: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
5: तुमने दी आवाज,
4: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।
6: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तरपत्रोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद
3: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। अब आइए डालते हैं एक नजर आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर।

श्रोताओं, रात्रि 11:10 पर हमारे दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे नक्सलवाद इस विषय पर। शाम 7:31 से हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत हेंडिंगले लीड्स में भारत और नीदरलैंड के मध्य खेले जा रहे T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण का अनुप्रसारण समय रहेगा 10:10 का। तो ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव के मीटर पर इस वक्त आप हैं आकाशवाणी लखनऊ के साथ। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान। मीडियम वेव के मीटर पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, सुबह के 9:30 हो चुके हैं और पेश है उर्दू कार्यक्रम। आज की पेशकश आकाशवाणी प्रयागराज के मरकज से। तो आइए सुनते हैं असगर गोंडवे की शायरी में सूफियाना आहंग। मकाला निगार है डॉक्टर जहांगीर हसन और कलाम शायर हैं ताजवर सुल्ताना। आइए सुनते हैं।
1: पेशी खिदमत है उर्दू प्रोग्राम। सभी सामेन को निकहत सिद्दीकी का आदाब। सामेन, आज उर्दू बज्म में हम आपके लिए लेकर आए हैं मकाला असगर गोंडवी की शायरी में सूफियाना आहंग और कलामी शायर के तहत सुनिएगा मोहतरमा ताजवर सुल्ताना से उनका कलाम। सबसे पहले समाअत फरमाइए डॉक्टर जहांगीर हसन से मकाला असगर गोंडवी की शायरी में सूफियाना आहंग।
2: असगर गोंडवी उर्दू शायरी के उस सुनहरे अहद से ताल्लुक रखते हैं जिसमें तसव्वुफ महज एक फलसफा नहीं बल्कि एक जीता जागता तजर्बा बनकर सामने आता है। चुनांचे असगर ने उसी सूफियाना तजर्बे को अपनी शायरी में इंतहाई जमालो कमाल के साथ पेश किया है। असगर गोंडवी वो बाकमाल शायर हैं जिन्होंने गज़ल की रवायती हुस्नो इश्क को तसव्वुफ के आबे तहूर से गुसल देकर उसे सिर्फ पाक व साफ ही नहीं किया बल्कि उसे एक हयात जावेदा भी बख्श दी है। नतीजतन जनाब असगर उर्दू गज़ल के उन मुनफरिद और मायानाज शोरा की सफ में मुमताज़ो नुमायाँ नजर आते हैं जिनके कलाम की खुशबू से उर्दू अदब का दामन हमेशा मुअत्तर रहेगा। उर्दू शायरी में तसव्वुफ कोई नई बात नहीं। खुदाए सुखन मीर तकी मीर से लेकर जाने सुखन मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब तक हर बड़े शायर ने सूफियाना असरारो मारिफ को बरता है, लेकिन असगर गोंडवी का मामला उन तमाम शोरा से अक्सर मुनफरिद और जुदा गाना है। उनके यहाँ तसव्वुफ कोई गुदड़ी या ऊनी लिबास नहीं या महज एक रिवायती मजमून नहीं बल्कि वो खुद राहे तसव्वुफ के शहसवार भी थे और बहरे तसव्वुफ के गवास भी। चुनांचे वो तसव्वुफ को महज खलवत नशीनी पर महमूल नहीं करते बल्कि उसे आयने जिंदगी हरकत व अमल मुजाहमत और नशात रूह का सरचश्मा करार देते हैं। आम तौर पर सूफियाना शायरी को सुनकर इंसानी जहन में दुनिया बेजारी दुख दर्द और तन्हाई का एहसास उभरता है, लेकिन असगर ने इस नज़रिए को बदल कर रख दिया है। उनके यहाँ तसव्वुफ में एक ख़ास नौ का निशात और इम्बसात व सुरूर पाया जाता है। वो गमे दुनिया पर आंसू बहाने वाले शायर नहीं बल्कि कायनात के जर्रे जर्रे में हुस्न इलाही का जलवा देख कर झूम उठने वाले सूफी शायर हैं और यही सबब है कि फ़ानी बदायूनी से फिक्री हम आहंगी के बावजूद

उनसे जुदागाना मालूम होते हैं, क्योंकि फ़ानी के यहाँ हुजनिया फ़जाएँ और मायूसियाँ हैं, तो जनाब असगर के यहाँ तरबो निशात अंगेजियाँ हैं। मरते मरते न कभी आकिलो फरजाना बने, होश रखता है जो इंसान तो दीवाना बने। शेर में रंगीनिये जोशे तखय्युल चाहिए, मुझको असगर कम है आदत ना लो फरियाद का। असगर गोंडवी की गज़लों में हुस्न और इश्क के अल्फाज भी बार बार आते हैं, लेकिन उनका हुस्न दुनियावी जमाले जहां आरा तक महदूद नहीं, और न ही उनका इश्क इश्क मजाजी की हदों में मुकय्यद है। वह हुस्न हकीकी यानी अल्लाह ताला की ज़ात के असीर हैं। वो कायनात की हर मादी शय को उसी एक सच्चे हुस्न का परतव और अक्स समझते हैं। है सरापा हुस्न वो रंगीन अदा जाने बहार, हुस्न पर हुस्न तबस्सुम सुबह खंदाने बहार। कुछ आग दी हवस ने तो तामीर इश्क की, जब खाक कर दिया उसे इरफां बना दिया। ये और इन जैसे बेशतर अशआर हैं जिनमें फ़लसफ़े हुस्न व इश्क का हसीन इम्तिजाज मिलता है, और ये कि ये हुस्न व इश्क महज जज्बातियत के गम्माज नहीं, बल्कि रूह की गहराई में उतर कर रूह में इनकलाब बरपा करने की पूरी सलाहियत भी रखते हैं। असगर गोंडवी के नज़दीक इंसानी दिल वो पाकीज़ा मकाम है जहाँ ज़ात बारी ताला अपनी तजल्लियात जाहिर करती है। उनका मानना है कि जब इंसान कल्बी सुकून और तज़किया हासिल कर लेता है तो उसका दिल लामकानी और मावराई हकायक का गहवारा बन जाता है। वो इश्क हकीकी के ज़रिए कल्ब इंसानी को रोशन करने पर ज़ोर देते हैं, इसलिए कि इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक का सफ़र वारदात कल्ब के बग़ैर नामुकम्मल है। उनके कलाम में जज्बात की सादगी व सदाकत, अखलास फ़िक्र व ख़याल और दर्दमंदी व हमदर्दी का पहलू नुमाया है। वो दिल को उन तमाम मनफी ख्यालात और तमाम तरह के बुरे ख्वाहिशात से पाक व साफ़ करने की तलकीन करते हैं जो इंसान को दुनिया की रंगीनियों में उलझाती हैं, ताकि तजल्लियात इलाही का नुज़ूल बराह रास्त कल्ब पर हो। रवायती तसव्वुफ़ में जहाँ हुस्न व मलाल और गिरिया व ज़ारी पर ज़ोर होता है, वहीं असगर की शायरी में कल्ब की तजल्ली एक ख़ास नौ की वजदानी कैफियत और सूफियाना सरमस्ती पैदा करती है। उनका मानना है कि मोहब्बत और मारफत के नूर से मामूर दिल हमेशा पुरसकून और तरब अंगेज रहता है, और वो कभी भी हवादिसे रोज़गार से खौफ नहीं खाता। असगर गोंडवी की गज़लों में कल्ब का मरकज़ होना दरअसल इंसान के बातिन की बेदारी की अलामत है। वो ज़ाहरी रसूम व क़ुयूद से हटकर दिल की पाकीज़गी और रूहानी बुलंदी को असल ईमान समझते हैं। साज़ दिल के पर्दों को खुद वो छेड़ता हो, जब जान मुस्तरिब बनकर तू भी लबकुशा हो जा। चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियाँ हों जिंदगी दुश्वार हो जाए। असगर गोंडवी की एक और बड़ी खूबी उनका मुनफरिद आहंग और तरन्नुम है। उनके अल्फाज में एक ऐसी मिठास और एक ऐसी गनायत है जो सुनने वाले के दिलों पर सहर तारी कर देती है। उनका कलाम पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे कोई सूफी वजद व सुरूर और जज्बो कैफ के आलम में झूम रहा हो और ये लाजवाल अशार गुनगुना रहा हो कि देखने वाले फरोगे रुखे जेबा देखें, पर्दे हुस्न पे खुद हुस्न का पर्दा देखें, अश्क पे हम को समझ लेते हैं अरबाब नजर, हुस्न तेरा मेरे चेहरे से झलकता देखें। इस तरह के अशार में जो सूफियाना रंगो आहंग है, जो तरन्नुमो जल तरंग है, जो खुदी और यकीन है, जो मोहब्बत और वारफ्तगी है, और जो इश्क के जज्बात व कैफियात हैं, वो एक इंसान को जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किलात में भी मुस्कुराना सिखा देते हैं, और यही असगर गोंडवी की शायरी का असल जादू और कमाल है। असगर गोंडवी के यहाँ कायनात का जर्रा जर्रा खुदा की पहचान और मार्फत का जरिया है। उनका मानना है कि सूफी वो नहीं होता जो दुनिया को छोड़कर जंगलों और बयाबानों में निकल जाए, बल्कि सूफी वो होता है जो दुनिया के हुजूम और बंदगाने खुदा के बीच रहकर भी अपने दिल को याद इलाही से शादो आबाद रखे। असगर गोंडवी के यहाँ ऐसे अशार की एक लंबी फहरिस्त है जिनमें हुस्न कायनात की हकीकत और मारफत इलाही के मजामीन बतौर ख़ास महसूस किए जा सकते हैं। ऐसे अशार के पर्दे में असगर कायनात को एक धोखा फरेब और बेसबाती के तौर पर पेश करते हैं, जबकि हर एक शय में तजल्लियात रब्बानी को कारफरमा मानते हैं। चुनांचे असगर गोंडवी इसी फ़लसफ़े को निभाते हुए कहते हैं, आँख हो जब महव हैरत तो नुमाया है वही, फ़िक्र हो जब कारफरमा तो वही मस्तूर है, जो नक्श है हस्ती का।

धोखा नजर आता है, पर्दे पे मुसव्विर ही तन्हा नजर आता है। गालिब की तरह असगर ने कभी भी दावे तसव्वुफ तो नहीं किया, मगर इस हकीकत से भी इनकार मुमकिन नहीं कि उनकी शायरी में सूफियाना आगही भी है और बेसाख्तगी भी, अर्दियत भी है और हकीकत पसंदी भी, जमालियाती रंगो नूर भी है और सरशारी व दिलदोजी के साथ हुस्नो रानाई भी। असगर की यह हकीकत बयानी काबिल दीद भी है और काबिल सद आफरी भी के जर्रों का रक्स मस्ती ये शहबाय इश्क है, आलम रवां दवां बतकाजाय इश्क है, जब ये नहीं तो ख़त्म है रंगीनियां तमाम, साजे खुदी में जोश नवाहाय इश्क है। इलावा अजीं असगर गोंडवी के यहाँ उमर खय्याम की ला अदरियत भी मौजूद है, मौलाना रूम के मनाजिर फितरत की सरमस्ती भी है और हज़रत हाफिज़ का बादाओ सागर भी, लेकिन इन तमाम हकायक के बावजूद वो कुराना तकलीद से कोसों दूर नज़र आते हैं, क्योंकि उनकी नुदरत पसंद और अखाज तबीयत ने अपनी राहें खुद तलाश की हैं। ला अदरियत, मुनाजिर फितरत और बादाओ सागर के पर्दे में ये हुस्ने तखयुल देखें कि तमाम दफ्तर हिकमत उलट

0: मगर खुलाना अभी तक कहाँ हूँ क्या हूँ मैं, साकी तेरी निगाह को पहचानता हूँ मैं, मुझको फरेबे सागरो मीना न चाहिए। गर्क हैं सब इल्म हिकमत दीन ईमा देखिए, किस तरह उठा है एक सागर से तूफान देखिए। एक बात और जो शोरा के हजूम में भी असगर को इनफरादियत अदा करती है वो है उनकी शेरियत। दकीक से दकीक, हकीमाना और फलसफियाना ख्यालात, पेचीदा से पेचीदा असरारो मारिफ और लतीफ से लतीफ नुक्ता संजी में भी उनके यहाँ शेरियत अपनी जाहो जलाल और वकारियत के साथ जलवा फरमा रहती है। चुनांचे उनका ये अंदाज़े बयान देखें कि एक कतरे शबनम पर खुर्शीद है अक्स आरा, ये नेस्ती वो हस्ती अफसाना है अफसाना। लो शमे हकीकत की अपनी ही जगह पर है, फानोस की गर्दिश से क्या क्या नजर आता है। इन जैसे अशार में बड़े ही हकीमाना तौर पर ज़ात मुतलक और वजूद मुतलक की हकीकत बयान की गई है और ये बावर भी कराया गया है कि मुस्तकिल जलवा सिर्फ ज़ात मुतलक का है, उसके अलावा तमाम रंगीनियाँ कल अदम हैं या फिर उसी के जलवे और मज़ाहिर हैं। आज जब हम मादी दौर, नफसियाती इज़्तिराब और ज़हनी तनाव के साये में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ऐसे में असगर गोंडवी की सूफियाना शायरी हमारे दिलों के लिए एक मरहम की हैसियत रखती है। उनका कलाम हमें सिखाता है कि बाहरी दुनिया के हंगामों से निजात पाने का वाहिद और तन्हा जरिया अपने अंदर की दुनिया को रोशन करना है। बिलाशुबह असगर गोंडवी की गज़लें हमें अमनो अमान, मोहब्बत व उल्फत, चैन व सुकून और खुदा की ज़ात पर कामिल एतमाद और तवक्कुल का दर्स देती हैं। उन्होंने गज़ल के रिवायती रंग को तसव्वुफ़ के नूर से मामूर किया और उर्दू अदब को वो मेराज अता की कि जिस पर हमेशा नाज किया जाता रहेगा। जिसे लेना हो आकर उससे अब दर्स जुनून ले ले, सुना है होश में है असगर दीवाना बरसों से।
1: अभी आप मकाला समाप्त फरमा रहे थे और अब समाप्त फरमाइए मोहतरमा ताजवर सुल्ताना से उनका कलाम।
2: गजल का मतला हाजिर कर रही हूँ, मुलायजा कीजिएगा। रस

0: कर चले।
1: अभी आप मोहतरमा ताजवर सुल्ताना से उनका कलाम समात फरमा रहे थे, और इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है। इस उर्दू प्रोग्राम को आकाशवाणी के प्रयागराज मरकज पर तैयार किया गया और आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से नशर किया गया। इस प्रोग्राम को आपकी खिदमत में पेश किया निकहत सिद्दीकी ने।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी प्रयागराज के मरकज से।

उर्दू कार्यक्रम। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण धड़कन देश की। और अब चलिए आपको लिए चलते हैं गांव जवार की माटी से जुड़े लोक परंपरागत गीतों की ओर। कार्यक्रम है लोक रंग। तो श्रोताओं, आज हमारे कार्यक्रम में अवधी माटी की खुशबू फैलाने आ रही हैं श्रद्धा शुक्ला और मुस्कान तिवारी। तो आइए सुनते हैं इनके युगल स्वरों में ये सोहर।

श्रद्धा शुक्ला और मुस्कान तिवारी के युगल स्वरों में आप सुन रहे थे ये सोहर। लोकरंग कार्यक्रम के अंतर्गत अब आइए आपको सुनवाते हैं इन्हीं के स्वरों में गाया ये लोक भजन।

ये लोग भजन अभी आप सुन रहे थे श्रद्धा शुक्ला और मुस्कान तिवारी के युगल स्वरों में। कार्यक्रम था लोक रंग। और आपको बता दें आपके साथ

संगत कलाकार थे नाल पर अवध बिहारी वर्मा, ढोलक पर दिलीप त्रिवेदी, हारमोनियम पर संतोष तिवारी, बांसुरी पर दिगंत सैकिया और साइड रिदम था शोभनाथ चौरसिया का। इसी के साथ लोकगीतों का लोकरंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। और श्रोताओं अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: जोश को मिले दिशा, मेहनत को मिले मान, कला को विस्तार मिले, परंपरा को मिले नई उड़ान।
3: कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए।
2: सुनिए नई उड़ान, जहां गाने हो, बातें हो, योजनाएं हो और हर खबर लाए विकास और अवसर की जानकारी। श्रोताओं के दिल कहें, नई उड़ान निभाएगा असली यारी। हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर गूंजे सफलताओं की आवाज।
0: श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम का ये पहला गीत लीजिए सुनिए, लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में। गीत है आनंद बख्शी का, संगीत राहुल शर्मा का और फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी। इस फिल्म के गीत को अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज में। गीत के बोल लिखे थे देव कोहली ने और संगीत था अनु मलिक का। इसी के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर इस वक्त आप हैं आकाशवाणी लखनऊ के साथ। सुबह के 10:10 होने को हैं। अब से बस थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण। तो बने रहिए हमारे साथ और ट्यून करके रखिए आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। पहले सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। G7 देशों ने वैश्विक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की। इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए समन्वित प्रतिक्रिया का किया आह्वान। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच ब्रेंट क्रूड की वैश्विक कीमतें 5.4% गिरकर लगभग $79 प्रति बैरल हो गई हैं। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जा रहा है और फीफा विश्व कप में लियोनेल मेसी ने हैट्रिक बनाई और अर्जेंटीना ने अपने पहले मुकाबले में अल्जीरिया को 3-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा सुनिए हमारे संवाददाता से।
2: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेयन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के साथ भी बैठक करेंगे। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है, जिसमें संक्रमितों का पता लगाना, सीमा पर निगरानी और सामुदायिक सहयोग लेना शामिल है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वायदा किया है। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी एक बार फिर दोहराई है। G7 देशों ने कमजोर देशों की मदद करने और मजबूत आर्थिक वृद्धि के लिए विकास और निवेश वित्त में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के संघर्ष से वैश्विक व्यापार बाधित हुआ है और जान माल को नुकसान पहुंचा है। समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने

0: विशेष रूप से लगातार आपस में जुड़ती दुनिया के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहल में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान शामिल हैं। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान, तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान न करना अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता में सबसे बड़ी बाधा है। श्री मोदी ने स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी है। विश्व दर्पण के लिए मैं सरफिरोजी।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सप्ताहांत तक खुल जाएगा। इससे ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था और कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर लगभग $120 तक पहुंच गई थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापारिक हस्तियों, कार्यकारी अधिकारियों, निवेशकों और नव प्रवर्तकों को भारत के साथ नवाचार से संचालित एक उज्ज्वल और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में सहयोग के लिए आमंत्रित किया है। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में श्री गोयल ने कहा कि पिछले 3 दिन की उपलब्धियां भारत और फ्रांस की नवाचार साझेदारी की अपार क्षमता को दर्शाती हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आइसलैंड की विदेश मंत्री थोरगेरदुर कैटरिन गुन्नार्सडॉटर और वहां के लोगों को उनके राष्ट्रीय दिवस पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास जताया कि भारत और आइसलैंड के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है। ये दिवस मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चारागाह, पहचान, सम्मान और पुनर्स्थापना। ये विषय चारागाहों के आर्थिक, पारिस्थितिकीय और सांस्कृतिक महत्व को अधिक मान्यता देने, संरक्षकों के प्रति सम्मान दिखाने और खराब हो चुके चारागाहों को पुनर्स्थापित करने के लिए अधिक निवेश की जरूरत की ओर संकेत करता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से हरा दिया। लियोनेल मेसी ने इस मैच में हैट्रिक लगाते हुए 16वां वर्ल्ड कप गोल किया और इतिहास रच दिया। मेसी ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 16 गोल करने के रिकॉर्ड में जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज की बराबरी की। इससे पहले आज सुबह अमरीका के बॉस्टन स्टेडियम में ग्रुप आई के अपने पहले मैच में नॉर्वे ने ईरान को 4-1 से हराया। कल रात न्यूजर्सी में फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से पराजित किया। भारत हॉकी महिला नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कल न्यूजीलैंड में क्वार्टर फाइनल में भारत ने जापान को 2-1 से हरा दिया। भारत पूल ए में इस समय शीर्ष पर है। भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से कल सुबह 4:15 होगा। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में 1:30 से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लोजर्न शहर के पास स्थित बर्गेन स्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमरीका ईरान शांति समझौते के बीच ब्रेंट क्रूड की वैश्विक कीमतें 5.4% गिरकर लगभग $79 प्रति बैरल हो गई। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जा रहा है और फीफा विश्व कप में लियोनेल मेसी ने हैट्रिक बनाई और अर्जेंटीना ने अपने पहले मुकाबले में अल्जीरिया को 3-0 से हराया। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, 10:20 हो चुके हैं और अब चलिए आपको सुनवाते हैं सुहाने मनभावने नए नए फिल्मी तराने। कार्यक्रम है चित्रपट से।

0: जरा हटके जरा बचके। इस फिल्म के गाने को अभी आपने सुना सचिन जिगर की बनाई तर्ज पर। गीत के बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने और इसे गाया था वरुण जैन, सचिन जिगर, शादाब फरीदी और अल्तमश फरीदी ने।
1: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
2: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
3: बदलो बदलो

0: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: श्रोताओं, आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट से, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं नई फिल्मी तराने। तो चलिए अब चलते हैं अगले गीत की ओर, और जिसे लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत है प्रीतम का। और इस

0: बिजली की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। इस फिल्म का गीत और संगीत आर्को का था।
1: डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश। आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: सपनों को देना है नई रफ्तार तो सुनिए आकाशवाणी प्राइमरी चैनल का बेहतरीन प्रोग्राम। यूथ के लिए जरूरी जानकारी, सामयिक चर्चा, फील्ड से OB रिपोर्ट्स और गीत संगीत का परफेक्ट मिक्स, सब कुछ एक ही मंच पर। हर दिन शाम 5:45 पर रेडियो ऑन रखिए और जुड़िए नई उड़ान से।
0: श्रोताओं, NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। और साथ ही आपको बता दें, प्रत्येक बुधवार शाम 6:30 से आप सुन सकते हैं कार्यक्रम हेलो किसान, प्रायोजक IFCO।

शिवम पाठक और साहिल हाडा की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे पद्मावत फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा था A.M. तुराजनी और संगीत था संजय लीला भंसाली का। श्रोताओं, आपको बता दें, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र, धड़कन देश की, और कार्यक्रम चल रहा है चित्रपट से, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं नई फिल्में तराने।

0: शादी में ज़रूर आना। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रही थी यासिर देसाई और आकांक्षा शर्मा की आवाज़ में। गीत और संगीत दोनों था आर्को का।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र

0: 42 पर
1: 8700014242।
2: घर आंगन में है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
3: मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र और इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है चित्रपट से। चलिए कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं, गदर 2 फिल्म से अरिजीत सिंह और मिथुन की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं सईद कादरी ने और संगीत है मिथुन का।
4: क्या होटल है, नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती, तुम आते जाओ, हम सोचते जाएंगे।

आर्गो की बनाई तर्ज पर मनोज मुंतशिर का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म रुस्तम से। आवाज थी आतिफ असलम की। श्रोताओं, आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं चित्रपट से, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं नई फिल्मी तराने। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं शेरशाह फिल्म का ये अगला गीत, जुबिन नौटियाल और आशीष कौर की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं तनिष्क बागची ने।

0: था 747 किलोहर्ट्ज़ पर।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आकाशवाणी लखनऊ से आप सुनते हैं फोन इन कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में। मैं हूं आपकी मित्र विभा श्रीवास्तव। श्रोताओं, ये कैसा मंच है जहां आवाज़ बनेगी हमारी पहचान, आपके विचार, आपकी बातें और आपके अनुभव होंगे इस महफिल की असली रौनक। तो उठाइए फ़ोन और जुड़ जाइए हमसे और कहिए अपने मन की बात, क्योंकि ये कार्यक्रम है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। तो सबसे पहले हम आपको अपना नंबर बता दें जिसमें आप हमें करिए फ़ोन और सुनिए अपनी पसंद के फिल्मी गीत। फ़ोन नंबर है 0522-223-8825। नंबर एक बार फिर से 0522, ये हमारा लखनऊ का कोड है 2238825। तो शुरू करते हैं सुरों की शानदार महफिल, जुड़ते हैं कार्यक्रम के पहले कॉलर से और देखते हैं इनकी फरमाइश क्या है।
2: हेलो।
0: हेलो,
2: नमस्ते।
0: नमस्ते, कैसे हैं आप? पूरा परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम लतीफ अहमद रेना, मैं कश्मीर सोनामर्ग से।
0: अच्छा लतीफ जी, आप कश्मीर से बोल रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: शुक्रिया, तो शुक्रिया मैडम आपका।
0: हाँ लतीफ जी, आप क्या करते हैं, कुछ अपने बारे में बताइए।
2: बस तो मैं अपनी खेती बाड़ी और यहाँ कुछ बागवानी है हमें।
0: चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, वहाँ का तो मौसम बहुत अच्छा होगा इस समय कश्मीर का।
2: अभी तो मौसम मैडम यहाँ पे थोड़ा बादल है।
0: हाँ हाँ, तो आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं लतीफ जी?
2: फिल्म का नाम है हीरो फिल्म का, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं,
0: तो
2: कभी मरते नहीं।
0: हाँ चलिए फिर आपकी पसंद का ये गीत आपको सुनवा देते हैं।
2: मेरे साथी राकेश कुमार शुमला से और भगवान सिंह परमा, वो ब्रश फ्रेंड मेरा है।
0: अच्छा अच्छा, चलिए
2: भगवान सिंह परमा बहुत अच्छा आदमी है।
0: अच्छा अच्छा, चलिए भाई ठीक है, आप जितने लोग सुन रहे हैं उनको आपका ये गाना डेडिकेटेड रहेगा, आपके सारे मित्रों को।
2: शुक्रिया शुक्रिया,
0: नमस्कार।

0: हेलो,
1: मेरे प्यारे प्यारे मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग। पहले आप अपना नाम तो बताइए, मेरी प्यारी प्यारी श्रोता कहाँ से हो, क्या कौन बोल रही हैं?
1: जी मैं ग्राम नौरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तो मिश्री सर्वे बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, महाराष्ट्र से। फिर से अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका?
1: मिश्री
0: फिर नाम श्री सुनाई पड़ रहा है,
1: तनुश्री।
0: तनुश्री।
1: जी
0: तनुश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो बताइए तनुश्री जी, आप क्या करती हैं?
1: मैम, मुझे 10वीं से भी कहीं नहीं देता, तब से मैं शास्त्रीय संगीत सीख रही हूँ।
0: अच्छा, चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। और आज कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: मैं आपको सुनना चाहती हूँ, आपको बुरा ना लगे तो।
0: हाँ बताइए, क्या कहना चाहती हैं?
1: मतलब आपको ही नहीं, हमारे से यार को कहना चाहते हो कि मैम हमें इतने दूर से कॉल करते हैं। मेरा पहले कॉल लगा था, मेरा रिसीव भी हुआ था, पर आपकी आवाज मुझे आ रही थी पर मेरी आवाज आपको नहीं आ रही, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। हम मैं तो हमारे से सभी थे ना, हम बहुत पापड़ बेलते इस कार्यक्रम में।
0: तो देखिए, आपकी तो आवाज हमें आ रही है, आपकी तो आवाज हमें आ रही है, आपको भी मेरी आवाज आ रही है। कभी कभी नेटवर्क इशू होता है तनुश्री जी।
1: तो मैम दो हाथ से पापड़ बेलती हूँ आपके कार्यक्रम में कॉल लगाने के लिए।
0: ये तो बात है भाई, क्योंकि देखिए सब लोग फोन मिलाते हैं ना, तो सब लोग मिलाते हैं तो सारे नेटवर्क बिजी हो जाते हैं, तो जिसका कॉल लग जाता है उससे बात हो जाती है कि नहीं?
1: तो मैम बहुत खुशी होती
0: बहुत
1: है, बहुत
0: खुशी होती है,
1: खुशी
0: हमको भी खुशी होती है भाई कि आप लोग का फोन लगता है। तो हम ये कार्यक्रम ही यही है, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, फोन इन कार्यक्रम तो हम लोग ने इसीलिए किया है कि आप लोग को अच्छा लगे, आप लोग अपनी पसंद के गीत सुन सकें।
1: जी।
0: तो फिर हम आपको कौन सा, आप बोली थी अपनी पसंद का गीत सुनवा दीजिए, तो सुनवा देती हूँ अपनी पसंद का गीत।
1: और मेरे दोस्त थे आप ही, नेता थे और भगवान सिंह शर्मा, उनको
0: चलिए
1: डेडिकेट।
0: सबके हाँ, आपके दोस्तों को डेडिकेटेड ये मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गीत। ठीक है,
1: ओके, बाय
0: नमस्कार,
1: बाय।
0: बाय बाय।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से फोन इन कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। तो हम नंबर एक बार फिर से बता देते हैं जिसमें नए श्रोता हमसे जुड़ सकें। हमारा नंबर है 0522-223-8825-0522-2228-825। तो देखते हैं हमारे अगले श्रोता कहाँ से हैं और उनकी फरमाइश क्या है। हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: मैम ठीक है, मैं श्रीपाल गोयल भादोगढ़ हरियाणा से बात कर रहा हूँ।
0: श्रीपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। क्या करते हैं श्रीपाल जी आप?
1: मैम दिल्ली में काम करते हैं कंपनी में।
0: अच्छा,
1: कंपनी में थे काम पे ड्यूटी पे।
0: हाँ,
1: ट्राई किया तो कॉल भी लग गई।
0: चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, तो हमें भी खुशी हुई आपकी कॉल लग गई। तो आप कार्यक्रम सुनते हैं हमारा?
1: हाँ जी, हाँ जी, डेली सुनते हैं।
0: चलिए, तब तो बहुत अच्छी बात है। तो आज कौन सा गीत चुना है आपने सुनने के लिए, बताइए।
1: मैम फिल्म का नाम है खोज। हाँ। गाना है याद तुम्हारी जब जब आए।
0: तो आपकी पसंद का ये गीत आपको सुनवा देते हैं नितिन मुकेश की आवाज में।
1: धन्यवाद मैम।
0: धन्यवाद, नमस्कार। आपको।

0: हेलो
1: दीपा जी, आपके एक मुस्कुराहट ने हमें बेहोश कर दिया। हम होश में आने वाले थे, फिर आपने मुस्कुरा दिया।
0: अरे वाह भाई, क्या बात है, आपकी शायरी ने तो मेरा दिल ले लिया। तो पहले ये तो
1: जी
0: बताइए, अपना परिचय तो बताइए। आपने तो मेरा नाम जान लिया, हम भी तो आपका नाम जान ले।
1: मैं हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालताना का इंदौर से। जी
0: अच्छा हसीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप हमारी
1: जी
0: नियमित श्रोता हैं, आप हमारा कार्यक्रम सुनती हैं, ये हमें पता है अच्छे
1: जी जी
0: से। और आपको कार्यक्रम कैसे लगते हैं बताइए।
1: बहुत अच्छे, एक नंबर है मैडम जी।
0: एक नंबर है, चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। तो आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप, बताइए अपनी पसंद का गीत।
1: ये देश प्रेमी फिल्म का नाम है और लता जी की आवाज है और गाने के बोल है, ओ बेकदर बेदर्दी सदके तेरे जा कर दी, ना ना ना करते करते हाजी मैंने
0: क्या
1: हाँ कर दी, ना ना ना करते
0: क्या बात
1: करते
0: है
1: हाजी
0: हसीना
1: मैंने
0: जी,
1: हाँ कर
0: आप तो
1: दी। ये
0: बहुत
1: सुना
0: अच्छा,
1: दीजिए मैम।
0: हाँ बहुत अच्छा गाना गाती हैं हसीना जी आप। चलिए ठीक है, आपकी
1: जी
0: पसंद का ये गीत हम आपको सुनवा देते हैं, ठीक है,
1: शुक्रिया मैम।
0: शुक्रिया।

0: हेलो।
1: हाँ मैम, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग। पहले तो आप अपना परिचय बताइए, क्या नाम है आपका?
1: मैं उत्तर प्रदेश से और जिला हरदोई और ब्लॉक शाहबाद से और तड़ेस गांव से बोल रही हूँ। अंजू नाम है मेरा।
0: अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें में। तो अंजू जी,
1: थैंक यू मैम।
0: हाँ बताइए, कुछ अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं आप?
1: मैं इस टाइम तो छुट्टी चल रही है मैम, गलीचे की बिनाई हो रही है।
0: ओहो, गलीचे की बिनाई हो रही है। तो आप पढ़ाई करती हैं?
1: हाँ यस मैम,
0: तो किस क्लास में हैं बताइए?
1: मैं 10th क्लास में हूँ मैम।
0: ओहो, आपकी 10th में गई हैं आप,
1: यस मैम।
0: तो आपकी तो खूब मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी बोर्ड है आपका।
1: हाँ मैम,
0: चलिए फिर, तो गाना कौन सा सुनना चाहती हैं बताइए।
1: हिना मूवी का गाना है, हसरुंडी टोपी वाले नाल दाना। यस
0: अच्छा भाई, हिना मूवी का गाना हम आपको सुन।
1: मैम। मैम मैं कुछ बात कहना चाहती हूँ।
0: हाँ बताइए।
1: मैं चाहती हूँ सबसे पहले उन लोगों को और उन श्रोताओं को डेडिकेट रहेगा जिनका फोन नहीं लगता है, क्योंकि हर लोगों को मेहनत करनी चाहिए। मेहनत का
0: बिल्कुल
1: फल अच्छा ही
0: अच्छा
1: होता
0: ही
1: है, और
0: होता है,
1: फिर जो
0: बिल्कुल
1: मेहनत कर रहे हैं उनके लिए डेडिकेट, और
0: बिल्कुल।
1: उसके बाद आपके लिए, क्योंकि
0: थैंक
1: आपको
0: यू।
1: तो सभी लोग सुनाते हैं, डेडिकेट करते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए कोई नहीं कहता जिनका
0: जो
1: फोन नहीं लग पाता
0: बिल्कुल
1: है और जिनका
0: बिल्कुल,
1: लगा
0: बहुत
1: नहीं है।
0: बहुत अच्छी बात कही अंजू जी आपने। तो
1: यस
0: सब लोग तो
1: मैम।
0: खुश हो गए होंगे, जिनका फोन नहीं लग रहा है वो खुश हो गए
1: हाँ
0: होंगे
1: मैम।
0: कि किसी ने हमारे गाने की तो मतलब हमारे लिए कहा, तो है ना अंजू जी।
1: यस मैम। हाँ
0: तो चलिए
1: मैम।
0: भाई, आपकी पसंद का सबके लिए
1: यस
0: डेडिकेटेड
1: मैम,
0: ये
1: सबके
0: सॉन्ग।
1: लिए।
0: हाँ, थैंक यू।
1: थैंक यू मैम।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की, और कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। तो देखते हैं ये हमारे अगले कॉलर कहाँ से हैं। हेलो।
1: हाँ मैम।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम मैम।
0: नमस्कार और सलाम भाई। आप ये बताइए कि आपका परिचय क्या है, आप अपना नाम तो पूरा बताइए।
1: जी मेरा नाम है रियाना मंसूरी मैम, और करसल बिटोरा, कैसरगंज बहराई से मैं बोल रही हूँ मैम।
0: अच्छा, बहराई से बोल रही हैं भाई। रियाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो बताइए आप कैसी हैं और क्या करती हैं, कुछ अपने बारे में बताइए।
1: मैं बहुत अच्छी हैं मैम, और आपसे बातें करके बहुत अच्छे हो गए।
0: और चलिए भाई, बहुत अच्छा लगता है कि जब हमसे कोई बात करके और भी अच्छा हो जाता है। तो ये बताइए।
1: हाँ, क्योंकि मैंने बहुत ही कोशिश की मैम।
0: हाँ, ये तो हम मानते हैं कि लग जाए।

0: नहीं लग रहा
1: तो देखिए आपकी कोशिश
0: बहुत खुशी हो रही है।
1: बिल्कुल, देखिए कोशिश कामयाब हो गई, इसीलिए कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
0: कभी हार नहीं होती मैम, सही कह
1: रही हूं। तो असल में क्या होता है ना कि देखिए हम तो चाहते हैं कि हम जिसका भी फोन आया अटेंड कर लेते हैं हम लोग, लेकिन इतनी लाइन बिजी हो जाती है कि किसका मिलता है किसी का नहीं मिलता है, इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा, है ना रियाना जी?
0: जी मैम।
1: हाँ, तो ये बताइए कि आज कौन सा गीत चुना है आपने सुनने के लिए?
0: मैम मैंने फिल्म का नाम किस्मत है और
1: हाँ,
0: गाने के बोल है कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला।
1: क्या बात है, बहुत ही
0: और
1: अच्छा।
0: संसाद बेगम और आशा भोसले की आवाज है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो सब पता है भाई कि आशा भोसले और शमशाद बेगम जी ने गीत गाया है, और एस एच बिहारी के बोल हैं और संगीत है ओपी नैयर का। तो
0: जी
1: आपको
0: मैम।
1: सुनवा देते हैं ये प्यारा सा गीत, आप
0: तो मैम किसी को डेडिकेट कर सकते हैं?
1: बिल्कुल कर दीजिए, क्यों नहीं कर सकती हैं, किसी के लिए आप गाना
0: जी
1: सुनवा
0: मैम,
1: रही हैं।
0: क्योंकि मेरा नाम जैसे पहली बार आपका कॉल लगा है मेरे मेरा
1: हाँ रिहाना जी,
0: हाँ, तो इसीलिए मैंने डेडिकेट करना चाहते हैं।
1: हाँ करिए, बिल्कुल करिए, किसको करना चाहती हैं?
0: जी मेरा पहले सबसे पहले मेरे भाई एक हबीब मंसूरी हैं,
1: हाँ
0: और उनको मैंने आंखों से नहीं देखा है लेकिन उनकी वो मेरे दोस्त बन गए हैं रेडियो के, क्योंकि मैंने उनको बहुत उनके सबसे प्यारी आवाज है
1: हाँ
0: जो
1: हाँ
0: हसीना मंसूरी है
1: हाँ
0: और साहिबा अंसारी है और
1: हाँ
0: ये जो हैं
1: हाँ
0: इसकी रिंकी पिंकी है
1: हाँ हाँ
0: और शबनम अब्बासी
1: हाँ तो चलिए
0: और
1: जितने आपके,
0: कानपुर से पूनम दीदी जो हैं,
1: हाँ, तो जितने
0: ये मेरे
1: आपके
0: दोस्त हैं ना,
1: दोस्त हैं, जितने आपके दोस्त हैं
0: और
1: सभी को
0: सभी को सुनने
1: डेडिकेट।
0: वालों को और
1: हाँ
0: आपको भी डेडिकेट रहेगा ये गाना, ठीक है मैम?
1: धन्यवाद धन्यवाद, चलिए रिहाना जी,
0: धन्यवाद।
1: हाँ नमस्कार।

0: हेलो
1: जी हेलो।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार मैम।
0: और पहले तो आप अपना परिचय बताइए, क्या नाम है आपका?
1: मैम हम फतेहपुर जिला से जितेंद्र पाल बात कर रहे हैं मैम जी।
0: फतेहपुर जिला से जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें में। तो बताइए जितेंद्र जी, कैसे हैं आप?
1: जी हम तो बढ़िया हैं, आप कैसी हैं?
0: बस ठीक है। और आप करते क्या हैं?
1: जी हम किराने की दुकान करते हैं और आपके
0: अच्छा,
1: साथ कृषि
0: हाँ
1: को सुनते रहते हैं।
0: हाँ और आपसे बात हो भी जाती है क्योंकि हम आपसे बात कर
1: जी
0: भी चुके हैं ना जितेंद्र जी, आप हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं।
1: जी हम कंटिन्यू सुनते ही रहते हैं।
0: हाँ, जितेंद्र जी, चलिए तो आज कौन सा गाना चुना है आपने सुनने के लिए?
1: मैम जी मूवी रहेगी नसीब और गाने के बोल रहेंगे चुरा लेंगे दिल तेरा हम सबके सामने।
0: तो चलिए भाई, आपके पसंद का ये गीत आपको
1: मैम जी कुछ
0: सुना।
1: नाम ले सकते हैं?
0: हाँ ले लीजिए जल्दी से।
1: सबसे पहले तो आप रहेंगे और पूजा बिमल मैम रहेंगे और दीप्ति मैम रहेंगे और हमारे भाई हैं राजन यादव जी और
0: हाँ
1: हमारे भाई हैं अश्वनी पाल जी, बेटा सिंह यादव जी, रोहित भाई हैं, ओमकार भाई हैं और मैम जी मलकाई से फूलचंद पाल जी हैं, सुनील भाई हैं,
0: चलिए,
1: दिनेश पाल
0: तो
1: जी हैं और
0: जितने
1: मेरे कुछ
0: आपके
1: भाई भी हैं
0: दोस्त
1: और
0: हैं,
1: मैम जी जितने भी लोग सुन रहे हैं
0: हाँ
1: सभी लोगों के
0: सबके
1: लिए गाना
0: लिए
1: डेडिकेट
0: ये
1: रहेगा।
0: डेडिकेट रहेगा। चलिए भाई नमस्कार
1: जी मैम
0: जितेंद्र जी।
1: नमस्ते।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार जी। नमस्कार।
0: हाँ, क्या नाम है आपका? अपना परिचय बताइए।
1: कर
0: अच्छा, हरदोई से बात कर रहे हैं। तो
1: रहे हैं।
0: आज कौन सा गीत चुना है आपने सुनने के लिए, बताइए।
1: जी
0: कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: गाना फिल्म नसीब था, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। जी
0: अच्छा, चलिए भाई, आप भी नसीब फिल्म का सुनना चाहते हैं तो सुनवा देते हैं आपको, आपका की पसंद का ये गीत कुमार सानू की आवाज़ में। हाँ बताइए,
1: जी
0: चलिए गाना सुनवाएं आपको।
1: जी राम जी।
0: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते। क्या नाम है आपका? कहाँ से बोल रहे हैं?
1: अतीक बोल रहे हो? शानदार बोल कैसोली ला गए थे। अतीक
0: अतीक जी,
1: जी
0: अतीफ जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: मैम,
0: और क्या करते हैं आप?
1: मैं पढ़ाई करता हूँ टीचर
0: अच्छा, कौन सी क्लास में हैं?
1: में।
0: ओ, तो फिर आज कौन सा गीत चुना है आपने सुनने के लिए?
1: राज फिल्म का कोई
0: राज फिल्म का। राज फिल्म का कौन सा गीत?
1: भी सुना दीजिए।
0: कोई भी सुना दे। तो चलिए, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में आपको राज फिल्म का ये गीत आपको सुनवा देते हैं। ठीक है,
1: ठीक है,
0: नमस्कार।
1: मस्ती।

0: हेलो
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार। और
1: जी ग्राम
0: हाँ,
1: हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: भगवान सिंह परमार जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। और भाई, आपके तो दोस्त बहुत हैं, कोई भी गीत सुनता है तो आपके लिए जरूर डेडिकेट करता है भगवान सिंह जी।
1: जी दीदी, बहुत सारे मित्र हैं और उनका प्यार है दीदी मेरे लिए, इसलिए
0: बिल्कुल
1: नाम
0: बिल्कुल
1: लेते हैं वो।
0: बिल्कुल, ये बात तो आपने सही कही कि आप में कुछ ऐसी बात है कि सब लोग आपको इतना चाहते हैं। तो भगवान सिंह जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं बताइए।
1: दीदी फिल्म का नाम है पनाह और गाने के बोले तेरी पनाह में हमें रखना। आज हमारी छोटी सी नन्ही सी श्रोता है महाराष्ट्र से, तनुश्री बिटिया,
0: हाँ
1: उनका कॉल आया था, मैं उनको डेडिकेट करता हूँ। प्रेमदास बाबा जी हैं, देवी
0: हाँ
1: शंकर शुक्ला जी हैं, सारून अंसारी जी हैं और रमेश प्रजापति जी हैं, पूनम दीदी हैं कानपुर से, गुंजन तिवारी जी हैं, इन
0: चलिए
1: सबके पास
0: भाई
1: सुनना
0: जित
1: चाहेंगे
0: हाँ
1: दीदी और आपको
0: चलिए
1: डेडिकेट रहेगा।
0: ठीक है। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: और अब देखते हैं आज कार्यक्रम के आखिर में किसका कॉल लगा है और उनकी पसंद क्या है। हेलो,
1: हेलो मैम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग
0: नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और बताइए कैसी हैं आप।
1: मैम। बढ़िया है बस, आप कैसे हैं आप बताइए।
0: हम भी ठीक है। पहले आप अपना परिचय तो बताइए जिसमें कि हम आपका नाम
1: मैम
0: जान सके।
1: स्वाति सिंह बात कर रहे हैं अंबरपुर मनकापुर जिला गोंडा से। मैम मैं आपके चैनल की

0: भी नहीं श्रोता जुड़ी हूँ मैम, कल भी फोन लगा था और आज भी लग गया मेरा
1: क्या
0: फोन।
1: बात है भाई स्वाति जी, आप का दोनों दिन लगातार फोन लग गया, बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए कि आज कौन सा गीत चुना है आपने सुनने के लिए,
0: मैम
1: बताइए।
0: मूवी का नाम है इंतकाम और गाने के बोल हैं

0: भाई चलिए आपकी पसंद का ये गाना
1: सुनना है।
0: हाँ लीजिए आपकी पसंद का ये गीत मैंने सुनवा दिया।
1: और मैम नाम ले लें 2000 लोगों का।
0: हाँ जल्दी से लीजिए कार्यक्रम के आखिर।
1: अयोध्या के सीनियर अनाउंसर अमरजीत सर, दीपिका मैम और मेरी दीदी ज्योति सिंह, मेरे दोनों भाई और मम्मी पापा और भगवान सिंह परमार जी।
0: चलिए जितने आपके
1: सारे दोस्तों को डेडिकेट है और मैम आपको भी तो सबसे पहले
0: चलिए धन्यवाद। चलिए आपकी पसंद का
1: नमस्ते
0: नमस्ते
1: शुक्रिया मैम।

और इंतकाम फिल्म के इसी गीत के साथ ही फोन कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं और आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
2: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
1: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूँ। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि ये झील है कहाँ। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओं, इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओं। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहां गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहां तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। श्रोताओं, एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभदेव से जोड़ा जाता है जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओं, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियां भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। ये झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है।

0: तब प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहां मिलते हैं। जहां तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहां मिलते हैं। तो श्रोताओं, अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त, लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियां प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। तो श्रोताओं, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। हमारा IBRS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
2: दादी जी।
3: अरे आशीष, दीपिका, आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
2: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
3: हाँ पूछो।
2: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
3: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है। जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
2: अच्छा।
3: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
2: अच्छा।
3: यानी आजादी, आजादी, आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े, सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
4: अच्छा।
3: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
2: मंगल पांडे।
3: हाँ, मंगल पांडे 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
4: अच्छा।
3: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: दादी जी, लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
2: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
1: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
2: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
1: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
0: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
0: ऐसा क्यों?
1: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अरे, अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
2: दादी, फिर क्या हुआ?
1: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
3: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
0: फिर क्या हुआ दादी?
1: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
2: फिर क्या हुआ दादी?
1: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
0: अच्छा।
1: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
2: उसके बाद क्या हुआ?
1: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,

0: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे तीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे,
1: नहीं होने देंगे, बिल्कुल
0: भले ही हमें फांसी के तख्ते पर झूलना पड़े।
2: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
0: भाइयों उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
2: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
3: हम पांडे को अरेस्ट मांगता है।
4: मंगल पांडे जिंदाबाद, मंगल पांडे
5: जिंदाबाद,
4: इंकलाब
5: जिंदाबाद,
4: इंकलाब
5: जिंदाबाद।
2: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉम आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
6: ए मंगल पांडे, वॉच आउट।
2: सारी छावनी में खलबली मच गई।
7: उसके बाद क्या हुआ दादी?
2: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
7: दादी जी, फिर क्या हुआ?
2: कर्नल व्हीलर वहां से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली।

0: come, bind a comb, take on a mountain high, Durant Hospital Pejo!
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूँ।

0: क्या कोई कार्रवाई हुई?
1: हाँ,
2: क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
3: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
2: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
3: इसके बाद क्या हुआ दादी?
2: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
3: अच्छा।
2: इस कविता में क्रांति वीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
4: जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैल, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भैल, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मसहूर चलल, गोरनी का पलटनी का आगे, बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भैल, जननी के भेंट परान भैल, आजादी का बल बेदी पा, मंगल पांडे बलिदान भैल, जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैली।
3: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
2: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
3: अच्छा।
2: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तान कर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशी का।
6: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है, जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
7: तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
8: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
7: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
8: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
7: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
8: अच्छा माँ।
9: माँ।
8: लो, देवेंद्र भी आ गया।
9: दीदी, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
7: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
8: ठीक है माँ।
9: नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठकर खाऊंगा।
8: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
9: ये देखो दीदी, ये मारा।
8: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
9: अरे ये मारा।
8: अच्छा, तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?

0: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
1: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
2: लगता है कोई आया है। काशु बेटी, देखो दरवाजे पर कौन है।
0: अच्छा माँ, कौन आप लोग? कौन कहिए, किससे मिलना है? अरे
3: हमें अंदर आने दो।
0: अरे क्यों?
4: ए लड़की, रास्ते से हट जा।
0: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
3: लड़की हट।
0: माँ,
3: ये चाकू देख रही है ना?
4: ज्यादा होशियारी मत दिखा।
0: अरे
4: वरना इस बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा।
0: माँ
4: हट रास्ते से।
0: क्या हुआ?
1: देखो जल्दी, ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
3: ए शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
0: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
3: ये चाकू देख रही है ना?
0: मेरी माँ को छोड़ दो।
1: मुझे मत मारो,
0: कुछ मत करो।
1: चाबी चाबी मुझे नहीं मालूम,
3: जल्दी,
1: याद नहीं कहाँ रखी है।
4: ये बहानेबाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
1: अरे मेरे बात को छोड़ो,
0: मेरी माँ को छोड़ो।
3: चुप चुप, आवाज निकाली तो यही ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
4: सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
1: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
0: देवेंद्र।
5: हाँ दीदी।
0: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
5: अच्छा,
0: हाँ। पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
5: अच्छा।
0: हेलो।
6: हाँ बेटा बोलो।
0: पापा।
6: हाँ।
0: पापा।
6: हाँ बोलो बेटा।
0: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसा है।
6: कौन घुसा है?
0: माँ को बहुत मार रहे हैं।
6: अच्छा तुम घबराओ नहीं। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है?
0: अब देवेंद्र, मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
5: अच्छा।
0: बचाओ बचाओ, घर में चोर घुसा है, बचाओ।
7: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
8: कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको। कशिका को
9: मत
8: काटा। वाह वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
2: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था। मैं तो डरी गई थी।
8: देखो ना, सबकी जान
2: बहादुर है मेरी बच्ची।
7: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1,000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
10: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहादुर कशिका, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
11: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
10: नमस्कार।
12: उमंग उमंग उमंग उमंग।
13: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ से। मैं विभा सभी श्रोताओं का दिल से स्वागत करती हूँ, और आइए अब सुनते हैं हमारी आज की खास पेशकश सदाबहार नगमे। तो चलिए आज सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं फिल्म गोरा काला का गीत।

अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है शागिर्द।

और आइए अब सुनते हैं फिल्म अनामिका का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, संगीत दिया है आर डी बर्मन जी ने।

आपने सुना आशा भोसले और महेंद्र कपूर को फिल्म वक्त में, और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म अनामिका का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। जब तक आप अनामिका फिल्म का गीत सुने, उसके पहले आइए आपको सुनवा देते हैं अजय अलका और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म वापस का गीत।

और आइए कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं महेंद्र कपूर की आवाज़ में फिल्म हमराज का गीत। संगीतकार हैं लवी रवि और गीतकार हैं साहिर लुधियानवी।

0: और इसी गीत के साथ ही सदाबहार नगमे अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो, फ्रांस।

0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष फॉन डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ भी बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था। भारत विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में शामिल है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। यह सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में हुई। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सरकार परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के विधायक P राजवेल्लू और VP शिवकोलुंधु तथा भाजपा विधायक GNS राजशेखरन को उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इनमें ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। मैच ब्रिटेन के लीड्स में शाम 7 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है और लीजिए अब सुने खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। पुष्पा रावत पत्नी राम सुमेर निवासी 5514/269 भिलावा आलमबाग लखनऊ से सूचित करती हैं कि उनके पति राम सुमेर 25 मई 2026 से कहीं लापता हैं। राम सुमेर का हुलिया इस प्रकार है। उम्र 34 वर्ष, लंबाई 5.4 इंच, रंग सांवला, इकहरा बदन, चेहरा लंबा। इनके गले पर टैटू व हाथ पर DJR लिखा है। इनके बाल घुंघराले और बड़े हैं। इनकी दाढ़ी भी है। जिस समय ये घर से निकले थे इन्होंने काला लोअर और काली हाफ टी शर्ट पहनी हुई थी। राम सुमेर शरीर से दुर्बल एवं HIV से पॉजिटिव हैं। इनके सीने पर ऑरेंज पट्टी लगी हुई थी। ये मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। इनके मिलने की सूचना अगर आपको प्राप्त हो तो कृपया इस मोबाइल नंबर पर दीजिएगा 9869259।

9862 4260। नंबर एक बार फिर से 9869254260। श्रीमती जसोदा पत्नी रामनाथ, कोटा खास पोस्ट, जैतीपुर, जनपद शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश से सूचित करती हैं कि सहदेव पत्नी कांति 26 मई 2026 से कहीं लापता हैं। कांति का हुलिया इस प्रकार है, उम्र 21 वर्ष, लंबाई 5 फिट 2 इंच, रंगे हुआ, चेहरा गोल। जिस समय ये घर से निकली थी इन्होंने बैगनी रंग का सलवार सूट पहना हुआ था। अगली सूचना हमें दी है राममूर्ति, पुत्र स्वर्गीय राम नरेश, निवासी कल्ली पश्चिम, थाना पीजीआई लखनऊ से सूचित करते हैं कि रोशनी 24 मई 2026 से कहीं लापता हैं। रोशनी का हुलिया इस प्रकार है, उम्र 20 वर्ष, कद 5 फिट, रंग गोरा, चेहरा लंबा, आंखें इनकी काली हैं। जिस समय रोशनी घर से निकली थी इन्होंने सफ़ेद रंग का सलवार सूट पहना हुआ था। इनके मिलने की सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 8006660 4। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 8006660543। नंबर एक बार फिर से 8006660543। सुमन देवी पत्नी चंद्र प्रकाश, मोम पिपराहा मंजरा धौरहरा कोतवाली गोसाईगंज जनपद लखनऊ से सूचित करते हैं कि उनकी पुत्री अर्पिता वर्मा उर्फ शिवानी 24 मई 2026 से कहीं लापता हैं। अर्पिता वर्मा का हुलिया इस प्रकार है, उम्र लगभग 18 साल, कद लगभग 5 फीट, रंग गेहुआ। जिस समय ये घर से निकली थी इन्होंने लाल रंग की टी शर्ट और काले रंग की लेगिंग पहनी हुई थी। इनके मिलने की सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 7054551294। नंबर एक बार फिर से 7054551294। इन सब के मिलने की सूचना आप इस पते पर भी दे सकते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, राज अपराध अभिलेख ब्यूरो, उत्तर प्रदेश लखनऊ। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

0: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तरपत्रोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:10 होने को है। अब इलाकाई खबरें नश्र की जाएंगी।
2: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड के जरिए मुंतखब करदा 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को तकरीरी लेटर तकसीम करने के प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुल्क भर में अपनी पहचान बनाई है। पुलिस ने गुज़िश्ता 9 में गुड गवर्नेंस के हदफ को हासिल करने के लिए जिस तरह काम किया है, उसने मॉडल पुलिसिंग की मिसाल कायम की। जनाब योगी ने कहा कि गुज़िश्ता 9 में रियासत में 2.25 लाख पुलिस एहलकारों को मुकम्मल शफाफियत के साथ और बगैर किसी इम्तियाज के भर्ती किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत ने पुलिस एहलकारों की सहूलत पर तवज्जो मरकूज की है और तरबियती सलाहियत में इजाफा किया है। इस मौके पर वजीर आला ने कहा,
3: UP पुलिस के स्मार्ट पुलिसिंग की जो परिकल्पना है, उसके डिजिटल वॉरियर के रूप में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होने और उस भूमिका का हिस्सा बनने के लिए आप सबको अपने आप, हमने प्रदेश के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी लाने का कार्य किया भर्ती आयोगों में, बोर्डों में, उसके परिणाम आए हैं। हमने

0: लाख से अधिक तो केवल सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो वातावरण बना है, लाखों नौजवानों को उसके माध्यम से निवेश से और उद्योगों की संख्या, आप सोचो कि यूपी के अंदर कुल 14,000 बड़े कारखाने थे, कुल 14,000, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, एमएसएमई लगभग बंद हो गया था। आज हमारे पास बड़े कारखानों की संख्या इन 9 वर्ष में 32,000 से अधिक हुई है, लाखों नौजवानों को यहाँ नौकरी मिली है और 96 लाख एमएसएमई यूनिट में फिर से पुनर्जीवित होकर के रोजगार के नए अवसरों को सृजित किया है।
1: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासत के अमन अमान की सूरत हाल, आने वाले त्यौहारों, रियासत के 59 अजला में 21 जून को होने वाले नीट इम्तिहान के उम्मीदवारों के लिए खसूसी इंतजाम करने की हिदायत दी। जनाब योगी आदित्यनाथ ने रियासती ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों में नीट उम्मीदवारों के किरायों में 50% रियायत का ऐलान किया। वजीर आला ने इम्तिहान से मुतल्लिक अफवाहों, गुमराह किन मालूमात या झूठे दावों को फैलाने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी का हुक्म दिया। वजीर आला ने बैनुल अक्वामी योगा डे की तैयारियों का भी जायजा लिया। मुहर्रम के हवाले से वजीर आला ने कहा कि जुलूसों में असलहे की नुमाइश और ऊंची आवाज में डीजे म्यूजिक की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने अमन और हमाहंगी में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अज़्म भी किया। एनटीए के जरिए 21 जून को मुनक़िद होने वाले आइंदा नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान में शफाफियत को बढ़ाने और पेपर लीक होने के इम्कान को ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन पैगाम रसाई को 22 जून तक रोक दिया है। एनटीए ने कहा है कि यह पाबंदी नीट के दोबारा इम्तिहान के दिन और उसके फौरन बाद नाफिज होगी। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को यह भी हिदायत दी गई है कि वह 30 तारीख तक पहले पोस्ट किए गए पैगाम में तरमीम करने के फीचर को बंद कर दे। रियासत में बढ़ते हुए दर्जे हरारत और गर्मी की लहर के हालात के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने बुनियादी तालीम काउंसिल से मुंसलिक स्कूलों और तस्लीम शुदा स्कूलों में गर्मियों की तातीलात 24 जून तक बढ़ा दी है। बुनियादी तालीम और सानवी तालीम महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस सिलसिले में हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक अब गर्मियों की तातीलात हर साल 20 मई से 24 जून तक होगी और 25 जून को बाकायदा तालीमी सरगर्मियां दोबारा शुरू होंगी। ताहम असातजा, शिक्षाबित्र, इंस्ट्रक्टर्स और गैर तदरीसी अमला 22, 23 और 24 जून को स्कूलों में मौजूद रहेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क्यादत में हिंदुस्तान ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर अमल करते हुए गुज़िश्ता 12 सालों में काबिल जिक्र तरक्की की है। इस मौके पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ इस मौजू पर एक खसूसी सीरीज पेश कर रहा है, तरक्की, एतमाद और अवामी बहबूद के 12 साल। आज इस एपिसोड में हम मुल्की विरसे के तहफ़ और फरोग के लिए हुकूमती कोशिशों पर बात कर रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया।
1: आज मुहर्रम महीने की यकूम तारीख है। ये महीना गम के लिए जाना जाता है। इसी महीने की 10 तारीख को इमाम हुसैन और उनके 71 साथियों को कर्बला में शहीद कर दिया गया था। आज यकूम मुहर्रम के मौके पर लखनऊ में शाही जरी का जुलूस 7 बजे निकाला जाएगा। और हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम आज अफगानिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेगी, जिसका मकसद वनडे सीरीज में नाकाबिले तस्खीर बरतरी हासिल करना है। लखनऊ के एकानत स्टेडियम में कप्तान शुभमन गिल की क्यादत में हिंदुस्तान का मुकाबला हशमतुल्ला शाहिदी की अफगानिस्तान टीम से होगा। मैच 1:30 बजे शुरू होगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन 2:00 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
3: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 1:15 और 50 सेकंड्स हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है मातृ शिशु स्वास्थ्य का कार्यक्रम आंगनबाड़ी।

आंगनबाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सब श्रोता पंचन का पंचे नीना सोनकर बहनी के नमस्कार, जय हिंद। पंचे, कहा जात है कि जब बाल बच्चा कोई भी स्त्री के पैदा होता है तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया ही, जैविक प्रक्रिया ही, कि देखो मतलब कौन की बिटेवा के ब्याह हुआ है ना, और के बाद का कहते हैं कुछ समय के बाद वो महतारी बना थी, घर परिवार में मनाई देखो लड़का की शादी करत है, ब्याह करत है तो बहुरिया लेके आते है। तो कहे कि यही एक बात ही कि जब शादी हो जाती, विवाह हो जाते, ब्याह हो जाते तो मैंने सोचा था कि अब घर परिवार बाढ़ी है ना, और हम लोगों की संतति जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो सोचते हैं कि संतति बाढ़ी, यानी कि जौन हमरे वंश बेल है वो बाढ़ी, चाहे बिटिया हो या बिटवा, मने यही सोचा था। और हर चीज़ लगता था जैसे जैसे प्राकृतिक ही है, तो प्राकृतिक, लेकिन ये प्राकृतिक बात जौन है आज के समय में अगर इकी बात कही हम या इकी बात इके बारे में बात कीन जाए तो ये और महत्वपूर्ण हो गई है। अब आप सोचते हो यो कैसे, तो हम बताए कि ऐसे है कैसे, तो सुनो ध्यान से कि आज के समय में जौन दंपत्ति है ना जिके ब्याह होता है घर परिवार में, आपो देखे हुई हो कि जब बच्चा जने का होता है, यानी जो बच्चे के लिए सोच रहे हैं, मतलब ये सोच रहे हैं कि अब हमका बच्चा मतलब चाहिए, यानी अपन परिवार बढ़ाना है, बढ़ाए का है, तो कैसे चाहिए, मतलब आपस में पति पत्नी दंपत्ति बतियाए रहा, बतियाए के कि देखो पैसा कौड़ी भी है, सबे कुछ है, और नहीं ना तो अब रुक जाओ, और तरह तरह के गर्भनिरोधक उपाय तो हाइबे हैं, आपका सबका मालूम भी है, और CSC PSC पे देखो जब जाती है तो जानकारी भी मिला थी, और ANM आशा बहनी जब आती हैं घर परिवार में तो बहु आपका जानकारी देत हुई है। लेकिन जाने हो कि जब अब इका ऐसे समझो कि जैसे कौनो कोई दंपत्ति है, मान लो कि कोई के नाम रमेश है ना, और मेहरिया के नाम शीला है, तो ई जने के लिए सोच रहे हैं कि हमका अब महतारी बाप बने का है, सब संपन्न है, मतलब घर परिवार से दिमागी रूप से संपन्न है, काहे से दिमागी रूप से संपन्न होना बहुत जरूरी है, हर बार की बात सोचना कि अगर ऐसा हो जाए तो कैसा हो जाए तो वैसा, मतलब कि अपनी मानसिक शांति भी बहुत जरूरी है। यही लिए कहा जाता है कि मन मस्तिष्क संतुलित रहता है तब एक सही हष्टपुष्ट शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चा जौन है वो जन्म लेत है। अब मान लो कि जैसे रमेश और शीला के हम उदाहरण दिया, अब वो सोच रहे हैं कि बच्चा जने का, तो जब वो सोच लीन है, माने कि जैसे शीला अब गर्भवती हो गई है, उनकी महावारी मतलब फला तारीख का ख़त्म भई, तो अगर बच्चा जने का है शीला का तो जाए का पड़ी कहाँ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, या फिर ANM बहनी जब आती हैं तो उनका बताए का है, आपका ले जाइए ANM बहनी रजिस्ट्रेशन कराए के लिए अस्पताल, वन पे डॉक्टर बहनी से बताइए, सब आपकी जांचें हुई हैं, खून की जांच हुई, पेशाब की जांच हुई, और हीमोग्लोबिन मतलब वही खून की जो जांच के बारे में कहा है, रक्तचाप की जांच हुई, आपके वजन कितना है, बहू की जांच हुई, कहे से कहा जाता है कि जब कौनो नई नई महतारी बनत थी तो उनके वजन मान लो कि जैसे हम शीला की बात किया है तो 55 किलो की है या 50 किलो की है, मतलब वैसे तो कहा जाता है कि लंबाई के अनुपात में मतलब शरीर के वजन होए का चाहिए है ना, तो अब उके बाद जब वो गर्भ धारण करे से तो कितना वजन होए का चाहिए, ई डॉक्टर बहनी आपका बताइए, ANM आशा बताइए, अपने मन ते कौनो दिमाग में कौनो सोच ना बनायो कि हम ऐसे हैं तो घर में रहो और चढ़ गए दिन, ये सब बातें देखो घर परिवार में हो थी, तो हम आपका बताए दे, ये तो उदाहरण दे के बतावा है कि शिशु के जीवन के पहले 1000 दिन यानी गर्भावस्था की शुरुआत से लेके जौन लड़का बच्चा चाहे बिटिया हुए बुटवा उके दूसर जन्मदिन तक के मतलब वन तक के लिए संपूर्ण जीवन की नींव वही होती। पंचे, वो समय ऐसा होता है, मतलब ई समय जी का कहा जाता है

जब कौनों बच्चे के शरीर दिमाग जैसा बतावा है रोग प्रतिरोधक क्षमता तेजी से विकसित होती। यदि इस समय सही पोषण देखभाल और प्रेम मिले तो बच्चा शारीरिक मानसिक और बौद्धिक रूप से मजबूत बनत है। इसलिए ई अवधि का स्वर्णिम समय कहा जाता है, यानी कि अंग्रेजी में भी गोल्डन पीरियड। गर्भवती महिला के का है पोषण, ई अवधि की शुरुआत है। यदि महतारी के शरीर स्वस्थ रही तो शिशु भी स्वस्थ जन्म ले। इसके लिए कहा है महतारी का आयरन कैल्शियम प्रोटीन विटामिन युक्त भोजन की आवश्यकता होती। गर्भावस्था में अनीमिया से बचाव, नियमित जांच और समय पर संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करना बहुत जरूरी होता है। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद त्वचा से त्वचा के संपर्क और स्तनपान की शुरुआत होए का चाहिए। त्वचा से त्वचा मतलब महतारी के स्तन से बच्चे का दूध पियाए का है, मतलब पहला जौन है उकी खुराक महतारी के दूध है जन्म लेते साथी। माँ के पहला दूध जिसका कोलेस्ट्रम कहा जाता है बच्चा के लिए अमृत के समान होता है। इससे उकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती। पहले 6 महीने तक कहा जाते पंचे, ये डॉक्टर साहब बताती हैं कि केवल और केवल महतारी के दूध है पर्याप्त होता है। न पानी, न शहद, न कोनो आहार, न कोनो घुट्टी। और 6 माह के बाद अन्न प्राशन की शुरुआत होएगा चाहिए, जीमा घर के बना भा नरम पौष्टिक भोजन साफ तरीके से जो बना भा होए, मसला भा होए, बहुत पतला पतला नहीं, गाढ़ा गाढ़ा और लेकिन अच्छी तरह से घुटा भा। इस समय जौन होता है पूरा समय इम्मा नियमित टीकाकरण। सुन रही हो पंचे, आप ध्यान से सुनो। साफ सफाई, स्वच्छता, परिवार के सहयोग और प्यार मोहब्बत बहुत जरूरी होते है। आंगनबाड़ी केंद्रन पे ई जो उन बातें हैं बताई जाती हैं, जब आप उनसे संपर्क करियो। ई आंगनबाड़ी केंद्र आज के समय में अगर देखाओ तो महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। काहे से कि वन बच्चन की निगरानी होती, महतारियन की जो उन माँ बनती हैं काउंसलिंग होती और पोषण आहार की व्यवस्था भी की जाती। आज हम ई आपका ई वदे उदाहरण दे के बतावा कि जौन संस्थागत प्रसव है उसकी महत्ता का जानो। काहे से आप संस्थागत प्रसव जब करवाइयो तो तब आपका पता चली कि आखिर समय में कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे डेट वेट जब होती तारीख होती ना गड़बड़ाई जाती, तो मन ही सोचे लगा था कि जौन मेहरिया ही कि फला तारीख का महीना बंद हुआ रहा या ढमाके तारीख का बंद हुआ रहा। तो उससे अच्छा है कि जैसे ही आप परिवार के बढ़ाई के बारे में सोचो तो आप सीधे एनम के साथ डॉक्टर बहनी के पास जाओ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वन जाए के सब बात अपनी बताओ कि हम परिवार बढ़ाए का है हमका। ये जो गफलत की स्थिति होती ना आगे पीछू की, ये का होता है इससे कि कभी मान लो कि आपका उकी जरूरत पड़ी 108 नंबर एम्बुलेंस की, तो आप तो सोचे हो कि इस समय हमरे प्रसव होए का है और प्रसव उससे पहले ही दर्द वर्द शुरू हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एन मौके पे कि बच्चा जौन है सब कुछ तो सही है लेकिन बच्चा अपन महतारी के गर्भ में मतलब उके जौन है मतलब वो करवट ले लीस या यहार बाहर होएगा जो उसकी आकृति है वो बदल गई, मतलब आकृति नहीं बदला थी, मतलब उके जौन कहा जाए कि घूमे लगत है या मतलब जैसे करवट लीस है कुछ करीस है तो आड़ा बेड़ा भी हो सकत है। यही ले कहा जाता है जौन सुरक्षित प्रसव होता है वो संस्थागत प्रसव होता है। मान लो ऐसा कुछ समय हो जाता है कि आप पहुंच गए अस्पताल और अचानक सब कुछ सही है, डॉक्टर बहनी बताइन कि नहीं ऑपरेशन से बच्चा हुई, तो उस समय वन सारी व्यवस्था होती, सारे उपकरण होते हैं जो ऑपरेशन करे के लिए बेहद जरूरी होते हैं। वन पूरी व्यवस्था ऐसी होती, मान लो खून की कमी हुई गई कुछ होगा तो वो सब आप निगरानी में डॉक्टर की, नर्स की, ANM की, सबकी निगरानी में आप रहती हो। तो ई होता है मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाए के प्रसव का कराना, रजिस्ट्रेशन कराना, इसके बहुत महत्व है और संस्थागत प्रसव के फायदे ही फायदे हैं। अब देखो हमरे कुछ ऐसे पंच भी हैं जो हमका कहते हैं कि हमका ऐसी गौ नहीं सुनवाओ जो बहुत दिन थे हम सुने नहीं ना। तो हमका लगा कि सारे पंच हमरे ई गौनई का बहुत पसंद करिए। जिम्मा है कि कोठे के ऊपर कोठरी, ओके ऊपर रेल भी चलती बच्ची। अब सुनो

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र

0: करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: बंजी एक बार फिर से आप सबके स्वागत है। आप सुन रहे हो आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम आंगनबाड़ी। पंची कहा जाते हैं कि घर परिवार जौन है कौनो मेहरिया से चलत है, और मेहरिया घर परिवार में जो के रोल है सब के घर में आप देखे हुई हो, अपनी महतारी का देखे हुई हो, अपन आजी का देखे हुई हो, अपन घर परिवार में जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं बहन का देखे हुई हो, बिटेवा का देखे हुई हो। तो कहा जाता है कि मेहरिया के जौन रोल है वो कोई के रोल नहीं हो सकत है। प्रकृति उनका धैर्य धीस है, सहनशील बनाई से, और उनका इतनी क्षमता धीस है कि वो हर बात का समझ लेती हैं, कब कब वो सहन करती हैं, कब क्रोधित भी हो जाती हैं, कब कब तो गुस्सा आना लाजमी है, लेकिन कोई से कहती नहीं ना। अब देखो जिनके घर परिवार में मेहरियाँ हैं और जो खेत खलिहान पे कामों करती हैं तो उनके जीव से पूछो कि वो काका करती हैं। और जब इतने दबाव में रहती कौनो मेहरिया, मान लियो खेत खलिहान से काम करके आई अपन घर में, चौका बासन सब करिस, सबका खियाइस पियाइस, बर्तन भांडा सब मांजिस, और उसके बाद का भा अचानक मान लो कौनो आ जाए, कौनो मिले वाला, उके लिए भी फिर भोजन की तैयारी मनाई करत है। अब समाज है, अगर ना तैयारी करिए हो ना खिए हो पिए हो तो मनाई सोची अरे देखो फलनवा के घर गए रहन और भुक्का सो गए, एक बार कहन कि खाए पी के आए हैं, और दोबारा मतलब कहा जाता है झुट्टा नहीं पूछें, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है, तो ऐसा होता है। तो जब मेरी कौनो भी हुए, चाहे हम हुई जो हमारी पंचे बहनी इतने सब कार्यक्रम का सुन रही हैं, जब ऐसे दबाव में रहती हैं ना तो मानसिक कभा कभो स्वास्थ्य उनके यार बाहर हो जाते हैं। आज यही सब बात हम आपका सुनाए जा रहे हैं ई भेंट वार्ता में। ई है डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, कौनो परिचय के मोहताज नहीं है, और ई देखो कितनी अच्छी अच्छी बात करी है, और ध्यानपूर्वक सुनो। श्रोताओं, आज आकाशवाणी लखनऊ के टॉक स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी को, जो किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में वृद्धावस्था मानसिक स्वास्थ्य विभाग में प्रोफेसर हैं, और आज हम इनसे चर्चा करेंगे महिलाओं में बढ़ते अवसाद के कारणों की। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: आपको बहुत बहुत नमस्कार और श्रोताओं को भी बहुत बहुत नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि आज हम चर्चा आपसे महिलाओं में अवसाद के कारण की करेंगे, तो जो ममता है, शक्ति है, सृजन का प्रतीक है, एक स्त्री अपनी हर भूमिका, चाहे वो पत्नी की हो, बहन की हो, बेटी के रूप में हो, प्रेम और जिम्मेदारी से निभाती है, बच्चों को जन्म देती है, पालन पोषण करती है उसका, और घर परिवार संभालती है, या यूं कहा जाए कि हर घर परिवार की रीढ़ की हड्डी स्त्री ही होती है, यानी कि वो महिला होती है जो घर परिवार को संभालती है। तो इतने सारे रोल वो निभाती है, और उसको निभाते निभाते वो इतनी बिजी हो जाती है कि उसको खुद का ध्यान ही नहीं रहता। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, इतने सारे रोल की जब हम बात करते हैं तो उन्हीं रोल को निभाते निभाते कहीं ना कहीं वो महिला अवसादग्रस्त होती है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए श्रोताओं को, अवसाद क्या है और महिलाओं में अवसाद क्यों होता है?
2: बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, अवसाद को कॉमन शब्दों में जो आम भाषा में प्रचलित है आपको हम बता दें, उसको डिप्रेशन कहते हैं। कई बार आप अवसाद कम सुनते होंगे, डिप्रेशन ज्यादा सुनते होंगे। तो आजकल के समय में ये महिलाओं में तो कॉमन समस्या है ही, लेकिन और लोगों में भी बहुत कॉमन रीति से आगे बढ़ रही है
1: जी।
2: तो जहाँ तक हम डिप्रेशन की बात करें तो इसमें कई बार बहुत शुरुआती दौर में हम इनके लक्षणों को नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए हमें डिप्रेशन के महत्वपूर्ण लक्षणों को समझना जानना आवश्यक होता है। कई बार हम छोटी छोटी बातों से थोड़ा समय के लिए उदास हो जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको हम अवसाद ही कहें। तो अवसाद को या डिप्रेशन को समझने के लिए, श्रोताओं की जानकारी के लिए, 3-4 बातें होना आवश्यक है
1: जी।
2: जैसे हम जानते हैं कि जो डिप्रेशन है ये एक मन की अवस्था है, मन की बीमारी है
1: जी।
2: तो थोड़ा बहुत उदासी तो उतार चढ़ाव में आती है, लेकिन अगर मन की उदासी लगातार 2 हफ्ते से ज्यादा और दिन में ज्यादातर समय अगर बनी रहती है तो ये डिप्रेशन का महत्वपूर्ण लक्षण हो सकता है। उसके अलावा जो उनकी रुचि की चीजें, जैसे मान लीजिए किसी को पढ़ने का शौक है या घूमने फिरने का शौक है, मान लीजिए खाना बनाने का शौक है, तो जो उनकी रुचिकर चीजें जिनमें उनका पहले रुचि हुआ करता था, उसमें थोड़ा सा रुचि कम हो जाना, उसमें इंटरेस्ट कम हो जाना, शरीर में थकान लगना
1: जी,
2: थोड़ा सा भी काम करके बहुत थक जाना, काम करने में मन ना लगना, नींद ना आना
1: जी,
2: और छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन हो जाना, ये भी

0: अवसाद के बहुत महत्वपूर्ण लक्षण हो सकते हैं। भूख कम लगना, लोगों से मिलना जुलना नहीं, तो कई बार घर में लगता है कि शायद ये बहाने कर रहे हैं या काम करना नहीं चाहते हैं। लेकिन चूंकि हम घर के सदस्य को पहले से जानते हैं, अगर उनके व्यवहार में इस तरह का कोई परिवर्तन देखते हैं तो ये परिवर्तन अवसाद के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। जहां रहा दूसरा सवाल आपका कि डिप्रेशन होता क्यों है, देखा जाए तो इसके बहुत सारे कारण हैं। शारीरिक कारण भी हैं, सामाजिक कारण भी हैं, आर्थिक कारण भी हैं। एक तो जैसा आपने बताया कि महिलाएं घर की रीढ़ होती हैं, बहुत सारे उनके पास जिम्मेवारी होती है, लेकिन क्षमता तो लिमिटेड होती है ना किसी के पास भी। तो अगर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, बहुत ज्यादा जवाबदारी आ जाए, तो कभी कभी महिलाएं उस जिम्मेवारी का निर्वहन करने में उतनी सक्षम नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं ज्यादा बर्डन हो जाना, जिम्मेवारी हो जाना, ये भी डिप्रेशन का एक कारण हो सकता है। दूसरा, कुछ कुछ महिलाएं मन से बहुत कमजोर होती हैं, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा सेंसिटिव होती हैं
1: जी।
0: तो कभी कभी कोई बात, फॉर एग्जाम्पल उनका बच्चों से बहुत प्यार होता है, पति से प्यार, सबसे प्यार होता है, तो कोई उनको अगर कुछ थोड़ा बहुत कह देता है तो वो किसी की बात को उतना सहन नहीं कर पाती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। फिर उनमें हार्मोन के चेंजेस होते हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। तो बच्चों की जिम्मेवारी, वो भी एक कारण हो सकता है। तो ऐसे कुछ कारण हैं जो महिलाओं में डिप्रेशन के कारण हो सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत सिलसिलेवार तरीके से बताया कि डिप्रेशन के कारण महिलाओं में किस किस तरीके से होते हैं। आपने रजोनिवृत्ति के आसपास की बात की, हार्मोनल परिवर्तन और जीवन के उतार चढ़ाव की बात की। अब वो रिश्ता जो पति पत्नी का होता है, कभी कभी उन रिश्तों में तनाव होता है, कभी कभी बच्चों के साथ जो व्यवहार माँ करती है एक प्यार भरा, लेकिन पलट कर बच्चे जब जवाब देते हैं या फिर कोई ऐसा व्यवहार करते हैं जो माँ के अनुकूल नहीं होता है या अपने बच्चे से वो उम्मीद नहीं करती है, तो वो भी कहीं ना कहीं अवसाद का कारण बनता ही है। और ये भी कहीं ना कहीं लगता है, तब किसी भी महिला को लगता होगा, ऐसा मैं सोचती हूँ, कि ये एक थैंकलेस काम है। बच्चों को जन्म दिया, उनका पालन पोषण किया, अपनी जिंदगी के सुनहरे क्षण लम्हे परिवार को समर्पित कर दिए, लेकिन जब आज मेरी बारी आई तो मैंने सिर्फ सम्मान के लिए ही सोचा, तो ये भी डिप्रेशन का कारण बनता है। अगर समय रहते इन बातों को ध्यान में न रखा जाए और परिवार उस महिला की देखभाल में या व्यवहार में अपनी कोई परिवर्तन नहीं लाता है, तो क्या वो महिला दीर्घकालिक डिप्रेशन में जा सकती है बिना किसी को कुछ बताए कुछ कहे? क्या वो गुमसुम रह सकती है या फिर वो कभी अपनी उस जिंदगी में वापस नहीं आ सकती? क्या बताना चाहेंगे?
0: देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, बच्चों को परवरिश करना, उनको बड़ा करना, पढ़ाना लिखाना, ये सब माता पिता तो करते ही हैं, पर साथ में हमें कुछ और चीजों के लिए खुद को भी और बच्चों को भी तैयार करना आवश्यक है। जैसे आपने एक बात कही कि बच्चे कुछ माता पिता को कह देते हैं, बात सहन नहीं कर पाते हैं। देखिए, दो तीन बातें हैं। अक्सर करके हम देखते हैं जो माता पिता के संस्कार होते हैं बच्चों के संस्कार से अलग होते हैं, या बच्चों के संस्कार माता पिता के संस्कार से अलग होते हैं। हर एक व्यक्ति, घर में, परिवार में भी एक व्यक्ति दूसरे के समान नहीं है, हर व्यक्ति अलग अलग है। तो हमें सबसे पहले ध्यान ही रखना चाहिए कि हर व्यक्ति के लिए अपने मन में उस प्रकार का रिस्पेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि भाई, हर व्यक्ति हमारे अनुसार नहीं चल सकता है
1: जी,
0: और ना मैं हर व्यक्ति को अपने अनुसार चला सकती हूँ। तो हर व्यक्ति का अपना अपना समझ है और अपने अपने हिसाब से चलते हैं, तो उस हिसाब से हमें बच्चों को, परिवार के सदस्यों को तैयार करना चाहिए। क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं है कि हर कोई हमारा कहना माने या हर कोई हमारे अनुसार ही बात बोले जो मुझे पसंद हो। तो इसके लिए हमारे अपने मन को ही अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिसको हम गीता में कहते हैं साक्षी भाव रखना
1: जी,
0: अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से वियर करना, निभाना, और साथ में साक्षी भाव रखना कि सबका अपना अपना रोल है
1: जी,
0: हम अपने रोल को ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं
1: जी।
0: तो अगर हम इसकी तैयारी पहले से करें, फॉर एग्जाम्पल कई बार हम सोचते हैं भाई, अब प्यास लगी है तो कुआं खोदे
1: जी,
0: तो उस समय तो नहीं हो पाएगा ना। लेकिन अगर उसकी पहले से ऐसी तैयारी करते हैं कि भाई ठीक है, हमारा जो फर्ज है बच्चों की अच्छे से परवरिश करना, ध्यान रखना, हम कर रहे हैं, अब उनका क्या रोल है क्या रोल नहीं, उसमें हमारा अधिकार नहीं है। तो अपने मन को हमें इस तरह की परिस्थितियों के लिए पहले से हमको तैयार रखना चाहिए। तो क्या होगा, जब कभी ऐसी बातें होंगी तो उनकी बातों का जो चोट है
1: जी,
0: वो हमारे दिल पर कम होगा
1: जी,
0: और जब कम होगा तो हमें कम चोट पहुंची, कम दर्द होगा, तो डिप्रेशन की समस्या होने की संभावना कम हो जाएगी
1: जी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया और पूरी उम्मीद है कि हमारे श्रोता इस प्रोग्राम को ध्यान से सुन रहे होंगे। ये भी बात डॉक्टर साहब,

0: आपसे पूछना चाहूंगी कि कुछ लोग होते हैं बहुत संवेदनशील होते हैं, यानी उन्हें कुछ कहा जाता है तो जल्दी उन्हें किसी भी बात का बुरा लगता है, लेकिन कुछ होते हैं उनको असर नहीं होता है, तो क्या ये भी एक बात है जो किसी भी महिला में इस तरह से चोट पहुंचाती है, आहत करती है?
1: जी बिल्कुल, ये दोनों प्रकार की बातें अलग अलग महिलाओं में मिल सकती हैं। हो सकता है कोई महिला बहुत संवेदनशील हो
0: जी,
1: हो सकता है कोई महिला पर किसी बात का बहुत ज्यादा असर ना पड़े
0: जी,
1: पर ये हम जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी बच्चे की हम परवरिश करते हैं
0: जी,
1: तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं

0: ना कहते हैं, तो वो उनकी वीकनेसेस जो हैं वो हमेशा के लिए बनी रह जाती हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी वीकनेस बनी रह जाती है, उस समय भी वो वीकनेस होती है तो सोचते हैं भाई कौन कुछ कहे ना, लेकिन जब किसी ने कुछ कहा तो वही वीकनेस उनके लिए फिर समस्या बन जाती है। तो हमारा सिर्फ कहना यह है कि अगर मुझे पता है, पेरेंट्स को पता है या हमारे गार्जियंस को पता है कि हमारी वीकनेस है या किसी की वीकनेस है, तो ये करने के स्थान पर कि नहीं भाई से ये बात नहीं करो नहीं तो नाराज हो जाएगा, इसके स्थान पर हमें ये प्रयास करना चाहिए कि इनको कैसे मजबूत बनाया जाए कि कभी इनको कोई गलती से कोई कुछ बोल दे तो ये हर्ट फील ना करें, ये बहुत दुखी ना हो जाए, परेशान ना हो जाए, तो इस बात की हमें आवश्यकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, ये बताइए क्या अनुवांशिक कारण भी है कोई कि इस तरह से महिलाओं को परेशान करता है?
0: इस पर्टिकुलर महिलाओं में नहीं, पर डिप्रेशन में कुछ अनुवांशिक कारण भी होते हैं।
1: जी
0: रिसर्च में ऐसा मिला है जिन पेरेंट्स में डिप्रेशन होता है या जिनके ग्रैंड पेरेंट्स में डिप्रेशन होता है, सिबलिंग्स में डिप्रेशन होता है, तो उनको डिप्रेशन होने की संभावना जनरल पॉपुलेशन की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होती है।
1: जी
0: तो ये तो रिसर्च है, उसमें तो संभावना थोड़ा सा ज्यादा होती है, लेकिन हाँ अगर इस पर शुरू से ध्यान दिया जाए तो उस संभावना को मिनिमाइज किया जा सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि स्त्री ममता शक्ति सृजन का प्रतीक है और हर भूमिका को बखूबी निभाती भी है, और अगर ध्यान से देखा जाए तो हर स्त्री के चेहरे के पीछे एक ऐसा चेहरा भी है जो दुखी है, एक तरह से कहा जाए कि उसको भी दरकार है प्यार की, मोहब्बत की। तो घर को या परिवार को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और समाज को भी क्या कहना चाहेंगे?
0: बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तव में देखिए, प्यार की दरकार सिर्फ माँ को नहीं है, सबको प्यार की दरकार है, और आज के समय में अगर आप देखेंगे कि हर कोई चाहता है, करता कोई नहीं।
1: जी
0: तो हम ये कहेंगे कि भाई कोई मुझसे प्यार से बात करे, कोई मुझसे अच्छे से बात करे, ठीक है, दैट्स ओके, लेकिन जब सब चाहेंगे तो करेगा कौन?
1: जी
0: तो कहीं ना कहीं सिर्फ ना केवल माँ के लिए, परिवार के हर सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वो प्यार चाहने के स्थान पर प्यार बांटना शुरू करें।
1: जी
0: क्योंकि बीइंग ए मदर या बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, जो हमारा संस्कार है प्यार मांगने का नहीं है, प्यार बांटने का है। तो जितना हम इसको बांटना शुरू करेंगे, जितनी जल्दी अपने जीवन में बांटना शुरू करेंगे, उतना हमारे खजाने पहले से भरे होंगे। तो जब कभी जीवन में ऐसे क्षण आएंगे तो हमें किसी से प्यार मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, कोई प्यार से बात करनी, मेरे पास ऑलरेडी प्यार बहुत है।
1: जी
0: तो हम यही कहना चाहेंगे कि किसी से चाहने के स्थान पर हम बांटना शुरू करें, देना शुरू करें। दूसरा इम्पोर्टेंट बात ये कि प्यार चाहिए किसको, किसके पास नहीं है और देगा कौन, जिसके पास है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो अगर प्यार देने वाला प्यार दे नहीं रहा है तो प्यार चाहने वालों को प्यार मिलेगा कहाँ से?
1: बिल्कुल।
0: और प्यार चाहने वाला अगर प्यार चाहता रहेगा, देगा नहीं, तो उसको मिलेगा कहाँ से?
1: बिल्कुल।
0: इसलिए हम ये कहना चाहते अपने श्रोताओं को, प्यार मांगने की चीज नहीं है, प्यार बांटने की चीज है। आप जितना सबसे प्यार से बोलेंगे, अच्छे से बात करेंगे, सबके लिए सहयोग का भाव रखेंगे, उतना आपको जरूरत पड़ने पर सबसे स्नेह और प्यार स्वतः ही आपको मिलेगा।
1: जी डॉक्टर साहब, वैसे एक फिल्म के गाने की लाइन है, प्यार को चाहिए क्या एक नजर, एक नजर, लेकिन आपने कहा कि अब उस नजर को भी हमें दूसरों के लिए उठाना होगा, यानी कि दूसरों को प्यार देने वाला बनना होगा।
0: बिल्कुल। कब तक हम चाहते रहेंगे?
1: जी
0: सब चाहते हैं।
1: जी
0: पर डिलीवर कौन करेगा?
1: जी चाहने से कुछ नहीं होता है।
0: जी करना पड़ेगा।
1: अब आप उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो ऐसे दौर से गुजर रही हैं, अवसाद के, और उनको लगता है कि उनको कुछ करना चाहिए, क्या करना चाहिए खुद भी नहीं पता है, क्या कहेंगे आप?
0: बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न सिर्फ उन महिलाओं के लिए नहीं है, ये उन परिवार के सदस्यों के लिए भी जहाँ पर ऐसी महिलाएं रहती हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि हम इस तरह के लक्षणों को समय से पहचान लें।
1: जी
0: उसको टालते ना रहें, उसको कोई बहानेबाजी समझ करके उसको नकारात्मक दृष्टिकोण से ना देखें और ना कोई इसको स्टिग्मा की तरह देखें, लोग क्या सोचेंगे। लक्षणों को पहचाने, जैसा हमने कहा, नींद ना आना, भूख ना लगना, मन ना लगना, चिड़चिड़ापन होना, उदास रहना, उन लक्षणों को जितनी जल्दी आप पहचानते हैं, पहचान करके डॉक्टर की सलाह लेते हैं, उतना उन महिला के लिए और परिवार के सदस्यों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि अगर एक महिला स्वस्थ होगी तो घर का पूरा ध्यान रखेगी, खाने से लेकर के बच्चों की परवरिश से लेकर के पूरा ध्यान रखेगी। इसलिए उसमें लेट नहीं करें, जल्दी पहचाने, जल्दी इलाज कराएं और घर को खुशियों से संपन्न रखें।
1: चलते चलते क्या टिप्स देना चाहेंगे डॉक्टर साहब?
0: लखनऊ में कहते हैं मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है तो मैं तो ये कहूंगा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, पहले आपका लेसन पक्का कर लें, जिंदगी में हमेशा गुनगुनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।
1: डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी, आपने बहुत अनमोल जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। आपने बताया कि महिलाएं जब अवसादग्रस्त हों तो उन्हें करना क्या चाहिए। आज

0: जी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था कि उन्हें अपेक्षा कम और देने वाला ज्यादा बनना चाहिए, और प्रकृति ने भी उन्हें देने वाला ही बनाया है।
1: नेकी कर दरिया में डाल।
0: बिल्कुल। आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने अपना कीमती समय आकाशवाणी को दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंचे ये रहे डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी, ई किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में वृद्धावस्था मानसिक स्वास्थ्य विभाग में प्रोफेसर है। देखो कितनी नीक नीक बात करी ने, और हमको पूरी उम्मीद है कि ई भेंट वार्ता आपका बहुत ही नीक लगी हुई और आपके मानसिक स्वास्थ्य का सही रखे के लिए, सुदृढ़ बनाए के लिए जरूर ई मदद करी।

सरौता कहाँ भूल ही आए प्यारे नन्द दुइया, ऐसे ही चलती घर परिवार की गाड़ी, और आप लोग रहो घर परिवार के साथ कुशल क्षेम से। मंगल कामना यही हम कर सकत हन आकाशवाणी लखनऊ के स्टूडियो से। और यहूँ हम आपका बता दें कि राष्ट्रीय पोषण मिशन के बारे में बहुत बार आपका बतावा है, तो ये एक ऐसी योजना है जो 2018 में चलाई गई। इम्मा बच्चे, किशोर, गर्भवती महिला और स्तनपान कराए वाली महिलाओं का कुपोषण से दूर करे के लिए और पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाए के लिए ये योजना चलाई गई रही। और आपका यहूँ बता दें कि केंद्र और राज्य सरकारें, आंगनबाड़ी केंद्र, ANM, आशा कार्यकर्ता, पंचायत और समुदाय की भागीदारी इम्मा सुनिश्चित करती। और इके तहत विभिन्न पोषण सेवान की तकनीकी माध्यम से जुड़े के लिए पोषण ट्रैकर ऐप भी चलावा गया है। आप लोग जब ऊपर कंप्यूटर पर डलियो और ऑनलाइन ई के रजिस्ट्रेशन करिए तो आपका सारी जानकारी मिल जाएगी कि लाभार्थी कौन है, उनके विवरण कैसे लिखा जाता है, उनकी निगरानी कौन करत है और सेवा की गुणवत्ता का कैसे सुनिश्चित कीन जात है। तो इतनी सारी बातें रहीं पंचे आज बताए के लिए आप सबका। हमका ये लगत है कि हम काका पाई और काका बताए दे, लेकिन देखो यही बीच हमका लिखिन है विजयपाल यादव जी, ये मेल भेजिन है, ये हैं किसान रेडियो क्लब ग्राम व पोस्ट ललहुआ जिला लखीमपुर खीरी के, लेकिन हैं इनके साथ साथ जो मनाई और लिखिन है मेल उनके नाम भी पढ़ दे। शुभम यादव, ऋचा, शिखा, गुड़िया यादव और विजय पांडे की कार्यक्रम बहुत नीक लागत है। और 10 जून का जो जानकारी दी गई कि बढ़त की जो बड़ी उम्र की यानी वृद्ध महिलाओं में दातन की समस्या कैसे होती और इसके बारे में पूरन चंद जी डॉक्टर साहब बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, जानकारी दी। और पूरी उम्मीद है कि आज के आंगनबाड़ी कार्यक्रम आप सब पंचे का नीक लगा हुई। गर्मी के मौसम में स्वच्छ जल के सेवन

0: करो, कहूँ गंदा पानी आए भी रहा तो उसका उबाल के छान के घड़ा में भर के तब उके सेवन करेगा है। मतलब गंदा पानी वैसे पिए का नहीं ना, लेकिन मान लो हल्का फुल्का मटमैला है वैसे भी जो साफ दिखत है, दरअसल वो स्वच्छ नहीं रहता है। तो सबसे सुरक्षित तरीका कि उका आप उबाल ले और छान के पियो। अब जल्दी से पता नोट कर ले कि कार्यक्रम के पता कहाँ है। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन संख्या है 226001। अब आज के कार्यक्रम आंगनबाड़ी समाप्त करे की देव नीना सुनकर बहनी का अनुमति। सब का नमस्कार। जय हिंद।
1: हरा समंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली चिट्टा पानी,
2: चिट्टा पानी,
1: चिट्टा पानी, हरा समंदर गोपी चंदर।

0: गोपी सुंदर बोलरी मछली
1: अभी आप सुन रहे थे मातृ शिशु स्वास्थ्य का कार्यक्रम आंगनबाड़ी मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जवानों के लिए।

जवानों के लिए कार्यक्रम सुनने वाले सभी फौजी साथियों को जय हिंद। आप सभी को विभाग का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कार्यक्रम है आपके मेल और पत्रों पर आधारित, तो हम आपको मेल आईडी बता देते हैं। हमारा मेल आईडी है कार्यक्रम जवानों के लिए @gmail.com। और हमारे पुराने श्रोता तो हमको मेल करते ही रहते हैं, तो देखिए ये मेल आया है हमारे पास विजय पाल यादव जी का, ललहुआ लखीमपुर खीरी से। आप ने लिखा है, जिंदगी में कभी हार मत मानो, चाहे हालात जैसे भी हों, खुद को उठाओ, एक दिन ज़रूर सफलता कदम चूमेगी। बस खुद पर विश्वास रखो और बढ़ते चलो। जिंदगी सिर्फ हंसी और खुशी का नाम नहीं है, यहाँ कभी कभी चोट भी मिलती है, कभी धड़कनें थमती हैं, फिर भी उम्मीद का दिया जलाए रखना चाहिए। क्या बात है विजयपाल जी, आप बातें बहुत अच्छी लिखते हैं और बड़ी ही लोगों को ज्ञानप्रद लगती हैं। और इन्होंने कहा है कि आज इनको गाना सुनना है फिल्म बादल का गीत, अपने लिए जिए तो क्या जिए। तो भाई विजयपाल जी, आपको ये गीत हम ज़रूर सुनवा देते हैं। इनका पता फिर आपको हम बता ही चुके हैं। और विजयपाल यादव जी के साथ हैं शुभम यादव, ऋचा यादव, शिखा यादव, गुड़िया यादव व विजय पांडे, किसान रेडियो क्लब ग्राम व पोस्ट अलहुआ ज़िला खीरी से। तो चलिए भाई, अब आप सबकी पसंद का ये गीत सुनवा देते हैं फिल्म बादल का। इसे गाया है मन्ना डे ने, गीतकार हैं जावेद अनवर और संगीतकार हैं उषा खन्ना।

और देखिए, जो अगला मेल आया है हमारे पास वो है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप का, कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज का। आप सब ने फरमाइश की है, गीत के बोल इन्होंने लिखे हैं, तुमको भी है खबर मुझको भी है पता। तो ये कभी अलविदा ना कहना का ये गीत है, चलिए आपको सुनवाते हैं।

देखिए ये मेल आया है हमारे पास जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से, रामराज राजू भानु रामशंकर पत्रकार भाई वाले रक्षा मौर्य राम सागर शाहू रसूलपुर वाले, आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म कुदरत का कानून का गीत। तो चलिए भाई आप सबको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने।

और देखिए ये मेल आया है हमारे पास जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयशी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेखू मूसा भाईजान, और आप सब सुनना और भाई राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी रोहित ऋतु मुकेश जगताप, आप सब सुनना चाहते हैं अनुरोध फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। तो चलिए जल्दी से आपको ये गीत सुनवा देते हैं।

0: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: इसी के साथ ही जवानों के लिए कार्यक्रम समाप्त हुआ। फौजी साथियों, जय हिंद।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। दोपहर के 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा। 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील

0: रूसी और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वाशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
1: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है, ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए, भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख एशियाई कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी सीईओस के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे

0: पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
1: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
2: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो COP 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
3: NTA is committed. NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी न हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
4: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में

0: अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव के मीटर पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है और सुनिए कार्यक्रम विज्ञान और किसान के अंतर्गत डॉक्टर राजेश कुमार कनौजिया से की गई भेंटवार्ता, धान की उन्नत कृषि तकनीक। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खरीफ के मौसम में जहां धान उत्पादन की योजना बनाए हैं तो धान की उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर रायबरेली से वैज्ञानिक सस्य विज्ञान डॉक्टर राजेश कुमार कनौजिया साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां खरीफ में धान उत्पादन की योजना बनाए हैं किसान भाई बहन, तो क्या सलाह है?
4: नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धान जो है हमारी खरीफ सीज़न की मुख्य फसल है और इस समय की अगर हम बात करें तो जैसा कि धान की खेती के लिए पहले हम लोग उसकी नर्सरी तैयार करते हैं और नर्सरी के लिए जो उपयुक्त समय हमारा होता है मध्य मई से जून मध्य तक, ऐसे में बहुत से किसान भाइयों ने नर्सरी डाल चुके हैं और बहुत से किसान भाई अभी भी नर्सरी डालने की अवस्था में हैं।
3: प्रजातियां कौन कौन सी हैं डॉक्टर साहब जो अच्छी पैदावार देंगी और अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से, जैसे जहां सामान्य धान, कम दिन वाला धान या मध्यम या देर से, या संकर धान या सुगंधित धान?
4: जी हाँ, जहाँ तक धान की हम अगर बात करें तो धान की ढेरों प्रजातियां हैं और अलग अलग परिस्थितियों के लिए हैं। जैसा कि अभी आपने बोला कि सामान्य की परिस्थितियाँ हों, विलंब की अवस्था हो या फिर लंबी अवधि वाली हो, शीघ्र वाली हो तो पकने वाली हो, तो इस तरीके से विभिन्न प्रजातियां हैं। वहीं पर बहुत से किसान भाइयों का जो पैच है वो ऊसर होता है।

0: उत्तर प्रभावित भूमि होती है, तो उसके लिए अलग प्रजातियां हैं, वही सुगंधित प्रजातियां हैं। अगर हम बात करें शीघ्र पकने वाली प्रजातियों की बात करें, तो उसमें CO51 जो है इस समय की तत्कालिक जो चल रही है,
1: CO51
0: जी हाँ, CO51 जो है वो शीघ्र तैयार होने वाली प्रजाति हैं। वहीं पर अगर हम विलंब की बात करें, तो विलंब की अवस्था में मंसूरी सेगमेंट में MTU 7029, BPT 5204, स्वर्णा सब्वन, शाम्बा मसूरी, ये सब प्रजातियां हैं। वहीं पर अगर हम ऊसर प्रभावित क्षेत्रों की बात करें, कि जहां पर किसान भाइयों की pH मान जो है ज़मीन का ज़्यादा है, वहां पर ये सामान्य प्रजातियां नहीं चल पाती हैं, तो ऐसे में CSR 10, CSR 13, CSR 36, 43 ये प्रजातियां हैं। साथ ही साथ नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की जो प्रजातियां हैं, नरेंद्र ऊसर 1, नरेंद्र ऊसर 2 और नरेंद्र ऊसर 3, साथ ही साथ जो वर्तमान में प्रजाति ज़्यादा प्रचलित है वो नरेंद्र ऊसर 2008 है। इसके साथ ही साथ जब हम सुगंधित की बात करते हैं, कि बहुत से किसान भाई हमारे सुगंधित प्रजातियों की खेती करना चाहते हैं, तो ऐसे में काला नमक प्रजाति जो है किसानों के बीच में प्रचलित हो रही है। जैसे कि काला नमक एक हमारी देसी प्रजाति हुआ करती है, जो कि काफ़ी समय लेती है पकने में और उसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि वो काफ़ी ऊंचाई ज़्यादा रखती है। तो ऐसे में ICAR के जो हमारे वैज्ञानिकों ने काला नमक किरण के नाम से प्रजाति निकाली हुई है,
1: यानी उन्नत काला नमक है,
0: उन्नत काला नमक कहेंगे। साथ ही साथ मालवी सुगंधा 105, 106, 4-3, इसके साथ ही साथ वल्लभ बासमती 22, पूसा बासमती इत्यादि प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त किसान भाई हमारे जो हैं तमाम रिसर्च की प्रजातियां भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये है धान की प्रजातियों के बारे में।
1: डॉक्टर साहब, जहां धान की उन्नत प्रजातियों की बिहन पड़ चुकी है, नर्सरी पड़ चुकी है, क्या अभी भी गुंजाइश है खास करके सुगंधित धान की?
0: जी हाँ, जैसा कि जो हमारी खरीफ की खेती है और ख़ास तौर से धान की खेती है, मुख्य रूप से वर्षा आधारित है, मानसून का किसान भाई आगमन का प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे में बहुत से किसान भाई जिनके पास अपने सिंचाई के साधन नहीं होते हैं, वो मानसून के वजह से विलंब हो जाते हैं। तो अभी भी गुंजाइश है और हमारे किसान भाई बेहन डाल रहे हैं।
1: और सुगंधित धान के लिए तो समय ही चल रहा है।
0: हाँ, सुगंधित धान का तो समय ही चल रहा है।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ धान की नर्सरी पड़ी है, सिंचाई के सुनिश्चित साधन है, वहाँ समय से रुपाई करेंगे या मानसून के आने के साथ रुपाई करेंगे किसान भाई बहन, लेकिन जहाँ धान की सीधी बुआई करना चाहते हैं, इसके बारे में क्या तकनीकी सलाह देंगे आप?
0: जी हाँ, जैसा कि हम देख रहे हैं वर्तमान परिवेश में जो हमारा जलवायु परिवर्तन का परिवेश है, साथ ही साथ लेबर की जो शॉर्टेज कह लें, कमी कह लें, और साथ ही साथ लेबर की बढ़ती लागत, इन परिस्थितियों में हमारा जो धान का उत्पादक है किसान भाई, वो काफ़ी हैरान परेशान हो जाते हैं धान की समय। ऐसे में धान की सीधी बुआई को भी जो है वो किसानों के बीच में उसमें कुछ सुधार के साथ जो है फिर से किसानों के बीच में इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और हमारे किसान भाई बढ़ चढ़कर धान की सीधी बुआई में हिस्सा भी ले रहे हैं। जहां तक धान की सीधी बुआई की बात करें, तो लगभग 15 जून से जो है धान की सीधी बुआई हमारे किसान भाई प्रारंभ करते हैं, और इस समय धान की सीधी बिजाई का काम भी चल रहा है।
1: और ये काम कब तक, मानसून के पहले?
0: देखिए, मानसून का तो क्या है कि बीच में मौसम खुलता है, कुल मिलाकर अगर हम ये कहें तो जून के अंतिम सप्ताह तक और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक भी हमारे किसान भाई अगर धान की सीधी बिजाई करते हैं, तो उस पर उत्पादन का कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, जून की लास्ट 30 तारीख तक हमारे किसान भाई अगर धान की सीधी बिजाई कर लेते हैं, तो वो उनके लिए लाभप्रद होता है।
1: तो धान की सीधी बुआई तकनीक में क्या बारीकी है डॉक्टर साहब?
0: जी, जहाँ तक धान की सीधी बिजाई की जब हम बात करते हैं, तो उसमें एक तो नम विधि से धान की सीधी बिजाई करते हैं और दूसरा सूखी बिजाई करते हैं। दोनों में तकनीकी की जहाँ तक हम बात करें, तो जो नम विधि वाली है उसमें ड्रम सीडर नामक यंत्र की मदद से किसान भाई धान की सीधी बिजाई करते हैं, और वहीं पर जब हम सूखी बिजाई की बात करते हैं, यानी कि धान का जो हमारा खेत होता है वो हम गेहूँ की तरह छपाई करके और उसको तैयार करते हैं, और फिर पैडी सीडर यानी धान के बीज बोने वाली मशीन या मल्टी क्रॉप सीडर या सुपर सीडर की मदद से हम खेत में धान की सीधी बिजाई करते हैं, और किसान भाई इन यंत्रों की मदद से धान की सीधी बिजाई कर रहे हैं।
1: तो प्रति एकड़ कितना बीज लगेगा डॉक्टर साहब धान की सीधी बुआई में?
0: देखिए, जहाँ तक धान

0: की हम दोनों के लिए बात कर लेते हैं। धान की जब हम नर्सरी तैयार करते हैं तो उसमें जो प्रजातियां थोड़ा सा मोटे सेगमेंट की होती हैं तो उसमें लगभग 16 किलो बीज प्रति एकड़ लगता है, और वहीं पर जो हमारी महीन वाली प्रजातियां होती हैं वो 12 किलो के आसपास बीज प्रति एकड़ लगता है। जहाँ तक हम सीधी बिजाई की जब हम बात करते हैं तो सीधी बिजाई में बीज दर जो है वो बढ़ जाता है, लगभग लगभग 15 किलो बीज जो है वो एकड़ में लगता है।
1: डॉक्टर साहब, लेकिन जो संकर प्रजातियां हैं उनका बीज तो कम लगेगा।
0: जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने की कि जब हम संकर प्रजातियों की बात करते हैं तो संकर प्रजातियां 6 किलो प्रति एकड़ की दर से रोपाई विधि में जब हम नर्सरी डालते हैं तो लगता है, और सीधी बिजाई में 9 किलो का जो बीज दर है वो प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त होता है।
1: बुआई के पहले या नर्सरी डालने के पहले बीज शोधन और भूमि शोधन भी जरूरी है।
0: जी हाँ, जैसा कि हम लोग किसान भाइयों को समय समय पर बताते रहते हैं कि बीज उपचार जो है वो किसी भी फसल के उत्पादन के लिए बहुत ही आवश्यक कार्य है, इसलिए धान की अगर हम बात करते हैं तो धान में एक कंडुआ रोग हर साल किसान भाइयों को मुख्य रूप से इस बीमारी से जूझना पड़ता है, और नॉर्मली भी जो कुछ और बीमारियां हैं इनसे बचाव के लिए अगर हम अपने बीज का टीकाकरण कर देते हैं तो इससे आने वाले समय में हमारी फसलें बीमारियों से मुक्त होती हैं, और ऐसे में कार्बेंडाजिम और थीरम जो हमारी दवाएं हैं 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से अगर हम इन दवाओं का मिश्रण करके और बीज उपचार कर लेते हैं तो हमारे बीज का टीकाकरण हो जाता है और आने वाले समय में बीमारियां जो लगने की संभावना होती हैं वो क्षीण हो जाती हैं।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे धान की उन्नत कृषि तकनीक के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर रायबरेली आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 97-211-46-211, 9721-46-211, 97-211-46-211। जहाँ तक जब हम धान की खेती करते हैं तो खरपतवारों की समस्या जो है एक बड़ी समस्या होती है, और ऐसे में धान की सीधी बिजाई में सबसे पहले तो हमें 20-25 दिन तक हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, और ख़ास तौर से खरपतवार का। इसी तरीके से रोपाई वाले खेतों में भी जो है खरपतवार की समस्या होती है, इनके लिए जो भी हमें खरपतवार नाशी मिलते हैं उनका हमें समुचित प्रयोग करना चाहिए। प्री इमरजेंस के रूप में यानी कि अंकुरण से पूर्व खरपतवार नाशी का प्रयोग करना चाहिए, प्री इमरजेंस के रूप में एनिलोफास पेट्रोलाक्लोर का प्रयोग करना चाहिए, और साथ ही साथ अगर हम पोस्ट इमरजेंस की बात करें तो बिस्पायरी बैग सोडियम का प्रयोग किसान भाइयों को करना चाहिए जिससे कि आपकी फसल को खरपतवारों की वजह से उनको नुकसान न पहुंचे।
1: डॉक्टर राजेश कुमार कनौजिया साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और धान की उन्नत कृषि तकनीक क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राजेश कुमार कनौजिया से की गई भेंटवार्ता, धान की उन्नत कृषि तकनीक। भेंटकर्ता थे डॉक्टर सुशील कुमार राय, और इसी के साथ ही विज्ञान और किसान कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है, और लीजिए अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। जयप्रकाश पुत्र राम कुबरे, ग्राम घगसी, पोस्ट बिलहरा, थाना मोहम्मदपुर खाला, जनपद बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। सूचित करते हैं कि संदीप कुमार 25 मई 2026 से कहीं लापता हैं। संदीप कुमार का हुलिया इस प्रकार है। उम्र 42 वर्ष, लंबाई 170 सेंटीमीटर, रंग सांवला, चेहरा लंबा, बाल काले हैं। संदीप कुमार जिस समय घर से निकले थे इन्होंने नीली जीन्स और नीली टी शर्ट पहनी हुई थी। अगली सूचना मिली है श्रीमती मंगला पत्नी झीनक लोधी, निवासी बगहा थाना खिसरहा जनपद सिद्धार्थनगर से, कि उनकी पुत्री वंदना 10 मई 2026 से कहीं लापता है। वंदना का हुलिया इस प्रकार है। उम्र लगभग 18 वर्ष, लंबाई 5 फीट 2 इंच, रंग गेहुआ, इकहरा बदन, चेहरा गोल है। इनके मिलने की सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 9592981064 नंबर। एक बार

0: से 9592981064। इन सबके मिलने की सूचना आप इस पते पर भी दे सकते हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राज अपराध अभिलेख ब्यूरो उत्तर प्रदेश लखनऊ। इसी के साथ ही खोई हुई व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ

0: फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
4: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: श्रोता, हम आपको बता दें NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। प्रत्येक बुधवार शाम 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम हेलो किसान, प्रायोजक इफ्को। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 2:45 हुए हैं और इस समय आप सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी, जिसमें आज आप सुनेंगे श्रद्धा शुक्ला एवं मुस्कान तिवारी के युगल स्वरों में अवधी लोकगीत। आज हम इनके अवधि युगल लोकगीतों में आपको सुनवाएंगे देवी गीत, लोक भजन और चौमासा। तो सबसे पहले श्रद्धा शुक्ला एवं मुस्कान तिवारी के युगल स्वरों में सुनते हैं ये देवी गीत।

मैया सोवे भर निंदिया जगाई कैसे। अभी आपने श्रद्धा शुक्ला एवं मुस्कान तिवारी के युगल सुरों में इस देवी गीत सुना। और आइए श्रद्धा शुक्ला एवं मुस्कान तिवारी के युगल सुरों में सुनते हैं ये लोक भजन।

हनुमान मुनरिया पाया कहाँ। अभी आपने सुना ये लोक भजन श्रद्धा शुक्ला एवं मुस्कान तिवारी के युगल स्वरों में। और आइए अब श्रद्धा शुक्ला एवं मुस्कान तिवारी के युगल स्वरों में सुनते हैं ये चौमासा।

लैना गयो बेदर्दी हमका लैना गयो। अभी आपने ये चौमासा सुना श्रद्धा शुक्ला एवं मुस्कान तिवारी के युगल स्वरों में। इनके साथ संगत करता थे नाल पे अवध विहारी वर्मा, ढोलक पर दिलीप त्रिवेदी, हारमोनियम पर संतोष तिवारी, बांसुरी पर दिगंत सैकिया और साइड रिदम पर शोभनाथ चौरसिया। इसी के साथ ही आज का लोक संगीत का कार्यक्रम लोकमाधुरी अब यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय अपराह्न के 3 बजे हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है। अपनी सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय होने को है शाम के 5 और हम हाजिर हैं सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती देने संबंधी तंत्रों के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की जरूरत पर बल दिया। सभी के लिए संतुलित, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने पर केंद्रित इस सत्र में उन्होंने अफ्रीका, लातिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने संपर्क और व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 भारतीय प्रतिभाओं और विकासशील तथा अल्प विकसित देशों को एक साथ लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत की विकास गाथा के बारे में भी बताया। इसमें G7 सदस्य देश, सहभागी देश, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर सभी की नजरें हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो, फ्रांस।
1: इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत और फ्रांस ने पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एनेली हेनाम्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक प्रभावशाली वृद्धि है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजना सिग्नलिंग अवसंरचना के आधुनिकीकरण और रेलवे सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले विद्यार्थियों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया।
3: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक

0: सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
1: पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 46 ओवर में 6 विकेट पर 380 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन ने शतकीय पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है शाम के 5:05। आइए बता दें, आज प्रसारित होने वाले शेष और कल प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। शाम 5:10 पर युवा तरंग कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे प्रोफेसर अशोक कुमार कैथल से डॉक्टर NS रघुवंशी की भेंटवार्ता। विषय है छोटी बचत का बेहतर उपयोग। नई उड़ान कार्यक्रम होगा शाम 5:45 पर। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे स्वास्थ्य और पोषण जागरूकता, सही पोषण सही राष्ट्र। मृदुल विभा डाइटिशियन लारी कार्डियोलॉजी KGMU लखनऊ से नीना सोनकर की बातचीत आप इस कार्यक्रम में सुनेंगे। किसानों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान आप सुनेंगे आज शाम 6:30 पर। कार्यक्रम में आज श्रोताओं के सवालों के लिए विषय होंगे गन्ने की फसल में सामयिक प्रबंधन, समन्वित नाशी जीव प्रबंधन, कृषि रक्षा रसायनों का सुरक्षित प्रयोग। स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सत्यानंद सुशील, निदेशक भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, और आज इस कार्यक्रम की प्रस्तुति एवं संचालन डॉक्टर सुशील कुमार राय का। श्रोताओं, आज शाम 7:31 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत हेडिंगले लीड्स में भारत और नीदरलैंड के मध्य खेले जा रहे T20 क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण, और सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला आज आप सुनेंगे रात 11:10 पर। कार्यक्रम में आज विषय होगा नक्सलवाद, और ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। श्रोताओं, आइए अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों के बारे में। कल रात 11:10 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला, विषय होगा विरासत। कल प्रातः 6:05 पर कृषि चर्चा कार्यक्रम में सुनिएगा खरीफ फसलों में उन्नत खेती। श्री रामचरित मानस गान का प्रसारण होगा प्रातः 6:45 पर, और सवेरे 7 स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सुनेंगे गुणकारी इलायची के बारे में आलेख एवं वाचन नीना सोनकर के। विविधा कार्यक्रम होगा सवेरे 7:10 पर, और जिले की हलचल ये कार्यक्रम आप सुनते हैं सवेरे 9:15 पर। उर्दू कार्यक्रम सुनिएगा सवेरे 9:30 से। घर आंगन ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल दोपहर 1:15 पर। कल के कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर सरस्वती देवी तिवारी की वार्ता। विषय है बेटी को दहेज नहीं, शिक्षा और सुरक्षा करें भेंट, विज्ञान और किसान। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल दोपहर 2:30 से। कल के कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर प्रियंका सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता। विषय है खरीफ में भूमि और बीज शोधन। युवा तरंग कार्यक्रम सुनिएगा शाम 5:10 पर, और नई उड़ान कार्यक्रम आप सुनेंगे कल शाम 5:45 पर। लोकायतन कार्यक्रम में कल शाम 6:30 पर सुनिएगा भेंटवार्ता ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन। अदिति राव से ज्योति वर्मा की भेंटवार्ता आपको सुनवाएंगे, और शाम 6:50 पर खेती किसानी के कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे अगेती फूल गोभी की उन्नत कृषि तकनीक। डॉक्टर नेत्रपाल सिंह यादव से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता। खेल जगत कार्यक्रम होगा कल शाम 7:31 से, और कल रात 8 हिंदी

कार्यक्रम में सुनिएगा आत्मनिर्भर भारत खिलौना व्यवसाय, वार्ताकार अनिल कुमार सिंह। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे उस्ताद अलाउद्दीन खान का राग अलहिया बिलावल में सरोद वादन, और रात 10:30 पर सुनिएगा विदुषी कृष्णा चक्रवर्ती का राग पुरिया कल्याण में सितार वादन। कल रात 8:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की गाही गसलें। श्रोताओं, इसके अलावा समय समय पर आप लोकगीतों और फिल्म संगीत के कार्यक्रमों का आनंद भी लेते रहेंगे। श्रोताओं, ये थे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय है 5:10। इसी के साथ प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा तरंग।

नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ, खुश और उत्साह से भरपूर होंगे। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त विष्णुप्रिया और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवा तरंग। जी हां दोस्तों, युवा शक्ति किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। युवाओं के सपने, उनका उत्साह, उनकी सोच और उनका संघर्ष ही समाज और राष्ट्र को नई दिशा देता है। इसी ऊर्जा, इसी जोश और इसी सकारात्मक सोच को समर्पित है हमारा ये कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं ज्ञान, मनोरंजन, प्रेरणा और नई जानकारी का अनोखा संगम। यहाँ होंगी रोचक बातें, विचारों की चर्चा, प्रेरणादायक संदेश और बहुत कुछ जो आपके दिन को और भी बेहतर बना देगा। तो तैयार हो जाइए कुछ नया सीखने, कुछ नया सोचने और अपने सपनों को नई उड़ान देने के लिए। आइए सकारात्मकता और उत्साह के साथ शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम युवा तरंग का इस प्यारे से गीत से।

0: जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
3: दोस्तों, अब वक्त हो गया है आपको एक भेंट वार्ता सुनवाने का, जिसका विषय है छोटी बचत का बेहतर उपयोग, जिसके वार्ताकार हैं डॉक्टर अशोक कुमार कैथल और जिनसे बात करी है नगेंद्र सिंह रघुवंशी जी ने।
4: अपने जीवन यापन के साथ साथ हमारी कोशिश यह होती है कि कुछ भविष्य के लिए भी बचत की जाए और वह बचत हमारे लिए गाढ़े समय में काम आए या फिर हमारी जो विकास की प्रक्रिया है उसमें वह सहयोगी बन सके, ऐसा कुछ जनमानस में रहता है और उसी आधार पर

0: हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, रोजगार खोजना शुरू करते हैं, या फिर हम रोजगार की श्रेणियों को बांट करके देखें तो कहीं सेवा का अवसर होता है और कहीं स्वरोजगार के माध्यम से, तमाम तरीके हैं इसमें जिसका कि उपयोग करते हैं। लेकिन छोटी छोटी बचत अगर करें, आदत डालें, तो कहते हैं कि बहुत बड़ी थाती तैयार हो जाती है। ये कहाँ तक किस रूप में सही है और सही है तो कैसे इसे किया जाए, ऐसे ही कुछ तथ्यों को आज जानने की कोशिश के क्रम में हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अशोक कुमार कैथल साहब को, जो कि प्रोफेसर हैं यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में। डॉक्टर साहब, स्वागत है स्टूडियो में।
1: जी नमस्कार।
0: आपसे तो पहली बात हम यही जानना चाहेंगे कि बचत का क्या तात्पर्य है, बचत से आप क्या समझते हैं?
1: देखिए, अगर हम बचत के मूलभूत तत्व को जानने की कोशिश करें तो इससे तात्पर्य ये होगा कि एक नागरिक या एक जनमानस के पास प्राप्त होने वाली आय का एक वो हिस्सा जो ऐच्छिक तौर पे या अनिवार्य तौर पे वो उसे बचा करके रखे, ताकि उसकी आगामी जो भविष्य की अनिवार्यताएं आवश्यकताएं हैं उनकी वो आपूर्ति कर सके।
0: जी, अगर इसको और थोड़ा सा छोटे रूप में करना चाहें तो छोटी छोटी बचत का, कभी रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, गुल्लक का जो कंसेप्ट था, हम लोग छोटे रहते थे तो जेब खर्च के लिए गुल्लक में जो कुछ भी 1-2 मिलता था तो उसमें रखे रहते थे और वो कभी काम आ जाता था बढ़िया से। तो ये एक छोटी बचत का जो कॉन्सेप्ट है, क्या आज के इस ग्लोबलाइजेशन के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है?
1: एकदम सही कहा आपने रघुवंशी जी, कि इसका जो प्रासंगिकता की जब हम बात करते हैं, ये आज भी वर्तमान में आप देखें, रोज़मर्रा की चीज़ें हो या भविष्य के लिए कोई योजना आप उसको सरोकार करना चाहते हैं, तो इसका महत्व बहुत है और इससे बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आप देखेंगे कि आम जनमानस में जो प्रचलन में था, आपने जैसा जिक्र किया कि गुल्लक के माध्यम से हम बच्चों के अंदर ये तत्व निवेशित करते हैं कि वो इस तरह से उसके अंदर ये चीज आ जाए कि वो बचत करना सीख जाए और वो भविष्य के लिए कुछ चीजें रख सके। इसी तरह से आप देखें, जब हम बात करते हैं वैश्विक बाजार, जिसकी बात करी आप, वैश्वीकरण की बात करी, क्योंकि ये बाजार व्यवस्था, क्योंकि मैं अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ हूं तो मुझे लगता है कि ये वैश्विक बाजार है, तो वैश्विक स्तर पर कोई चीज़ होती है तो उसका असर हमारे यहाँ भी ज़रूर पड़ता है। तो ऐसे दौर में आप देखेंगे कि बात हो रही है कि पेट्रोल का कीमत क्यों ज़्यादा है। भाई, पेट्रोल की कीमत इसलिए ज़्यादा है कि जो हमें इसकी आपूर्ति करने वाले देश हैं वहाँ प्रति बैरल जो उत्खनन है उसकी कीमत बढ़ गई, तो यहाँ भी होगी। तो हमें उसका जीवन यापन पर असर पड़ता है। तो हम जो जिस चीज़ पर आप जोर दे रहे हैं कि ये बचत, तो बचत एक तरह से आप देखेंगे कि अभ्यास लोगों का, कि हम बचत करना सीखें। दूसरी चीज जो लेकर के आती है कि उसमें निरंतरता का प्रारूप लेकर के आती है कि आप लगातार बचत करें, जो एक संचित कोष का निर्माण करेगा, जो भविष्य में आने वाली समस्याओं को आप उससे रूबरू हो सकेंगे और उन्हें पूरा कर सकेंगे।
0: और हमारे पास जब पैसे रहते हैं तो हम तो खर्च कर डालते हैं, वैसे ही सबकी यही याद, हमका तात्पर्य यही है कि हम सभी लोग ऐसा ही करते हैं कि पॉकेट में है तो कहीं कहीं खर्च हो जाता है, या घर में रखा हुआ तो भी खर्च हो जाता है। तो कुछ ऐसी योजनाएं हो जहां हम निवेश छोटा छोटा करते चले जाएं और एक बड़ी पूंजी तैयार कर लें?
1: हाँ, ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं। अब इसको जरा सा मैं विस्तारित रूप में आपको बताना चाहूँगा कि एक जो आम नागरिक है वो स्वयं के द्वारा अपने घर में तरल के रूप में, जिसे आप लिक्विड फॉर्म में रखते हैं, नकद रूप में वो बचत कर सकता है। आपने देखा होगा गृहणियाँ आटे के डिब्बे में, चावल के डिब्बे में कुछ ना कुछ राशि छुपा के रख देती थी। अभी आपने देखा कोरोना पीरियड में वो बचत बहुत काम आई,
0: नोटबंदी में भी
1: उसी ने काम किया। और कुछ गृहणियों ने, जिन्होंने बहुत दिनों से ध्यान ही नहीं दिया, तो उनके नोट भी वो निष्क्रिय हो गए, उनका कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ। तो मैं ये कहूँगा कि ये बचत हमारे यहाँ हमेशा से घरेलू क्षेत्र में चल रही है, बहुत पहले से चल रही है। और या बीमारी आ जाए, अभी आपने देखा पेंडेमिक आ गई, तो इन सब आपदाओं से निपटने के लिए, आकस्मिक घटनाओं से को ऊपर उसके जीत हासिल करने के लिए हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम क्या करते हैं, प्रिकॉशनरी मोटिव होता है, जो जिसे आप बोलेंगे कि दूरदर्शिता है ना। तो इसमें यह होता है कि भाई भविष्य में कोई ऐसी हार्ट की बीमारी हो गई, किडनी की हो गई, या दूसरी चीजें आ गई आकस्मिक दुर्घटना,

0: हो गई तो हमारे पास भाई, हमने सेविंग कर रखी थी, हमने आरडी अकाउंट खोल रखा था, हमने फिक्स डिपॉजिट खोल रखा था, तो उसके माध्यम से हम उन समस्याओं को रूबरू कर सकते हैं और अपनी अनिवार्यताओं को, आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। वर्तमान में जो चलन योजनाएं हैं, जो स्कीमें चल रही हैं जिनका लाभ एक जनमानस के द्वारा लिया जा सकता है, मैं उनको थोड़ा सा हाईलाइट करना
1: बिल्कुल
0: चाहूंगा।
1: बिल्कुल
0: एक और चीज मैं इसमें जोड़ने की कोशिश करूंगा रघुवंश जी साहब, की बचत केवल ये नहीं है, आपके ऐसे ऐसे प्रावधान हैं कि अगर आप बचत करेंगे उन स्कीमों में, योजनाओं में, तो आपको उसका लाभ जो आयकर है उसमें भी प्राप्त होता है,
1: सही बात है।
0: एटीसी में, एटीसीडीडी में, एटीटीटी में, जो इनकम टैक्स एक्ट जो अधिनियम है 1961 का, उसके अंतर्गत ये प्रावधान है, छूट भी प्राप्त होती है।
1: हाँ, जो लोग जो
0: जी
1: श्रमिक या श्रमिक तो सभी हैं ही, जो
0: हाँ
1: कमा रहे हैं
0: हाँ
1: तो फिर टैक्स देना पड़ता है।
0: जी
1: और लेकिन जो नहीं ऐसे सैलरीड पर्सन हैं लेकिन कमा रहे हैं ज़्यादा, तो
0: जी
1: उनको भी टैक्स देना ही पड़ेगा
0: जी
1: श्रमिक के रूप में, चाहे जिस तरह से वो हों। तो ये क्या क्या आप कहना चाह रहे हैं इसमें?
0: हाँ, मैं इसमें ये जोड़ना चाह रहा था, जो इस समय वर्तमान में जो चलन में है, जिनका लाभ लोग उठा रहे हैं, और जो श्रोता हैं जो उठाना चाहें तो इनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जो आपकी पोस्ट ऑफिस स्कीम के तहत है, 2015 में ये लागू की गई थी, और ये गर्ल चाइल्ड के लिए है, यानी जो लड़की है, शिशु लड़की, उसके लिए आप इसे ले सकते हैं। इसमें अंडर सेक्शन 80C इनकम टैक्स के, उसमें आपको छूट भी प्राप्त हो जाती है, और इसी के साथ पीपीएफ का एक प्रावधान होता है, तो एक तरह से ये आप अपनी आय का एक हिस्सा आपके भविष्य के लिए कोष का निर्माण कर लेते
1: से
0: हैं।
1: जो सैलरीड पर्सन नहीं है उनके
0: जी
1: लिए भी कुछ योजनाएं, पेंशन योजनाएं
0: हाँ
1: सुनते हैं क्या
0: हाँ
1: है?
0: जो सैलरीड पर्सन नहीं है, देखिए एक चीज इसमें ये जानना जरूरी है, जब हम बात करते हैं कि संगठित
1: जी
0: क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, जब हम असंगठित क्षेत्र की जब आप बात कर रहे हैं, तो असंगठित क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पंजीकृत नहीं है जो श्रमिक वर्ग है, आपके सरकारी दफ्तरों में उसका पंजीकरण नहीं है, और वो जो आपका फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है उससे गवर्न नहीं है, तो वो चीज़ें आ जाती, जैसे आपने बात करी, जो असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को भी जो सामाजिक सुरक्षा का तत्व है उसको उपलब्ध कराने की कोशिश करता है। इसी
1: जी
0: तरह से आपने देखा होगा कि ये जो आम जनमानस के लिए है, वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आप लेते हैं,
1: एनएससी जिसे कहते हैं।
0: एनएससी जिसे कहते हैं, इसके अंतर्गत आय कर में छूट का प्रावधान भी है। इसी के साथ एक और योजना है, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट आप अपनी स्वेच्छा से खोल सकते हैं।
1: जी
0: इसी के साथ एक और योजना चल रही है जिसका लाभ लोग ले सकते हैं, उसे कहा गया है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम। इसके अंतर्गत यानी एक वर्ष के लिए आप ले सकते हैं, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 5 वर्ष तक के लिए आप इसे ले सकते हैं, और इसमें एक बार आप जो ये टाइम बाउंड है, एक अवधि, 1 साल की अवधि है, 2 साल की, 3, 5 की, और इसके अंतर्गत जो आपका जितना निवेश होगा, आप इसमें जितनी राशि डालेंगे, तो उस राशि को जो सरकार की प्राप्तियां हैं, सरकार जब अपनी संपत्ति का विनिवेश करती है, जो बेचती है, तो उसकी सिक्योरिटी के आधार पे इस पे आपको लाभांश की प्राप्ति होती है, तो बहुत अच्छी स्कीमें हैं
1: अच्छी बात
0: ये।
1: है। डन,
0: और एक और स्कीम चल रही है जिसे बोला गया है पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इसमें आप मंथली बेसिस पे, आप जिसे बोलते हैं आम चलन में आरडी हमने खोल ली,
1: जी
0: तो हम मंथली बेसिस पे आय का एक हिस्सा उसमें निवेशित करते जाते हैं, जिससे हमारा एक एक मुस्त राशि संचित होती जाती है, जो हमें समय, जितने साल के लिए हमने खोली उसकी अवधि के उपरांत, वो उसका मूलधन हमें प्राप्त होगा, उसमें ब्याज भी प्राप्त होगा।
1: ये तो है। जैसे गुल्लक में रखने की बजाय अगर
0: हाँ
1: आरडी खोल लेते हैं तो
0: जी
1: वहाँ आपको इंटरेस्ट भी मिलता
0: हाँ जी
1: जाएगा।
0: हाँ
1: लेकिन डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी भी अवस्था होती है, परिस्थिति ऐसी होती है जब बुजुर्ग हो जाते हैं
0: हाँ
1: या
0: जी
1: ऐसी उम्र हो जाती है कि वो ज़्यादा कार्य नहीं करने में सक्षम होते हैं, आय अर्जित नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा हो कि पहले से ही, के शुरू में आपने कहा ही कि अभी से करना चाहिए जो बुढ़ापे में काम आए,
0: हाँ
1: तो कुछ इसमें भी है?
0: हाँ उसके लिए एक जो स्कीम चल रही है, इसे बहुत अच्छी स्कीम है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इसे कहा गया है, और ये पोस्ट ऑफिस स्कीम है, पोस्ट ऑफिस में आप इसे खोल सकते हैं, ये वयोवृद्ध जो नागरिक हैं उनके लिए है, और इसके बेसिस पे आप देखेंगे कि इसका लॉक इन पीरियड बोला गया है, यानी 5 वर्ष न्यूनतम है,
1: अच्छा,
0: अगर आप कोई राशि आपके पास है,

0: अगर उसे वो निवेशित कर दें 5 साल के लिए, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंतर्गत उन्हें क्या होगा कि इसमें 5 वर्ष के लिए अगर वो उसे करेंगे तो उसे ब्याज का आपको प्राप्ति होती रहेगी लगातार।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये योजना सीनियर सिटीजन वाली, इसका मतलब कि 60 साल से कम उम्र में नहीं खोली जा सकती?
0: हाँ, ये केवल वयोवृद्ध नागरिकों के लिए है जो रिटायर हो चुके हैं। सीनियर सिटीजन भाई 60 साल एवं उससे ऊपर की आयु वर्ग के लोगों को माना गया है, तो उन्हीं को हम इसमें रखते हैं।
1: और कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे किसान हैं या फिर गांव में रहते हैं, वो ज़्यादा जागरूक या कहें कि उनके तक यह स्थिति नहीं रहती है, तो क्या कुछ उनके लिए भी स्कीम है जान करके वो शुरू हो सकें, आगे बढ़ सकें?
0: हाँ, इनके लिए देखिए, किसानों की जब हम बात करते हैं, मानसून आधारित उनकी आय है, क्योंकि कृषि हमारी जो है वो मानसून आधारित है भारतवर्ष में, तो उनके लिए जो योजना चलाई गई और जिसका वो लाभ ले सकते हैं किसान विकास पत्र के रूप में है, इसमें 10 वर्ष तथा 4 महीने के लिए ये कुछ राशि को, एकमुश्त राशि को ये निवेशित करेंगे और इसके आधार पे उन्हें भविष्य में आप कहेंगे कि जो राशि वो मूलधन जिन्होंने निवेश किया होगा उसका वो डबल भुगतान 10 वर्ष 4 महीने अवधि के बाद उन्हें प्राप्त हो जाएगा। और एक और इसका फायदा ये है, किसान विकास पत्र की जब हम बात करते हैं तो किसान अगर जिसके पास भी केसीसी धारक जो है वो इस पे ऋण भी उसके लिए उपलब्ध होता है, वो बैंक से ऋण ले सकता है। अगर उसके सामने कोई आकस्मिक समस्या आ जाती है, बेटी की शादी है या बच्चे की फीस जमा करनी है कॉलेज की या दूसरी चीजें हैं, उन अनिवार्यताओं की पूर्ति के लिए उसे ऋण भी उपलब्ध है, तो आप कहेंगे कि ये बहुउद्देशी कार्य योजना है जो जिसका लाभ किसानों के द्वारा लिया जा सकता।
1: अच्छा, इसको केवल किसान वही जिनके पास खेत है? हाँ, ऐसा नहीं केवल श्रमिक हैं जो, अगर खेती की में जुड़े हुए श्रमिक हैं तो वो भी इसे ले सकते हैं?
0: देखिए, किसान वही का होना अनिवार्य है। अच्छा। और या आप कृषि श्रमिक हो,
1: हाँ,
0: वो भी ले सकते हैं। तो ज्यादातर जो लोग हैं वो कृषि श्रमिक के रूप में या सीमांत किसान के रूप में कार्य कर रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो जितने ये सीमांत किसान हैं और जो बटाईदार हैं, बटाई पे खेती करते हैं, और जो कृषि श्रमिक के रूप में दूसरों को खेते में काम करते हैं, वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
1: बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब। और हमने जितनी अपेक्षा की थी कि उस क्षेत्र को कवर करेंगे, कहीं उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपने कवर किया और बताया सारी कुछ बातें जो कि छोटी बचत से संबंधित हो सकती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपने जितनी बातें कही हैं अक्षरशः इसका अनुसरण करते हुए लोग छोटी बचत को अपनाएं। और आपने समय निकाला डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, जिसका विषय था छोटी बचत का बेहतर उपयोग। आशा करते हैं आपको इससे बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो दोस्तों, आगे और भी विषय पर चर्चा करेंगे, उससे पहले सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, आज की बात में हम चर्चा करेंगे तकनीकी शिक्षा पर। तकनीकी शिक्षा वर्तमान समय की सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक आवश्यकताओं में से एक मानी जाती है। आज का युग विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का युग है, जहां केवल सामान्य या सैद्धांतिक शिक्षा से सफलता प्राप्त करना कठिन होता जा रहा है। आधुनिक समाज में व्यक्ति के पास ऐसा ज्ञान और कौशल होना आवश्यक है जो उसे बदलती परिस्थितियों के अनुसार कार्य करने योग्य बनाए। तकनीकी शिक्षा इसी आवश्यकता को पूरा करती है। ये विद्यार्थियों को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें व्यवहारिक अनुभव, तकनीकी दक्षता और कार्यक्षेत्र की वास्तविक परिस्थितियों के लिए तैयार भी करती है। तकनीकी शिक्षा का अर्थ ऐसी शिक्षा से है जिसके माध्यम से व्यक्ति को किसी विशेष क्षेत्र में कार्य करने के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि स्किल डेवलप कराना भी होता है। इस प्रकार की शिक्षा विद्यार्थियों को मशीनों, आधुनिक उपकरणों, वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा तकनीकी प्रक्रियाओं को समझने और उनका उपयोग करने की क्षमता प्रदान करती है। इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा तकनीक, कृषि तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स, वास्तुकला, ऑटोमोबाइल तथा औद्योगिक प्रशिक्षण इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। वर्तमान समय में तकनीकी शिक्षा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रोजगार का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। उद्योगों और संस्थानों को ऐसे लोगों की आवश्यकता होती जा रही है जो तकनीकी रूप से सक्षम हों और नई तकनीकों को अपनाने में भी सक्षम हों। तकनीकी शिक्षा व्यक्ति को रोजगार योग्य बनाती है और उसे आत्मनिर्भर बनने का अवसर देती है। ये शिक्षा युवाओं को केवल नौकरी प्राप्त करने तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें उद्यमिता और स्वरोजगार के

ये भी प्रेरित करती है। कई युवा तकनीकी ज्ञान के आधार पर अपने स्वयं के व्यवसाय और स्टार्टअप भी स्थापित कर रहे हैं। तकनीकी शिक्षा किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों। जिन देशों ने तकनीकी शिक्षा को महत्व दिया है वो विज्ञान, उद्योग और आर्थिक प्रगति के क्षेत्र में आगे भी बढ़ी हैं। तकनीकी रूप से प्रशिक्षित मानव संसाधन उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाते हैं, नए आविष्कारों को जन्म देते हैं और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करते हैं। भारत जैसे विकासशील देश के लिए तकनीकी शिक्षा विशेष रूप से आवश्यक है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में युवा जनसंख्या मौजूद है जिन्हें रोजगार और कौशल दोनों की ही आवश्यकता है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी विस्तार हुआ है। देश में अनेक इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI, तकनीकी विश्वविद्यालय और कौशल विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं। सरकार द्वारा भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने तकनीकी ज्ञान को अधिक सुलभ बना दिया है। अब विद्यार्थी घर बैठे भी नई तकनीकों और कौशल को सीख सकते हैं। हालांकि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, फिर भी कुछ चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। कई क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण तकनीकी संस्थान की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक संसाधनों और प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव देखा जाता है। कई बार शिक्षा संस्थानों में दिया जाने वाला ज्ञान उद्योगों की वास्तविक आवश्यकताओं से मेल नहीं खाता है। इसके अतिरिक्त व्यवहारिक प्रशिक्षण और शोध कार्यों पर पर्याप्त ध्यान ना दिए जाने के कारण विद्यार्थियों के कौशल विकास में कमी रह जाती है। तो दोस्तों आगे हम और चर्चा करेंगे, उससे पहले सुनते हैं एक गीत।

दोस्तों, आज तो हमने आपसे बहुत सारे विषयों पर चर्चा की और आपको अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास भी किया है। तो वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। तो मुझे यानी विष्णुप्रिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युवा तरंग, मीडियम वेव के मीटर पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आज शाम 6:30 पर आप सुनेंगे किसानों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। श्रोताओं के सवालों के लिए विषय होंगे गन्ने की फसल में सामयिक प्रबंधन, समन्वित नाशी जीव प्रबंधन, कृषि रक्षा रसायनों का सुरक्षित प्रयोग। स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सत्यानंद सुशील, निदेशक भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, और कार्यक्रम की प्रस्तुति एवं संचालन डॉक्टर सुशील कुमार राय का।

मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है शाम के 5:45। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नई उड़ान।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम नई उड़ान में। मैं हूं आपके दोस्त शालिनी, लेकर के आपका अपना प्रोग्राम। और ये एक ऐसा प्रोग्राम जहां हर दिन एक नई सोच, नई जानकारी और नई प्रेरणा के साथ हम और आप जुड़ते हैं। ऐसे विषय जुड़ते हैं जो हमारे जीवन, समाज और भविष्य से गहराई से जुड़े होते हैं। आज का अंक भी कुछ ऐसा ही है जहाँ ज्ञान, स्वास्थ्य और विकास तीनों का सुंदर संगम आप सुनेंगे। तो आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज के विशेष दिवस पे, जो कि है मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के विश्व दिवस की। इसके बाद फिट इंडिया श्रृंखला के अंतर्गत हम एक्सपर्ट से जानेंगे हमारी सेहत कैसे रखें हम बेहतर। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम नज़र डालेंगे विकास कार्यों, प्रशासनिक पहलों पर, ताकि हम अपडेट रह सकें और अपने आसपास के बदलावों को जानते हुए विकास की रफ्तार में खुद को भागीदारी दे सकें। तो चलिए आज के मुख्य विषय के साथ जुड़ते हैं और आज के दिवस विशेष पे करते हैं बात। दोस्तों, धरती केवल हमारे रहने की जगह नहीं है बल्कि जीवन का आधार है। ये बात तो हम सभी जानते हैं ना, लेकिन जब यही उपजाऊ भूमि धीरे धीरे अपनी क्षमता खोने लगती है, हरियाली कम होने लगती है और मिट्टी बंजर बनने लगती है, तब ये चिंता विषय का बन जाती है। और इसी चुनौती के प्रति दुनिया को जागरूक करने के लिए हर साल हम मनाते हैं मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का विश्व दिवस। इस दिवस का उद्देश्य केवल समस्या बताना नहीं है बल्कि समाधान की ओर भी हम सबका ध्यान ले जाना है, ताकि जल संरक्षण, वृक्षारोपण, टिकाऊ खेती, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग करके हम अपनी धरती को फिर से हरा भरा बनाने में मदद कर सकें। इस विषय को और अगर विस्तार से समझते हैं तो हम आगे बढ़ते हुए ये भी जानेंगे कि सामान्य नागरिक के रूप में हम कैसे क्या पहल कर सकते हैं कि हम इस बदलाव की वजह बन जाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हर बार ये विषय एक थीम लेकर आता है और इस बार की जो थीम है वो है चरागाहों को पहचानें, उनका सम्मान करें और उनका पुनर्स्थापन भी करें। चरागाह केवल पशुओं के चारे का स्रोत नहीं है। हो सकता है ये सुनने के बाद आपको लगे कि और क्या हो सकता है, तो हम ये बता दें आपको कि ये जो चरागाह है, मिट्टी को सुरक्षित रखने, जैव विविधता को बढ़ावा देने, वर्षा जल को धरती में समाहित करने, लाखों लोगों की आजीविका को सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि इनका संरक्षण नहीं किया गया तो भूमि क्षरण और सूखे की समस्या गंभीर हो सकती है। अब सवाल यह है कि हम और आप इस दिशा में क्या योगदान दे सकते हैं। तो भाई, सबसे पहले सोच समझकर पानी का प्रयोग करें, अनावश्यक जो जल की बर्बादी है उसको हम रोकने की पूरी कोशिश करें, वर्षा का जो जल है उसे संरक्षित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए जो भी प्रयास हम कर सकते हैं वो जरूर करें।

अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, उनकी देखभाल करें। केवल पौधा लगाना ही नहीं बल्कि उसे बड़ा करके उतना सुरक्षित करना भी बहुत जरूरी है। तीसरा, मिट्टी और हरियाली को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों से बचें। खुले स्थानों पर कचरा फेंकने, अनियमित कटाई या प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग को हतोत्साहित बिल्कुल भी नहीं करें। यदि आप किसान हैं, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं, तो जल संरक्षण, फसल चक्र, जैविक खेती और मिट्टी संरक्षण जैसी टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना भविष्य के लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। तो ये छोटे छोटे प्रयास हम और आप कर सकते हैं। फिलहाल आज मरुस्थल पर हम बात कर रहे हैं, तो जब मरुस्थल की बात होती है तो मुझे याद आता है एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत जो रेगिस्तान की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म का ही है, और उस गीत का आनंद लेते हैं, महसूस करते हैं उस एहसास को भी कि मरुस्थल में जो सूखा है वो कैसी पीड़ा देता है और कैसे एहसास से जोड़ता है। फिलहाल आज रेगिस्तान में भी बारिश होने लगी है, ऐसी तब्दीलियां हो रही। आनंद लीजिए इस गीत का और महसूस कीजिए इन दोनों चीज़ों को।

उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग

0: कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, मिट्टी के पोषण को बरकरार रखने की हम सभी लोग बात करते रहते हैं और आज भी हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन मिट्टी के पोषण की बात करना क्यों ज़रूरी हो जाता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि उसी मिट्टी से हमारा पोषण भी निर्धारित होता है। हमारा पोषण यानी हम जो भी खाते पीते हैं, जो औषधियाँ हमको मिलती हैं या हमारे आसपास जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इसी मिट्टी से मिलती हैं। मिट्टी उपजाऊ है तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो अन्न है, जो औषधि है, उसकी गुणवत्ता भी बरकरार रहेगी। उसकी उत्तम गुणवत्ता हमारे लिए बहुत लाभकारी हो सकती है। फिलहाल बात सेहत की हो रही है, अब तो सेहत की बात में हम आपको ले चलते हैं और आज की हमारी थीम है, हमारी श्रृंखला है फिट इंडिया, और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम आज आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जुड़ते हैं हमारी आज की एक्सपर्ट मृदुल विभा जी के साथ में, जो कि डाइटिशियन हैं और उनसे बातचीत कर रही हैं नीना सोनकर जी। विषय है स्वास्थ्य और पोषण जागरूकता, सही पोषण स्वस्थ राष्ट्र। तो चलिए
4: श्रोताओं, आज आकाशवाणी लखनऊ के स्टूडियोज में हमने आमंत्रित किया है किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ की लारी कार्डियोलॉजी की डाइटिशियन मृदुल विभा जी को, और आज हमारी जो चर्चा है उसका विषय है सही पोषण स्वस्थ राष्ट्र, यानी कि फिट इंडिया। यानी इंडिया तभी फिट होगा जब हमारा स्वास्थ्य और पोषण सही होगा, और इसके बारे में हमें अच्छी तरह से जब जागरूकता होगी तभी हमारा देश फिट हो पाएगा। कहा जाता है श्रोताओं की संतुलित आहार और सही पोषण से बीमारियों का खतरा कम रहता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, साथ ही शारीरिक और मानसिक विकास सही तरीके से होता है। तो पोषण में वो ताकत होती है जो हम आप रोजमर्रा की जिंदगी में चलते हैं, ऊर्जावान रहते हैं, तो वो होता है पोषण। लेकिन क्या वाकई वो पोषण होता है या हम कुछ उस पोषण में मिस कर रहे हैं, आज सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे कि मृदुल विभा जी क्या क्या बताएंगी पोषण के बारे में। मृदुल विभा जी, आकाशवाणी के स्टूडियोज में मैं नीना सोनकर स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप ये बताइए, एक जब भारतीय थाली की बात आती है तो हम उस थाली में क्या क्या सजाएंगे, एक पोषण युक्त थाली हम किसे कहेंगे?
5: देखिए, पोषण का मतलब होता है संतुलित आहार, और अगर आप थाली की बात करेंगे तो वो थाली जिसमें सारे पोषक तत्व मौजूद हों, जिसमें कार्बोहाइड्रेट यानी कि अनाज और मोटे अनाज, दालें, फलियां, दूध या दूध से बनी हुई चीजें, हरी पत्तेदार सब्जियां या मौसमी फल, और मेवे और बीज भी, क्योंकि क्या है कि आजकल सारी चीजों में कुछ चीजें रह जाती हैं, लेकिन संतुलित आहार से ही आपको एक सही पोषण मिल सकता है। तो आपकी डाइट में वो सारी चीजें होने चाहिए जो आपको पोषक तत्व प्रदान करें।
4: जी मृदुल विभा जी, ये कहा जाता है कि सही पोषण स्वस्थ राष्ट्र ये भारत सरकार की ओर से एक अथक प्रयास किया जा रहा है, एक जन आंदोलन की तरह इसे लिया जा रहा है कि हर इंसान फिट रहना चाहिए यानी स्वस्थ रहना चाहिए। तो जो स्वास्थ्य की डोर है वो दरअसल उसका बीज कहाँ से शुरू होगा?
5: देखिए, किसी भी देश की प्रगति उसके नागरिकों के स्वास्थ्य पर निर्भर रहती है। अगर नागरिक स्वस्थ होंगे तो वे शिक्षा, रोजगार, विज्ञान, खेल और राष्ट्र के निर्माण में अपना सर्वोत्तम योगदान दे सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले खुद का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। उसके लिए कुछ चीजें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपकी लाइफ स्टाइल, आप मतलब दिनचर्या कैसी है, इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना होगा। और सरकार बहुत सारे प्रोग्राम्स इस तरह के चला रही है जिसमें वो आपको जागरूक कर रही है कि किस तरह आप अपने आप को स्वस्थ रखें। और इसके लिए सबसे पहले मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि जब किसी को कोई बीमारी हो जाती है और उसके बाद मेडिसिन के साथ ही वो डाइट भी सुधारता है, कोशिश करें कि बीमारी होने से पहले ही अपनी डाइट को सुधारें, क्योंकि जो हमारी सरकार है उसका मेन मोटिव यही है कि सारे जो नागरिक हैं वो स्वस्थ रहें। और इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, पोषण के लिए पोषण अभियान चलाया गया है, पोषण

0: पखवाड़ा चलाया गया है उसमें बहुत सारी थीम्स आती हैं, जानकारी दी जाती है, जैसे गर्भवती महिलाओं को किस तरह का भोजन लेना चाहिए, या जिस तरह हमारे यहाँ इंडिया में लड़कियां, मोस्टली लड़कियां एनीमिक रहती हैं, तो उनको किस तरह का भोजन लेना चाहिए, उनकी थाली में आयरन युक्त चीजें होनी चाहिए, तो ये सारी चीजों के बारे में जानकारी देते हैं। मैं कहूंगी सभी नागरिकों को ध्यान देना चाहिए आहार के बारे में अगर कोई जानकारी दी जा रही है, तो अगर इस तरह की चीजों पर ध्यान देंगे काफी हद तक हम अपना स्वास्थ्य सुधार सकते हैं।
1: जी, आपने किशोर वय बच्चियों की बात की और आपने ये भी कहा कि वो एनेमिक रहती हैं, क्योंकि आप चूंकि इतने बड़े अस्पताल में कार्यरत हैं, तो ये बताइए कि जब हम मातृ और शिशु स्वास्थ्य की बात करते हैं, और ऐसा कहा भी जाता है कि गर्भावस्था के पहले 1000 दिनों के दौरान महिलाओं को आयरन और कैल्शियम की पर्याप्त खुराक लेनी चाहिए, क्योंकि यहीं से वो बीज जिसकी मैं बात कर रही थी कि जिससे पोषण प्राप्त होता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगी?
0: देखिए, विशेष रूप से गर्भवती जो महिलाएं होती हैं या स्तनपान कराने वाली माताएं, बच्चों और किशोरियों को उचित पोषण की आवश्यकता होती है। तो जो जीवन के शुरुआती 1000 दिन है, अर्थात गर्भधारण से लेकर बच्चे की 2 वर्ष की आयु तक का समय, जिसमें उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उस टाइम की जो आहार है वो बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके आहार में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल, आयरन, ये सारी चीजों का समावेश होना चाहिए। उनकी जो थाली है उसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का मतलब है कि दालें, या फिर जो लोग नॉनवेज लेते हैं वो नॉनवेज ले सकते हैं, जो मौसमी फल और सब्जियां हैं वो जरूर शामिल करें, आजकल ड्राई फ्रूट्स लेते हैं उसको भी भिगो के ले सकते हैं, आयरन की मात्रा जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली आप देखते होंगे कि ये कंप्लेन आती है कि वो एनीमिक है, तो किस तरह आयरन लेना चाहिए, क्या होता है कई बार लोग टैबलेट ले लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उसके कॉम्बिनेशन में उनको क्या लेना है, जैसे कि जब आयरन लेंगे तो विटामिन सी लेना है, साथ में B12 लेना है, तो अगर सही जानकारी होगी तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे और आप अगर एनीमिक है तो उससे बच पाएंगे।
1: जी, आपने अभी ये बातें बताई कि भोजन के जो पोषक तत्व हैं वो विटामिन्स हैं, प्रोटीन है जिससे हमारी हड्डियों का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट की आपने बात की, वसा, खनिज और सूक्ष्म पोषक तत्वों की बातें आपने बताई, और ये भी बताया कि हमें फल शाक का सेवन तो करना ही है, अगर कोई मांसाहारी है तो वो उसका भी सेवन कर सकता है। अब ये बताइए कि जब आप रोजाना के खाने की बात करती हैं तो थाली में क्या क्या होना चाहिए?
0: सबसे पहले जब आप दिन की शुरुआत करते हैं तो जो सबसे पहला मील होता है वो ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए, प्रोटीन युक्त होना चाहिए, तो मैं तो ये कहूंगी कि अगर कोशिश करिए कि उसमें प्रोटीन के लिए आप पनीर, जो शाकाहारी लोग हैं वो पनीर है, सत्तू है, दालों से बनी हुई चीजें ले सकते हैं, और जो लोग नॉनवेज लेते हैं वो अंडे का सेवन कर सकते हैं
1: जी,
0: तो उनको प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। और ब्रेकफास्ट अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपका दिन का पहला मील है। उसके बाद जो आपकी लंच की थाली है उसमें कोशिश करिए कि आपकी थाली में सब कुछ हो, रोटी, सीजनल सब्जियां हैं, दालें हैं, अगर दही है, दही बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है, और कुछ लोगों के अंदर ये मिथ होता है कि जाड़े में दही नहीं खा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सलाद होना चाहिए, 1/4 तो आपका सलाद होना ही चाहिए, जिससे आपको फाइबर मिलेगा और आपको बहुत सारी बीमारियों से निजात मिलेगा। संपूर्ण थाली वही होगी जिसमें सारे पोषक तत्व हों।
1: मृदुल विभाजी, आपके कहने का ये मतलब है कि दाल, चावल, सब्जी, रोटी और इसके साथ आपने फल की भी बात की और अंकुरित अनाज भी हम ले सकते हैं इसके साथ, और ये बात भी बताना चाहूंगी अपने श्रोताओं को कि इस समय उन बातों पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि आपके क्षेत्र में जो भी जलवायु है या आपके क्षेत्र में जो लोकल चीजें मिलती हैं, खाद्य पदार्थ, चाहे वो सब्जी हो, फल हो और भी खाद्य पदार्थ, उनका सेवन आप जरूर करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि हर इंसान चाहता है कि कुछ ऐसी चीजों का सेवन करे तो ज्यादा स्वस्थ रहेगा। मान लीजिए कहीं से एक्सपोर्ट होकर कोई फल आता है, स्टिकर लगा है, चमचमाता हुआ सा है, तो आप क्या बताना चाहेंगी कि जो लोकल मिलने वाली चीजें हैं उन्हीं के प्रति हमें वोकल होना है?
0: हाँ, देखिए ये बात बहुत ध्यान रखना है कि लोकल एंड सीजनल खाने ही खाइए। आप जिस जगह रह रहे हैं उसके आसपास जो भी चीजें हो रही हैं, चाहे वो फल या सब्जियां हैं, सबसे पहली बात है कि वो आपको फ्रेश मिलेंगी, और जो बाहर से चीजें आ रही हैं उनके बारे में आपको जानकारी नहीं है कि वो कब लाई गई हैं, कैसे हैं। और सरकार की भी ये योजनाएं चल रही हैं कि लोकल एंड सीजनल फलों को ज्यादा प्रमोट किया जाए,

0: मैं तो यही कहूंगी कि सबसे अच्छा है एक तो मोटा अनाज जरूर शामिल करें अपनी डाइट में
1: जी,
0: और लोकल एंड सीजनल चीजों को अपने खाने में प्रयोग करें।
1: जी, आपने ये बताया कि जो सहज भाव से या स्थानीय जो हमें चीजें मिलती हैं खाद्य पदार्थ, चाहे वो फल हो, शाक हो, सब्जी हो, वो हमें इस्तेमाल करनी है, क्योंकि नेचर जिस हिसाब से जहाँ पर भी जैसा भी होता है उसको हमें प्राथमिकता देनी है। अब ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम अक्सर हेल्दी ईटिंग की बात करते हैं, तो ये जो स्वस्थ भोजन की एक जो प्राथमिकता है ये क्या होती है?
0: देखिए, हेल्दी ईटिंग की अगर बात आप करते हैं तो हेल्दी ईटिंग के साथ साथ आपको हेल्दी लाइफस्टाइल भी अपनाना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, सारे पोषक तत्व भी मौजूद हैं, लेकिन अगर आपकी टाइमिंग सही नहीं है तो वो भी स्वास्थ्य पे असर डालेगा। क्योंकि क्या होता है कि अक्सर आप देखिए जो यंग जनरेशन है वो रात में 11-12 बजे खाना खा रहा है
1: जी,
0: वो कितना भी अच्छा खाना खा लें लेकिन उसका उनको उतना फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि इसके साथ साथ आपको टाइमिंग भी देखनी पड़ेगी। स्क्रीन टाइम बढ़ गया है लोगों का, रात में लेट नाइट खाने का, जंक फूड का प्रचलन बहुत ज्यादा हो रहा है। हेल्दी ईटिंग करिए, सही टाइम पे करिए, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को छोड़ना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे।
1: जी मृदुल विभा जी, भोजन के साथ साथ हम पानी की भी बात करेंगे, क्योंकि पानी की भूमिका बहुत अहम है, जो हमारे भोजन को पचाता है, शरीर को चलाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि भोजन एक बार ना भी मिले या देर से मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन पानी जरूर मिलना चाहिए। तो पानी के बारे में आप क्या कहेंगी?
0: बिल्कुल, जिस तरह लोग पानी को बहुत कम पीते हैं या फिर कहते हैं कि भूल गए या फिर टाइम नहीं मिला, इससे आप अगर पानी आप सही मात्रा में ले रहे हैं तो आपका खाना भी सही से डाइजेस्ट होगा और आप डिहाइड्रेशन से भी बचे रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि लिक्विड में आ गया कि पानी ही पीना, ऐसा नहीं है। लिक्विड डाइट में या आप लिक्विड लेना चाहते हैं तो पानी तो लेना ही है आपको, लेकिन पानी के साथ और भी तरल पदार्थ हैं जैसे कि मट्ठा है या फिर कोई जूसेस हैं, इस तरह की चीजें भी आप डेली लाइफ में ले सकते हैं। क्योंकि जिस तरह आजकल गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से आपको अपने शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाना है। अपनी बोतल साथ में लेके चलें, दिन भर में 7-8 ग्लास पानी पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप पानी पिएंगे तभी खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा।
1: जी, आपने थोड़ी देर पहले पोषण अभियान की बात की, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य है और लक्ष्य है बच्चों और महिलाओं में कुपोषण और एनीमिया को कम करना। लेकिन कैसे हमें मालूम हो पोषण के बारे में? तो स्कूल के स्तर पर जो प्राथमिक विद्यालय जाते हैं बच्चे, वहाँ पर किस तरह से उन्हें शिक्षित किया जा सकता है?
0: देखिए, हम लोग आहार विशेषज्ञ हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो पोषण जागरूकता प्रोग्राम है रेडियो के माध्यम से या कहीं कैंप लगा के या स्कूलों में, अब तो सरकार भी योजना बना रही है कि स्कूलों में भी पोषण से संबंधित जानकारी दी जाए, तो मैं सबसे पहले यही कहूंगी कि जो भी इससे रिलेटेड लोग हैं, आहार विशेषज्ञ हैं या मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, वो जगह जगह जाकर कैंप लगा सकते हैं। हम अपनी सोसाइटी में लोगों को अवेयर कर सकते हैं पोषण के बारे में बता के, और यहाँ हमारा रोल एक बहुत बड़ा हो जाता है, आहार विशेषज्ञ या डाइटिशियंस बोलिए, कि आप अगर चाहें तो जरूरी नहीं है कि आप बीमारी के बाद ही डाइटिशियन से मिलें, आप अपनी स्वस्थ लाइफ स्टाइल अपनाने के लिए भी डाइटिशियन से मिल सकते हैं। और जो टाइम टाइम पर जो सरकार द्वारा जो चीजें प्लान की गई हैं, जैसे सितंबर में न्यूट्रिशन मंथ आता है, उसके बाद पोषण पखवाड़ा आता है, तो उसमें बहुत सारे सरकार की तरफ से प्लानिंग होती है, थीम दी जाती है कि हम कैसे सोसाइटी को अवेयर करें, पोषण के बारे में जानकारी दें, तो पूरे साल कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम हम लोग प्लान करते रहते हैं।
1: मृदुल विभा जी, पोषण की बातों में अगर हम उन बातों का जिक्र ना करें तो लगेगा कि हमारी आपसे बातचीत अधूरी है। मसलन शक्कर, जिसे हम चीनी कहते हैं, नमक और चावल, इनके बारे में आप क्या कहेंगी? और इसके साथ साथ वसा चिकनाई की भी बातें हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि पोषण में ये सब भी आता है।
0: देखिए, अगर शक्कर की बात करेंगे तो मैं कहूंगी कि शक्कर को जितना कम से कम इस्तेमाल करें तो स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता है चीजों में हिडन शक्कर, हिडन सॉल्ट। आप पैकेट फूड खा रहे हैं, आपको लगता है कि आपने चाय में ही चीनी डाल के पी है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप पैकेट फूड खा रहे हैं तो उसमें भी चीनी और नमक बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं रहता है। दूसरी बात है चावल, चावल को लेके बहुत मिथ है, चावल बिल्कुल खाया जा सकता है और चावल कभी नुकसान नहीं करेगा अगर उसको आप हेल्दी वे में खाएंगे, क्योंकि चावल और रोटी दोनों ही कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। चावल को जब भी खाएं, दाल के साथ खाएं या उसको एक खूब सारी सब्जियां मिला के अगर बनाते हैं तो चावल नुकसान नहीं करता है। और सारी चीजें हैं जैसे कि नमक वगैरह है,

0: जी
1: ये तो कहा भी गया है सरकार की तरफ से कि थोड़ा कम नमक और चीनी, थोड़ा सा कम। आप वसा की बात अगर कर रही हैं तो अच्छा फैट डेली लेना जरूरी है। अगर आप एक ही तेल में चीजें तल रहे हैं, बार बार उसी में तल रहे हैं, तो जरूर वो आपको नुकसान करेगा। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल ही खाने में तेल नहीं इस्तेमाल करता हूं, तो ये भी गलत है। क्योंकि क्या है, सरसों का तेल, यूपी वाले स्पेशली सरसों का तेल और आधा टीस्पून देसी घी डेली यूज कर सकते हैं।
0: मृदुल विभा जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन अब कुछ फोकस उन बातों पर भी जिन्हें हम कहते हैं मोटा अनाज, यानी जो हमारे पूर्वज खाया करते थे और एक लंबी उम्र जीते थे। तो उन मोटे अनाजों में आप किन किन अनाजों का जिक्र करना चाहेंगी और किस तरह से एक आम आदमी उसे नाश्ते या भोजन के बतौर ले सकता है?
1: देखिए, मोटा अनाज मतलब मिलेट्स, अभी 2 साल पहले उसको लेके पूरा मिलेट वर्ष भी मनाया गया। मोटा अनाज मतलब ज्वार, बाजरा, रागी, इस तरीके के जो अनाज होते हैं मोटे अनाज में आते हैं।
0: जी
1: तो इनको डेली लाइफ में आप किसी एक मील में, अगर हो सके तो ब्रेकफास्ट में ज़रूर यूज़ करिए और सही मात्रा में यूज़ करिए। जैसे कि बाजरा है, बाजरे का दलिया भी बनता है, बाजरे की रोटी भी बनती है, और रागी जो कैल्शियम से भरपूर है, तो अगर उसका भी चाहें तो रागी के लड्डू भी बनते हैं, रागी का दलिया भी बनता है। लेकिन उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में मत लें, क्योंकि क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, वो सुबह शाम दोपहर अगर मिलेट्स ले रहे हैं तो कई बार उनको डाइजेस्ट नहीं होता है। तो शुरुआत जब आप करें तो एक मील से ही मोटे अनाज की शुरुआत करें, और जब भी मोटा अनाज खाएं कोशिश करें उसके साथ घी जरूर यूज करें।
0: मृदुल विभा जी, आपने बहुत सारी बातें बताई और आपने ये भी बताया कि जंक फूड से हमें दूर रहना है, प्रोसेस्ड खाने को नहीं खाना है क्योंकि इसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है, प्रिजर्वेटिव्स भी ज्यादा मिलाए जाते हैं कि उनकी जो एक लाइफ है वो लंबी हो। और आपने ये भी बताया कि नमक, शक्कर, हर चीज को कम लेना है, एक अनुपात है। जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनका हाई रहता है, उनके लिए नमक तो कहा जाता है कि जितना डॉक्टर सलाह दे उतना ही खाएं। शक्कर के बारे में भी आजकल लोग बहुत अवेयर हो गए हैं, आपने शक्कर की भी बात की और आपने पैक्ड फूड्स के साथ साथ आपने जूसेस और इन सब चीजों के बारे में भी आप कहना ही चाहेंगी कि डिब्बा बंद जो जूसेस होते हैं उनका भी कम से कम प्रयोग करें। अगर किसी को भी खाना है तो फल ताजे आप खा सकते हैं, और मौसमी फलों की और मौसमी सब्जियों की हमने बातों से अपनी बातचीत को शुरू किया था। पूरी उम्मीद है कि आपको आज की बातचीत श्रोताओं पसंद आई होगी, क्योंकि जब देश का हर नागरिक स्वस्थ और सुपोषित होगा तभी एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण संभव है। मृदुल विभा जी, आप प्रोग्राम में आई, आपने बहुत अच्छी बातें सही पोषण के बारे में बताई और आपने अपना कीमती समय आकाशवाणी को दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
2: दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली आपकी सेहत से जुड़ी हुई, जो कि मृदुल विभा जी दे रही थी और बात कर रही थी नीना सोनकर जी। उम्मीद करते हैं कि सेहत का रखेंगे ख्याल, लेकिन सेहत के साथ साथ अब हम ये भी ख्याल रखें कि हम विकास की रफ्तार में आगे कैसे बढ़ें। और इस बात का ख्याल रखते हुए हम आपके लिए हर बार की तरह लेकर आए हैं आज भी कुछ खास खबरें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। प्रदेश सरकार नोएडा के साथ साथ लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज जैसे Tier 2 शहरों में भी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। इससे IT, फाइनेंस, इंजीनियरिंग और बिजनेस सर्विसेज में युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई उड़ान सेवाओं का विस्तार शुरू हो गया है। इससे पर्यटन, लॉजिस्टिक, होटल, एविएशन और सेवा क्षेत्र में रोजगार और निवेश को बढ़ावा मिलने की पूरी संभावना है। और उत्तर प्रदेश फिर बन गया है बागवानी उत्पाद में अग्रणी राज्य। ताजा कृषि आकलन के अनुसार उत्तर प्रदेश ने आलू, आम और मटर के उत्पादन में देश में अग्रणी स्थान बनाया रखा हुआ है। इससे कृषि आधारित उद्योगों, खाद्य प्रसंस्करण और निर्यात क्षेत्र में नए अवसर खुल सकते हैं। यूपी पुलिस भर्ती पर बड़ा अपडेट है कि राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और मेरिट आधारित बताते हुए युवाओं से भर्ती से जुड़ी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने की अपील की है। भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए ये महत्वपूर्ण संदेश है। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद अब काउंसलिंग प्रक्रिया की तैयारी चल रही है। शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। उत्तर प्रदेश सेवायोजन पोर्टल और रोजगार मेलों के माध्यम से विभिन्न निजी और आउटसोर्स पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

युवा अपनी योग्यता के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। कौशल विकास पर विशेष फोकस है और राज्य में उद्योगों की ज़रूरतों के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। डिजिटल तकनीकी, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र से जुड़े प्रशिक्षण युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और इसी के साथ आपके रफ्तार बढ़ने की पूरी तैयारी जोरों पर है। बस ज़रूरत है आपके अपने आप तैयार होने की और उत्साह के साथ अपनी उड़ान भरने की। तो ये थी आज की जानकारी और इस जानकारी के साथ मैं शालिनी ले रही हूँ आप सभी से इजाज़त। फिर मुलाकात होती है अगले कार्यक्रम में किसी और दिन इसी वक्त में। तब तक के लिए नमस्कार।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में कुछ सूचनाएं सुनिए। थाना गोमती नगर जनपद लखनऊ से पवन कुमार ने सूचित किया है कि राखी, जिनकी उम्र 21 वर्ष है, दिनांक 2 नवंबर 2025 से लापता हैं। राखी का रंग गेहुआ, चेहरा गोल और शरीर की बनावट सामान्य, ऊंचाई लगभग 5.5 फीट है। जिस किसी को भी राखी के बारे में कोई सूचना मिले तो कृपया इस पते पर सूचित करें। थाना प्रभारी निरीक्षक, थाना गोमती नगर लखनऊ। थाना जानकीपुरम जनपद लखनऊ से श्रीकांत मिश्रा ने सूचित किया है कि सुनील कुमार, जिनकी उम्र 31 वर्ष है, दिनांक 21 मई 2026 से लापता हैं। सुनील का रंग सांवला, चेहरा गोल, शरीर की बनावट इकहरी और ऊंचाई लगभग 5.5 फीट है। गुमशुदगी के समय इन्होंने काली टी शर्ट और काला लोअर पहना हुआ था। जिस किसी को भी सुनील के बारे में कोई सूचना मिले तो कृपया इस पते पर सूचित करें। प्रभारी निरीक्षक, थाना जानकीपुरम जनपद लखनऊ। थाना हजरतगंज जनपद लखनऊ से शिवेंद्र शुक्ला ने सूचित किया है कि शिखा शुक्ला, जिनकी उम्र 36 वर्ष है, दिनांक 18 मई 2026 से लापता हैं। शिखा का रंग गोरा, चेहरा गोल और ऊंचाई 5 फीट 3 इंच है। गुमशुदगी के समय इन्होंने सफ़ेद रंग की टी शर्ट और ग्रे रंग की जीन्स पैंट पहनी हुई थी। जिस किसी को भी शिका के बारे में कोई सूचना मिले तो कृपया इस पते पर सूचित करें। प्रभारी निरीक्षक, थाना हजरतगंज जनपद लखनऊ। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं अब समाप्त हुईं।

0: विज्ञान जगत के साथ जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
1: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: श्रोताओं, अब कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आज शाम 6:30 पर आप सुनेंगे किसानों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। आज के कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों के लिए विषय होगा गन्ने की फसल में सामयिक प्रबंधन, समन्वित नाशी जीव प्रबंधन, कृषि रक्षा रसायनों का सुरक्षित प्रयोग। स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सत्यानंद सुशील, निदेशक भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, और आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तुति एवं संचालन डॉक्टर सुशील कुमार राय का।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: येन सह मेलनं करिष्यति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः भारतस्य सार्वभौमता निर्विवाद्यमिति कथयन् आतंकवादं विरुध्य सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट ऑपरेशन सिंदूर इत्येतानि च निर्णायकानि कार्याणि इति उदघोषयत्। भारतस्य रक्षोत्पादनं निवर्तमान वित्तीयवर्षे 10.78 लक्षं कोटिरूप्यकाणि अभिलेख्यं यावत् वर्धितम् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है 6:30 और इसी के साथ आज प्रस्तुत है किसानों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान।

0: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
1: इफको नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली।
2: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
3: पंचो जय हिंद।
4: हिमांशु भैया।
3: हाँ रियाज भैया।
4: देखो, जब बात आवत है अपनी खेती पाती के,
3: हाँ,
4: तो कहा जाता है कि जो है अच्छा किसान वही है कि वह का अपने योजना के बारे में पहले से मालूम रहे।
3: बिल्कुल रियाज भैया, सही बात कहो। देखो, जून का महीना चले लाग है और आसमान में यहाँ बादलन के आवाजाही भी शुरू हो चुकी है। अब खेतन में यहाँ बहुत सारे जगह हल भी चले लाग है और किसानन के मन में यहाँ एक नई उम्मीद है कि खरीफ फसल में यहाँ का बवें और वह की बढ़िया तैयारी कैसे करें।
4: बिल्कुल, कहे जे कि बहुत सारे किसान भाई बहन ऐसे भी हैं कि जो अपन फसल एक खड़ी रहा था और दूसरे की योजना पहले से बनावे लगा थी कि भैया हमें कौन फसल बोवे का है, वो के पहले कौन तैयारी करे का है, बीज कहाँ से हमें चयनित करे का है और खाद पानी कौन कौन डरा जाए, विशेषज्ञ भैया से बातचीत करके पहले से रखा थी। तो यही हमारे कहा जाता है कि समझदार किसान वही है कि जौन योजना और तैयारी पहले से बनाए के रखे। इसलिए ये जरूरी है कि जौन फसल बोवे का है वह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जौन विशेषज्ञ भैया बतावा करती वह के बारे में जाना समझा जाए पहले से।
3: बिल्कुल सही बात कहो रियाज भैया। इसके लिए कहावत नहीं कही गई है कि अच्छी फसल ख्यात में यहाँ नहीं बल्कि किसान करे योजना से पैदा होते हैं।
4: बिल्कुल भैया, यही हमारे अब देखो कुछ किसान भाई बहन जो पहले से रहे हैं उनका मालूम रहा तो जौन उनका खेत खाली भर रहा तो हम पहले से बढ़िया गर्मी में जुताई करवाए के ओका छोड़ दे रहे हैं। और उसके बाद में जितना वहाँ किरवा पतंगा या खर पतवार रहे सब वहाँ नष्ट हो गए। अब जब अपने धान के फसल जो कोनो भी फसल बोई है तो वहाँ जो चाहे किरवा पतंगा की बात की जाए चाहे खर पतवार की बात की जाए प्रकोप बहुत कम हो जाए वहाँ।
3: बिल्कुल भैया सही बात कहो, लेकिन कई बार किसान बिना सोचे समझे जो है बार बार वह फसल बह देते हैं। लेकिन समझदारी अहिमा नहीं है भैया, समझदारी अहिमा है कि अपनी खेत की माटी देख ले कैसी है, पानी के उपलब्धता है कि नहीं है, या बाजार में है कौन फसल की मांग है और कोशिश करे भैया साल में है एक बार दलहनी फसल जरूर शामिल करें।
4: बिल्कुल दलहनी फसल शामिल करो। दूसरी चीज ये है कि कोनो फिर अगर खेत में हम फसल बोए हैं तो बार बार एक फसल जो है वो खेत में न बोई जाए। और दूसरी चीज है फसल चक्र के कीन जाए और जो विविधता कहा जाता है ना, जैसे मान लीजिए अपने पास में ज्यादा खेत है तो कुछ में कुछ फसल बो दी जाए कुछ में कुछ फसल बो दी जाए।
3: बिल्कुल,
4: इससे क्या हुआ था कि अगर कोनो फसल एक अपन खराब हो गई कम से कम जो दूसरी की फसल है वो के जैसे उसे भरपाई हो जाता है।
3: बिल्कुल सही बात कहो भैया। और भैया आज है बुधवार और अपने स्टूडियो में यह विशेषज्ञ भैया आ चुके हैं। जो आज के विशेषज्ञ हैं वे है डॉक्टर सत्यानंद सुशील, निदेशक हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के।
4: और जो आज के विषय है उसका बताए दीजिए अपने पंचन का।

0: वहीं से विषय से संबंधित सवाल पूछी हैं। विषय है गन्ने की फसल में सामयिक प्रबंधन, गन्ने की फसल में कीट रोग प्रबंधन और समन्वित नाशी जीव प्रबंधन, और इसके अलावा एक विषय और है कृषि रक्षा रसायनों का सुरक्षित प्रयोग। इस
1: बिल्कुल
0: विषय पर जो है जानकारी लेने के लिए अपने किसान भाई बहन सीधे फोन लगावें और डॉक्टर साहब से बात करके अपन जो समस्या है उसके समाधान प्राप्त करें।
1: बिल्कुल भैया, वो कार्यक्रम के और जो संचालन कर रहे हैं वो है डॉक्टर सुशील कुमार राय। तो भैया जो जादुई नंबर है अपन वो बता दो अपने
0: हाँ,
1: किसान
0: आज
1: भाई।
0: के वही फ़ोन नंबर पुराना वाला है 0522 2238 825, यानी कि 0522 2238 825। तो अब हमारे ख्याल से अब देर न की जाए, सीधे चला जाए डॉक्टर साहब के पास में। कहे से अपने किसान भाई बहन भी फ़ोन लेके इंतजार कर रहे हैं कि कैसे सीधे बात हो, अपने शंका के अपने समस्या के समाधान हुए, तो सीधे चला जाए डॉक्टर साहब के पास
1: बिल्कुल
0: में।
1: भैया,
2: धन्यवाद हिमांशु रियाज भैया। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, हर बुधवार की तरह एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। किसान भाइयों बहनों, डॉक्टर सत्यानंद सुशील साहब जो निदेशक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से, डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में आपका।
3: धन्यवाद धन्यवाद।
2: आज आज आप विशेषज्ञ हैं और किसान भाइयों बहनों के लगातार सवाल होंगे, चाहे वो मिठास की फसल से जुड़े सामयिक प्रबंधन क्या करें, जो हानिकारक कीट हैं बीमारियां हैं उनका प्रबंधन कैसे करें, जो IPM का तरीका है वो खेती में कैसे अपनाएं, और कृषि रक्षा रसायन जहर हैं तो उनका सुरक्षित प्रयोग कैसे करें। क्योंकि आप विशेषज्ञ हैं तो आप हर सवाल का जवाब देंगे।
3: जी जी,
2: और
3: धन्यवाद।
2: और आज किसान भाइयों बहनों को बता दें कि आज का फोन इन का नंबर है 0522 2238 825, यानी 0522 2238 825। आप इस पर फोन करें और आज के विशेषज्ञ भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर SN सुशील साहब से सीधे बात करें। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम हेलो किसान में एक बार फिर स्वागत करते हुए पहला सवाल ये है कि आप मिठास के संस्थान से जुड़े हैं
3: जी,
2: आपका बहुत स्वागत है। पूरे प्रदेश में जो मिठास की फसल है, मुख्य रूप से गन्ने की फसल है, इस समय खेत में है, तो किसान भाई बहन सामयिक प्रबंधन में क्या कुछ करें कि फसल रौनक पर रहे और आगे चल करके मिठास अच्छी मिले।
3: जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने शुरुआत किया। इस समय गन्ना की फसल में आपकी खड़ी है सामने। अगर आपने जो पिछले अक्टूबर नवंबर में जो फसल लगाई थी, अगर उसमें मिट्टी नहीं चढ़ाया है तो चढ़ा दें
2: जी।
3: और जो अभी वाली जो फसल है,
2: यानी
3: बसंतकालीन वाली जो फसल है, उसकी भी अगर बढ़वार ठीक हो गई हो तो उस पर भी मिट्टी चढ़ा दें, और साथ में खरपतवार जो इत्यादि जो है, जब आप मिट्टी चढ़ाते हैं तो आपका खरपतवार का भी प्रबंधन साथ साथ हो जाता है।
2: डॉक्टर साहब, ये बात आगे बढ़ेगी लेकिन एक किसान भाई टेलीफोन लाइन पर है। हेलो,
4: नमस्ते बाबूजी।
2: नमस्ते भैया, अपना नाम बताएं, कहाँ से?
4: हम मनकापुर से बोल रहे हैं, जिला गोंडा मनकापुर ITI के पास में है, अंबरपुर ग्राम है हमारा।
2: अंबरपुर, अपना नाम बता दें भैया।
4: गोकर्ण प्रसाद मौर्या जो दृष्टि बाधित है बाबूजी।
2: बहुत स्वागत है गोकर्ण प्रसाद मौर्या भैया, सवाल पूछे हैं आज।
4: हमारा पेड़ी है, माटी हमको चढ़ाना है उसमें।
2: अच्छा,
4: तो ये से दो दो फुट के एक फुट के जो गन्ने छोटे किल्ले होते हैं वो मर जाते हैं, छोटी सड़ जाता है जब गन्ना काटा जाता है
2: जी।
4: तो उसी के लिए हम कहते हैं कि जैसे एक बीघे में कम से कम 2-3 क्विंटल गन्ना मर जाता है, तो क्या छोड़ दे तब मट्टी जराओ, जो क्या दान है या का जो आप बता दीजिए।
2: डॉक्टर साहब, पेड़ी की फसल है।
3: नहीं, हमको तो लगता है कि मिट्टी आप चढ़ा देंगे तो अच्छा रहेगा।
2: हाँ।
3: कि जो बगल में जो आप शूट जो निकल रही है।
2: हाँ।
3: वो मुख्य वाली जो शूट है उसका अच्छा बढ़वार होगा
2: और उसकी
3: मजबूती ज्यादा रहेगी, तो मिट्टी चढ़ाना ही उचित होगा।
2: और अब समय अंतिम समय
3: चल रहा है, इस समय मिट्टी जरूर चढ़ा दें।
4: मिट्टी चढ़ाएंगे लेकिन उसमें क्या छोड़ देंगे, क्या छोड़े जो?
2: अच्छा, कोई कृषि रक्षा रसायन क्या छोड़े?
3: नहीं नहीं, इस समय देखिए एक ही समस्या आ सकती है। अब ये जो चोटी बेधक कीट है, चूंकि अब जून का महीना आज देखिए 17 तारीख हो रहा है, और इस समय अब धीरे धीरे तितलियां सफेद वाली आ रही होंगी,
2: यानी तीसरी पीढ़ी,
3: और इस समय करीब 1.5 मीटर के करीब आपके कमर के हाइट से ऊपर तक गन्ना पहुंच चुका होगा, तो इस समय यह आती है तीसरी पीढ़ी, तो नुकसान कर सकती है। और अगर आप देख लें समस्या के हिसाब से, तो इस समय आप क्लोरेंटरनली प्रोल का प्रयोग कर सकते हैं
2: जी,
3: जो आने वाली तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी का वो कंट्रोल कर लेगी।
2: एक एकड़ में कितने

0: ये
1: लगभग 375 मिलीलीटर पूरे हेक्टेयर में लगता है,
0: यानी
1: 150 मिलीलीटर,
0: ढाई एकड़,
1: ढाई एकड़, 150 मिलीलीटर एक एकड़ में
0: पर्याप्त है,
1: पर्याप्त है जी।
0: तो भैया आप गोकरण प्रसाद मौर्या भैया मनकापुर गोवर्धन अंबरपुर से, आप डॉक्टर साहब ने जो दवा बताई उसका आप छिड़काव करें और मिट्टी जरूर चढ़ा दें, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। लगातार फोन किसान भाई बहन
1: जी, जी।
0: करेंगे जो मिठास से जुड़े हैं
1: जी जी।
0: बात चल रही थी कि इस समय कौन कौन गर्मी अपने चरम पर है, तो क्या फसल की प्यास भी बुझानी है?
1: सिंचाई जरूर देना पड़ेगा इस समय, क्योंकि गर्मी पड़ रही है और खेत अगर सूख रहा है तो एक सिंचाई दे दें तो अच्छा, हफ्ते 10 दिन पर एक बार दे देंगे
0: जैसी
1: तो अच्छा
0: जरूरत है,
1: जरूरत के हिसाब से, अन्यथा बहुत ज़्यादा सिंचाई नहीं करना भी उचित होता है कई बार।
0: अच्छा।
1: क्योंकि जैसे ही आपका मॉइस्चर लेवल यानी नमी अगर बढ़ती है तो ये जो सफ़ेद वाली जो चिट्टीभेदक के जो तितलियां आती हैं सफ़ेद वाली
0: और बढ़ जाएंगी,
1: इनकी संख्या बढ़ती है। तो थोड़ा समझदारी के साथ करें, मतलब लाइफ सेविंग, जब जरूरत है उतना ही डालें,
0: यानी जीवन रक्षक,
1: जीवन रक्षक सिंचाई ही करना उचित होता है इस समय पर।
0: और भूख मिटाना,
1: भूख मतलब अगर आपने अगर टॉप ड्रेसिंग में जो यूरिया आपकी रह गई थी, मतलब नाइट्रोजन रह गया था छिड़ डालना, तो वो जो बचा हुआ है 25% उसको आप डाल दें, यानी 37 से 40 किलो करीब नाइट्रोजन आप डाल सकते हैं
0: प्रति हेक्टेयर।
1: जी प्रति हेक्टेयर,
0: अगर ढाई एकड़ में प्रयोग कर सकते हैं, अगर एकड़ का हिसाब अपने बैठा लें और ये काम मानसून के पहले हो जाए।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: डॉक्टर साहब, इस समय बहुत सारे हानिकारक कीट और बीमारियों का प्रकोप गन्ने की फसल पर हो रहा है
1: जी।
0: तो किसान भाई जो मिठास से जुड़े हैं वो क्या चौकस निगरानी करते रहें?
1: बहुत ज़रूरी है ये, आप अपने खेत पे जरूर जाया करें, रेगुलर जाएं, नियमित जाएं। कभी कभी आप देखेंगे खेत में स्मट का कहीं कहीं इक्का दुक्का दिखाई देगा पर वो आगे बढ़ सकता है, तो उस पौधे को निकाल दें। लंबा सा ऐसे विप टाइप का बनता है जो मतलब चाबुक टाइप का रहता है, वो काला काला उसमें से निकलता है,
0: चूर्ण
1: टाइप का, तो उसको निकाल करके उसको,
0: अच्छा पूरा
1: थान निकाल दें उस वाले,
0: सावधानी से
1: वो आगे न बढ़ने दें, एक आसान तरीका हो सकता है ये
0: जी।
1: और हम समझते हैं कि निगरानी जो आपने शब्द किया ये बहुत आवश्यक है।
0: तो ये तो आप व्यवहारिक उपाय बता रहे हैं कि थान निकाल दें, क्या कोई फफूंदी नाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं?
1: फफूंदी नाशक है इसके लिए, एक एजॉक्सी एस्ट्रोबिन और प्लस डाइफेनेकनोजोल का एक कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट आता है बाजार में, उसको लेकर के उसको लगभग 1 मिलीलीटर प्रति लीटर वाटर के पानी के हिसाब से आप उसका एक स्प्रे कर सकते हैं अगर समस्या बढ़ रही है तो।
0: एक किसान भाई लाइन पर हैं
1: जी।
0: हेलो भैया, नाम बताएं कहाँ से?
2: अरे डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: अरे नाम बता दें भैया। साहेब लाल यादव भैया, हेलो किसान में बहुत दिन बाद आपका फोन आया, बहुत दरियाबाद बाराबंकी से। ये बताएं कि सवाल पूछें
2: ऐसा है गन्ने के बारे में, है हम गन्ना बहुत पिछड़ के बोए हैं थोड़ा से
0: हाँ।
2: तो जमाव तो हो ही गया है बहुत धड़ाके से
0: हाँ।
2: तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अब मैं यहाँ सवाल कर रहे हैं कि साहब हम विशेष करके वहाँ सिंचाई कर रहे ना
0: हाँ।
2: तो वही कोनो कीड़ा उड़क है नहीं दिखाई दिया, अब जाम आवा है बड़ा अच्छा है,
0: खुराक भरपूर दिए है न
2: जी जी। और उसमें उर्द की खेती किए रहे तो उर्दवा तो पछड़ गया है, इसे उर्दवा फले भाग है
0: हाँ, तो फली की तुड़ाई करके पलटाई कर देंगे। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे?
1: हम तो ये कहेंगे
0: खेती बुआई की
1: थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि शुरुआत में तो आपने नाइट्रोजन वगैरह एनपीके वगैरह सब डाला होगा, डीएपी वगैरह, तो जो बचा हुआ मात्रा रह गया है उसको भी डाल दें
0: हाँ।
1: और दूसरा चीज, अगर बढ़वार बहुत कम हो रही तो चाहे तो जिंक सल्फेट का 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके
0: जी
1: एक छिड़काव कर सकते हैं
0: हाँ।
1: तो बढ़वार में थोड़ा तेजी आ जाएगी।
0: और नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास के बाद ये सूक्ष्म पोषक तत्वों में दाल में नमक का काम करें
1: जी जी जी, जिंक सल्फेट अगर डाल देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। बाकी हमें लगता है कि फसल आपकी पिकअप करेगी, अभी जब ये मानसून अब आ रहा है बारिश आने लगेगी, उसके बाद आपको जुलाई के बाद इसकी बढ़वार तेजी से बढ़ेगी।
0: बहुत धन्यवाद साहेब लाल यादव भैया दरियाबाद बाराबंकी से। और एक किसान लाइन पर और हैं डॉक्टर साहब। हेलो
1: जी।
0: हेलो

0: हेलो जी
1: भैया सवाल पूछें।
0: डॉक्टर साहब, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब, दिनेश यादव बोले था भाई, 12वीं की से।
1: हाँ, बहुत स्वागत है दिनेश भैया। क्या सवाल है आपका?
0: डॉक्टर साहब, हमारे गन्ने के पाती सुखा था भाई।
1: अच्छा, शरतकालीन या बसंतकालीन फसल है?
0: अब नहीं, बसंत कालीन है डॉक्टर साहब।
1: तो किस तरह के लक्षण है डॉक्टर साहब को बताएं। नहीं, पत्ती ऊपर से सूख रही है, कैसे बीच में सूख
0: नहीं
1: रही
0: डॉक्टर
1: है?
0: साहब, वो ऊपर से सुखा था भाई।
2: तो इसमें बीच में हमको लगता है कि आप सिंचाई नहीं किए थे क्या? सूखापन
1: क्या
2: आया।
1: हीट स्ट्रोक भी हो
2: हाँ,
1: सकता
2: हीट
1: है?
2: स्ट्रोक भी हो सकता है। और कुछ वैरायटी जो हो ज़्यादा इसके लिए ससेप्टेबल रहती है,
1: हाँ
2: तो कुछ वैरायटी में दिखता है अगर ऊपर का टिप में अगर सफ़ेदपन आ रहा है, जैसे
1: हाँ
2: 238 वैरायटी में पहले होता था, तो
1: जी
2: कुछ वैरायटी में होता है लेकिन बाद में और वो सर्वाइव करती है, मतलब बहुत अच्छे से रिवाइव कर जाती
1: अपने
2: है,
1: आप ठीक हो
2: अपने
1: जाती,
2: आप ठीक हो जाती है,
1: यानी मौसम बदलने के
2: मौसम
1: साथ।
2: साथ हो जाएगा। तीसरा, अगर ज़्यादा पूरा नीचे से सूख रहा है तब देखना पड़ेगा क्या है समस्या।
1: हाँ तो दिनेश भैया, हेलो,
0: हेलो
1: लगता है। हाँ बताइए, डॉक्टर साहब ने जो

0: से 238 वैरायटी में पहले होता था
1: जी,
0: तो कुछ वैरायटी में होता है लेकिन बाद में और वो सर्वाइव करती है, मतलब बहुत अच्छे से रिवाइव कर जाती
1: अपने
0: है,
1: आप ठीक
0: अपने आप ठीक हो जाती है,
1: यानी मौसम बदलने के साथ
0: हो जाएगा। तीसरा, अगर ज्यादा पूरा नीचे से सूख रहा है तब देखना पड़ेगा क्या है समस्या।
1: हाँ तो दिनेश भैया हेलो, लगता है, हाँ बताइए डॉक्टर साहब ने जो बताया। हेलो
0: जी, दिनेश जी बोलिए।
1: बहुत धन्यवाद, लगता है संपर्क कट गया है। आप चौकस निगरानी करते रहें और अगर समस्या जैसे मौसम के परिवर्तन के साथ ही आपकी फसल की रौनक बढ़ जाएगी मानसून आने के साथ ही, अगर कोई समस्या है तो आगे फिर हेलो किसान में फोन करें। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम लोगों की बात चल रही थी कि जो मिठास की फसल है उसकी भूख और प्यास मिट गई, फसल सुरक्षा में निगरानी हो गई, क्या कुछ जैविक उपाय हैं जो पहले से ही हम लगा दें कि हानिकारक कीट और बीमारियों का असर बेअसर हो जाए?
0: जी बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। जितने भी एक सामान्य सा एक प्रकृति का नियम है
1: जी
0: कि जो भी आप ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पर है
1: हाँ,
0: उसका नेचुरल एनिमी जरूर होगा
1: जी,
0: मतलब उसको खाने वाला जीव जरूर होगा।
1: हाँ, हाँ।
0: तो उसी प्रकार से कीटों के लिए भी है
1: जी,
0: जितने प्रकार के भी कीट आप देख रहे हैं संसार
1: हाँ,
0: में
1: हाँ।
0: उनको खाने वाले भी कीट होते हैं जो जिनको हम लोग मित्र कीट कहते हैं,
1: यानी दुश्मन का दुश्मन दोस्त
0: हो गया हमारा। तो हम लोग जो पेस्टिसाइड का कई बार एप्लीकेशन जो करते हैं
1: जल्दीबाजी
0: में कर देते हैं, दवा छिड़कने लगते हैं बिना समझे, बिना उसके साथ में एक पर्ची मिलती है
1: हाँ।
0: बिना उसको पढ़े कितनी मात्रा डालनी है, और कई बार अधिक मात्रा भी डाल देते हैं। तो उससे हमको बचना है, हमको संतुलित मात्रा में डालना चाहिए ताकि हमारे जो मित्र कीट है वो सुरक्षित रहे
1: जी,
0: और हमारा शत्रु कीट का
1: प्रबंधन भी हो जाए। एक किसान भाई जुड़े हैं डॉक्टर साहब इस बीच। हेलो,
2: हेलो
1: भैया, नाम बताएं।
2: राम प्रसाद सहोरा साहब आपसे बोल रहे हैं।
1: शाहबाद हरदोई से बहुत स्वागत है राम प्रसाद भैया, क्या सवाल है?
2: सवाल सब ठीक, गन्ना नम सब दौरे को कीड़ा है लग रहे ज्यादा।
1: किस तरह के कीड़े हैं, लक्षण बताएं और नुकसान क्या हो रहा है?
2: बाहर किसी सूख जाता।
1: अच्छा
2: हाँ।
1: क्या चोटी बेधक का असर है?
0: वो दूसरी अवस्था जब आई थी उस समय लगता कुछ प्रकोप हुआ। दूसरा क्या वो बीच वाली जो गोब है मुझको हाँ। जो क्या बोले
1: जी, सूट
0: सूट
1: हाँ।
0: उसमें से उसका एक बीच वाला अगर सूख रहा है, अगर उसको खींच के आप देखेंगे
1: हाँ। अगर आसानी
0: से निकल गया
1: तो टॉप बोरर
0: एक नहीं वो अर्ली शूट बोरर बोलेंगे उसको
1: जी, जी।
0: और अगर नहीं खींच रहा तो नीचे रूट बोरर भी रहता है कई बार।
1: अच्छा,
0: तो वो समस्या हो सकती है। और कितना प्रतिशत होगा अगर आप गिन के बता सकते हैं एक अंदाज से?
2: बहुत कम है,
0: एक का दुक्का अगर हो रहा है तो कृपया करके कुछ न डालें। एक बात हर किसान भाई को हम यही कहना चाहेंगे कि जब एक्का दुक्का होता है उनको भी जीने का अधिकार है
1: हाँ।
0: तो कभी भी कीट या कोई भी चीज को आप जीरो नहीं कर सकते। इस बात को
1: कृषि रक्षा रसायन का प्रयोग
0: ना करें
1: जल्दीबाजी में
0: ना करें। जब उनकी संख्या 4-5%, 7%, 8% जब लगे कि अब ये बढ़ने की,
1: यानी नुकसान का स्तर अधिक
0: बढ़ रहा, तभी आप प्रयोग करें। नहीं तो आप बिना मतलब का दवा डाल देंगे उल्टा मित्र कीटों को ही मार देंगे
1: जी।
0: तो उससे बचने का कोशिश करेंगे। और उसमें जो मित्र कीट ऑलरेडी प्रकृति में सामंजस्य बना देते हैं
1: हाँ।
0: अगर कीट आएगा तो उसके मित्र कीट भी और तेजी से उसमें काम करने लगते
1: हैं। सब कोई जैविक उपाय है इनके लिए?
0: इनके लिए उपाय है, हमारा संस्थान भी उस पर कार्य कर रहा है और भी संस्थान है, जैसे कि ट्राइको कार्ड।
1: अच्छा।
0: है ट्राइको कार्ड का अगर प्रयोग कर दें, जैसे ये बरसात का टाइम अब आ रहा है इसी समय कीट उट का संख्या भी बढ़ती है, तो इसको 7-10 दिन के अंतराल पे अगर 50,000 कीट के हिसाब से उसका स्ट्रिप रहता है
1: हेक्टेयर में,
0: हेक्टेयर के हिसाब से
1: अगर एकड़ की बात करें तो 20,000
0: तो मानिए कि 2-3 स्ट्रिप जो है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके खेत में अगर लगा दें,
1: स्टेपल कर दें
0: तो मित्र कीट वहां के उनकी संख्या बढ़ा सकते हैं
1: हाँ।
0: पायरिला का कई बार प्रकोप अभी आने वाले समय में बना रहता है जब बरसात के टाइम आता है, खासतौर से जुलाई अगस्त में
1: जी।
0: तो उस समय इपिरिकेनिया एक उसको खाने वाला जंतु है,
1: मित्र कीट है
0: जो वो आपको दिखाई देगा, तो वो खेत में ही दिखाई देता है, किसी खेत में नहीं भी होगा किसी खेत में होगा,
1: तो उसको बढ़ावा देना है।
0: तो दूसरे खेत में जहाँ उपलब्ध है उसकी पहचान करके, सफेद सफेद कीड़े रहते हैं छोटे लेकिन वो मित्र कीट है, उनको वहां से काट करके इधर ला करके डाल देना,
1: चिपका देना
0: हाँ, बस इधर ला के छोड़ देना है, तो उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो इस तरह से थोड़ा ध्यान रखेंगे और

0: तो हम समझते हैं कि आप बिना किसी दवा के प्रयोग के, रासायनिक दवा के प्रयोग के, आप कंट्रोल कर सकते हैं।
1: यानी धैर्य की जरूरत है, संतुलन की जरूरत है,
0: जी,
1: और यही समन्वित नाशी जीव प्रबंधन है।
0: जी जी
1: बिल्कुल। एक किसान भाई जुड़े हैं डॉक्टर साहब। हेलो।
2: हेलो डॉक्टर साहब, नमस्ते।
1: नमस्ते, ये किसान रेडियो क्लब ललहुआ लखीमपुर खीरी के किसान हैं विजय पाल यादव
0: जी।
2: जी सर,
1: जो मिठास के लाल हैं। सवाल पूछिए।
2: ये सर बता रहे हैं, गन्ना थोड़ा COJ 85 बोया है हमने।
1: हाँ। जी,
2: तो उसकी साइड की पत्तियां सूख रही, पोंगी नहीं सूख रही है।
1: अच्छा,
2: उसकी साइड की पत्तियां सूख रही। दूसरा सवाल, ये चारा बोया उसकी बीच की पोंगी सूख रही है।
1: नहीं, पहले मिठास की बात कर लें। हाँ, तो बीच से सूख रही है पत्ती,
2: बीच की साइड नहीं, साइड की जो पत्तियां होती है वो ऊपर से सूख रही, नोक पर से सूख रही,
1: नोक पर से।
0: हाँ, तो वो तो वापस रिवाइव हो जाएगा। कुछ ही प्रजातियों में इस तरह का सिम्टम दिखता है, वो वापस फिर से हो जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, कहीं पोषक तत्वों की कमी के
0: कमी
1: लक्षण
0: का कभी हो भी सकता है, लेकिन चांसेस कम है। और इस तरह का जो टिप वाला आता है, ये बाद में रिवाइव करता है, कुछ वेराइटीज में है। और जो साइड से आप बता रहे हैं, नीचे थोड़ा पत्ती को छील के देखेंगे, कभी इस समय उम्मीद है कि थोड़ा मिलीबग या कोई कीट वहाँ हो सकता है।
1: हाँ,
0: ये आपका, ये आपकी पेड़ी वाली है या
1: बावक है?
0: हाँ, बावक
2: पर है सर, पेड़ी।
1: पेड़ी में है समस्या है।
0: हाँ, पेड़ी मतलब जो,
1: हाँ हाँ, रेटून,
0: रेटून वाली। तो इसमें अंदर में थोड़ा खोलेंगे तो कई बार काले रंग का छोटा वाला जो बग आता है, ब्लैक बग बोलते हैं, वो भी हो सकता है इसमें
1: जी।
0: तो उसके लिए अगर ज़्यादा समस्या लग रही है तो इसमें इमिडाक्लोप्रिड का एक छिड़काव कर सकते हैं, 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से।
1: हाँ।
0: इमिडाक्लोप्रिड चाहे थायोमेथेक्साम का, ये दो दवाइयां हैं जो कि बहुत अच्छा सिस्टमिक है, जो इसको कंट्रोल कर देगी एक बार में।
1: यानी इमिडाक्लोप्रिड की 1 ml मात्रा 3 लीटर पानी में।
0: जी, 1 ml 3 लीटर
1: पानी। और 1 ग्राम थायोमेथेक्साम 3 लीटर पानी में मिला करके अगर छिड़काव करते हैं तो आपकी मिठास की फसल सुरक्षित हो जाएगी। बहुत धन्यवाद विजय लाल यादव भैया लखीमपुर खीरी से, किसान रेडियो क्लब ललुआ से। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा अंतराल है
0: जी।
1: और उसके बाद कार्यक्रम के दूसरे चरण में एक बार फिर मिलते हैं कार्यक्रम हेलो किसान में।
0: जी जी।
3: नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार। इफको

0: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
1: नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली।
0: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
1: इफको नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली और खेतों में लाए ये हरियाली।
0: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
2: इफको नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली।
3: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
4: कार्यक्रम हेलो किसान के दूसरे चरण में एक बार फिर स्वागत है किसान भाइयों बहनों आप सभी का। डॉक्टर एस एन सुशील साहब जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है उसके निदेशक हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब इस चरण में भी आपका स्वागत है,
5: धन्यवाद।
4: और मिठास के किसान भाई आपका लाभ ले रहे हैं, सीधे अपने सवाल आपसे पूछ रहे हैं और सीधा संवाद हो रहा है। जो किसान भाई बहन रेडियो सेट बाद में ऑन किए हैं उनको आज का हेलो किसान का नंबर बता दें, 0522-223-8825 यानी 0522-2238-825। डॉक्टर साहब फसल सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, सारी मेहनत जो किसान भाइयों

0: बहनों की है, वो खेत में है, तो फसल सुरक्षा में और क्या कुछ करें गन्ने में?
1: देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपने शुरू में ही कहा कि निगरानी बहुत जरूरी होती है। जब भी सुरक्षा की बात करें तो निगरानी बहुत जरूरी है। नियमित रूप से जाएं, एकदम उतावलेपन से कभी भी दवा न डालें। सोच समझ करके
0: जी।
1: कि वास्तव में दवा की जरूरत है कि नहीं, हम लोगों से संपर्क कर लें, फोन नंबर भी आपको मिल जाएगा
0: जी।
1: जरूर संपर्क करें। उसके बाद दवा सब दवा सबके लिए नहीं होती है, इसलिए ये भी समझना जरूरी होगा कि जो आप दवा के साथ में जो एक पर्ची मिलती है
0: उसको
1: पढ़ना सीखें। पढ़ना, क्योंकि हम किसान भाई उसको पढ़ते भी नहीं है और सामान्यतः नहीं पढ़ते हैं, तो उसको जरूर पढ़ें। उस पर दवा का नाम लिखा होगा तो साथ में कितना प्रतिशत, कितनी दवा की मात्रा, कौन से फसल में, कौन से कीट या बीमारी के लिए है, इस बात को समझना आपको बहुत जरूरी
0: है। डॉक्टर साहब, एक किसान भाई लाइन पर हैं। हेलो
2: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताएं।
2: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
0: नमस्कार, नमस्कार, बताएं।
2: मेरा नाम सर सत्यनारायण कोरवाल है।
0: कहाँ से?
2: जिला बहराइच चंडीगढ़ ही से।
0: बहुत स्वागत है सत्यनारायण भैया, सवाल पूछिए जल्दी से।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर। सवाल मेरा ये है, कौन सी प्रजाति का गन्ना उगाए, मतलब बोए जो बढ़िया से होगे, खूब अच्छा खासा।
0: डॉक्टर साहब
1: जी,
0: ये
1: आप बहराइच से हैं?
0: हाँ, बहराइच से, तराई इलाका।
1: तराई इलाका है हमारे यहाँ की। एक पुरानी वैरायटी अगर आपने कभी बोया हो, COLK 94184
0: सदाबहार है।
1: सदाबहार है, और जहाँ पर पानी लगता हो या थोड़ा बहुत तराई एरिया हो वहाँ बहुत अच्छी चलती है। इसके अलावा एक COLK 14201 है
0: जी,
1: जो हमारी अगेती वाली वैरायटी है।
0: नई वैरायटी,
1: नई वैरायटी है, काफी अच्छी चल रही है हमारे इस क्षेत्र के में। एक और हमारी CO202 है, ये भी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो ये सब वैराइटीज़ हैं, बाकी 238 पुरानी वाली है, अब हम लोग मना कर रहे हैं क्योंकि उसमें रेड राट की समस्या आती है, लाल सड़न रोग की समस्या आ रही, तो हम लोग उसको अब आजकल डिस्करेज कर रहे हैं
0: जी।
1: 118 है, CO 118 0118, उसको भी आप ले सकते हैं। पर हमने जो अभी देख रहे हैं इस समय बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है 14201 जो काफ़ी अच्छी चल रही है। अब चूंकि आप फरवरी के महीने में जनरली हम लोग लगाते हैं और बाद वाले में भी अक्टूबर में भी लगाते हैं, तो बहुत अच्छे से चलती है। 16202 भी बहुत अच्छी चल रही है, तो ये सब वैरायटी आप लगा सकते हैं।
0: बहुत धन्यवाद सत्यनारायण भैया बहराइच से। डॉक्टर साहब, हम लोगों की बात चल रही थी कि नियमित निगरानी हो, लेकिन बहुत सारे बेधक कीट
1: जी
0: अलग अलग समय पर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनकी पहचान कैसे हो कि कौन सा बेधक लगा है?
1: जी देखें, जैसे कि अब चोटी बेधक है तो ऊपर में आप देखेंगे कि जैसे छर्रे से कोई किसी ने मार दिया हो, एकदम गोला गोला गोला गोला छेद पड़ गया
0: जी,
1: तो वो एक दिखाई देगा ऊपर के पत्तियों में और ऊपर से वो घुसता है और घुसने के बाद ऊपर से बढ़वार को रोक देगा
0: जी।
1: तो साइड से ब्रांच बनती है जिसको हम लोग बंची ट्रैप बोलते हैं। तो वो एक सिम्टम आता है, ये तो हुआ चोटी बेधक।
0: अब क्या डेड हर्ट हो जाता है
1: उसमें? ऊपर में सूख जाएगा और साइड से ब्रांच बन जाएगा
0: जी।
1: इसी तरह से एक हमारा जो नीचे में लगता है, जैसे मैं पहले भी बोल रहा था अगेती वाली जड़ बेधक, इसके अलावा एक दो और कीट लगते हैं बीच में। एक लगेगा इंटरनोड बोरर जो एक आरी नुमा जैसे कटा हुआ सा आपको दो उसके
0: पोरियों
1: के बीच में कटा हुआ सा दिखता है। एक और लगेगा जिसमें छेद छेद दिखाई देगा,
0: वो क्या है?
1: वो स्टाक बोरर।
0: अच्छा,
1: स्टाक बोरर। तो इस तरह के कई बोरर हमारे, क्योंकि गन्ने की मिठास रहती है तो जैसे मीठा आदमी को पसंद है तो कीड़ों को भी बहुत पसंद है,
0: तो मिठास के दुश्मन भी बहुत। एक किसान भाई जुड़े हैं जो हेलो किसान के मित्र हैं
1: जी।
0: हेलो,
3: नमस्कार।
0: नमस्कार भैया, नाम बताए।
3: रक्षाराम वर्मा, बलरामपुर से।
0: बहुत स्वागत है रक्षाराम वर्मा भैया, बलरामपुर के सतघरवा ब्लॉक के किस गांव से हैं आप?
3: अकबरपुर साहब, अकबरपुर कला।
0: बहुत स्वागत है, ये बताएं कि कितना रकबा है आपके पास गन्ने का?
3: 5 एकड़ है।
0: 5 एकड़, कौन सी वैरायटी लगाए हैं?
3: 94184 है और 14202 है।
0: वाह, दोनों अच्छी वैरायटी है। क्या सवाल पूछना चाहेंगे डायरेक्टर साहब से?
3: साहब, एनपी के साथ जो है कीटनाशक और जो है जिंक छिड़का चाहे सके मिला के छिड़क सके थे?
1: एनपी के क्यों डालेंगे इस समय?
0: क्या पहले कम

0: खुराक दिए हैं क्या?
1: जी।
2: देखिए एनपीके जो फास्फोरस है, इसमें जो एनपीके में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास है, तो ये सब फास्फोरस वगैरह तो जड़ में जाना है। जिस समय आप बुआई करते हैं उस समय आपको डालना है।
0: डॉक्टर साहब इनका कहना है कि आजकल जो जल विलेय उर्वरक आ गए हैं, डालेंगे लेकिन 18-18
2: उससे अच्छा
0: पानी में घोल बना करके पानी छिड़काव
2: करें। उससे तो अच्छा होगा कि 2% आप यूरिया का ही घोल बना करके डाल दें
0: जी,
2: जो कि सीधे परणी घोल बना के डाल दें, उसको सीधा मिल जाएगा खुराक। और चाहे तो जिंक सल्फेट को डाल दें,
0: अलग अलग डालें तो ज्यादा
2: अलग डालेंगे तो बेहतर होगा जी,
0: एक साथ न मिलाएं
2: जी,
0: क्योंकि कई बार फास्फोरस की कुछ खादों के साथ जिंक सल्फेट का कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, तो अलग अलग प्रयोग करें। रक्षाराम भैया अपने गांव में किसान रेडियो क्लब बनाएं, गांव के सभी किसान भाइयों बहनों को कार्यक्रम हेलो किसान सुनवाएं, और अगर उनकी भी खेती किसानी बागवानी और पशुपालन से जुड़ी समस्या है तो हेलो किसान तक जरूर पहुंचाएं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम लोगों की बात चल रही थी बेधक कीटों की, तो जैसे आपने बताया कि ट्राइकोकार्ड का प्रयोग है
2: जी,
0: इसका प्रयोग बरसात मानसून आने के साथ कर
2: जी, क्योंकि इसमें दो बात मुख्य बात क्या है कि ये जो कीट बहुत छोटे होते हैं
0: मित्र,
2: अगर मित्र कीट अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़े उसी समय आपने लैब से निकाल करके फील्ड में डाला तो सर्वाइव मुश्किल से करते हैं। कुछ हम लोगों ने रिसर्च किया है जिसमें हीट टॉलरेंट वाले बनाए हैं स्ट्रेन, तो आपको अगर उपलब्ध हो जाए तो कर सकते हैं, उपलब्ध नहीं हो रहा है तो ज्यादा अच्छा। और मुख्यतः कीट जो अभी तितली जैसे आ रही है, अब बरसात का टाइम भी आ गया तो अब मौसम वैसे भी अब हमारा 35-34 में अब जी चला जाएगा, उससे नीचे ही चला जाएगा, तो बहुत आसानी से सर्वाइव करेंगे और कंट्रोल भी करते हैं बहुत अच्छा।
0: तो ये एक एकड़ में 20,000
2: जी,
0: और उसको पूरे खेत में जगह जगह जगह जगह
2: पे 8-10 जगह पर स्टेपल कर दें, स्टेपलर से जाके
0: पत्ती की अपनी संख्या अपने आप बढ़ा लें,
2: फिर वो आगे आगे काम करेंगे।
0: एक किसान भाई जुड़े हैं इस बीच डॉक्टर साहब। हेलो
1: नमस्ते बाबू जी।
0: नमस्ते, नाम बताएं भैया।
1: हमारा सर नाम सुबेदार है, ग्राम पतरास ब्लॉक चिहानी से बोल रहा हूँ सर।
0: बहुत स्वागत है सुबेदार भैया, आज का सवाल है क्या
1: बाबूजी? हम ये पूछना चाहते हैं कोई ऐसी दवा भी नहीं चली जो बंदर का निदान हो जाए गन्ने से।
0: अच्छा, मिठास की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं
1: जी,
0: तो डॉक्टर साहब कोई व्यवहारिक उपाय? एक तो रखवाली है।
2: देखिए बंदर एक बड़ा समझदार जीव है, उसके लिए अगर कोई तरह का भी मैकेनिकल ऑप्शन अगर आप लेते हैं
0: जी
2: तो वो समझ जाता है।
0: हाँ।
2: आप कुछ भी बजाएंगे, कुछ भी करेंगे, ड्रम भी बजाएंगे तो कुछ दिन तक, जैसे वो एक बत्तख होता है
0: जी,
2: अब गीज जो बोलते हैं बत्तख,
0: हाँ।
2: और उसकी आवाज से डरते हैं बंदर।
0: हाँ।
2: लेकिन क्या होता है कुछ दिन के बाद फिर उस समझ जाते हैं,
0: आदत
2: फिर आदत बन जाते हैं। तो आपको बस वही व्यवहारिक रूप से है कि जो तार बाड़ या वो तो महंगा ही पड़ता है और भगाना ही एक तप है।
0: लेकिन
2: नील गाय के लिए हम जरूर कहेंगे कि नील गाय और दूसरे इस तरह के जैसे जंगली सुअर वगैरह के लिए अगर आप कोई ऐसा बल्ब या कुछ जलाएं और उसके आसपास में जो बर्ड चिड़िया को भगाने वाली जो स्ट्रिप रहती है
0: जी,
2: उसको एक माला के रूप में लगा दे, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि वो आग का रूप दिखाई दे।
0: अच्छा, आग जैसा,
2: आग जैसा उसका लिखा आग नहीं है लेकिन लगे कि आग जल रही
0: जी,
2: तो जो जंगली जानवर हैं
0: वो दूर भागेंगे,
2: उससे डरते हैं
0: जी।
2: तो जो हमने प्रयोग करके देखा है, हमारे संस्थान ने बनाया भी है रिपेलेंट, उसमें आवाज भी होती है, उसमें नील गाय जरूर भागती है
0: जी,
2: नील गाय और ये जो जंगली सुअर ये उससे डरते हैं।
0: बहुत धन्यवाद सुबेदार भैया, देखें अपने खेत की रखवाली करें, ये एक व्यवहारिक उपाय है और डॉक्टर साहब के संपर्क में रहेंगे, आगे कोई व्यवहारिक उपाय निकलेगा तो जरूर आपको बताया जाएगा। एक किसान भाई टेलीफोन लाइन पर और हैं डॉक्टर साहब। हेलो।
1: हेलो
0: भैया, नाम बताएं।
1: डॉक्टर साहब नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते,
1: हम रत्थाराम वर्मा गाँव आनंदपुर ब्लॉक इटिया थोक जिला गोंडा से बोल रहा हूँ।
0: बहुत स्वागत है रक्षाराम वर्मा भैया, क्या सवाल है आपका?
1: सवाल साहब यह है, गन्ना का है।
0: हाँ।
1: 2 एकड़ गन्ना हमने बो रखा है
0: जी,
1: बाबक।
0: हाँ।
1: तो इसमें हमने पहले जमीन में जो है मतलब डीएपी जो है 10 किलो बीघा यानी 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाला था।
0: हाँ।
1: 10 किलो का बीघा मतलब।
0: हाँ, एकड़ 50 किलो हो गया।
1: हाँ। बाकी इसमें हमने कोई चीज खाद नहीं और डाला है
0: जी,
1: ना यूरिया है ना और पोटास है, कोई चीज नहीं है।
0: हाँ।
1: हम मुजफ्फरनगर से

0: कंपनी से डायरेक्ट दवा लेकर के आए थे
1: जी,
0: उन्होंने जो जो बताया था उस हिसाब से हम दवाई डालते रहे हैं।
1: हाँ,
0: अब हमें ये बताइए कि हम डीएपी जो है घुलनशील डीएपी और ये यूरिया और कापर और ये सब ये मिला करके चारों एक में डाल सकता हूँ?
1: डॉक्टर साहब, नैनो यूरिया प्लस, देखिए अगर आपको दानेदार यूरिया नहीं मिल रही है तो नैनो यूरिया प्लस की 4 ml मात्रा प्रति लीटर पानी घोल बना करके आप मानसून के पहले
0: और नैनो यूरिया कापर और जिंक ये चारों मिला सकता हूँ एक में?
1: देखिए एक बार टेस्ट करना पड़ेगा, जार टेस्ट। डॉक्टर साहब जार टेस्ट कैसे करें बता दें?
2: नहीं नहीं वो नहीं होगा
1: जी, ये
0: सिंचाई किए थे
1: हाँ,
0: तो इसमें 5 किलो बीघा यूरिया और सागरिका 1 किलो का बीघा डाल दिए हैं।
1: तब तो अभी जरूरत नहीं, आप मानसून के पहले अगर आपको जरूरत पड़ती है तो नैनो यूरिया प्लस का आप छिड़काव कर दें, और कोई इस तरह के रासायनिक खाद आप डीएपी डालने की आवश्यकता नहीं है,
2: सही है।
1: समझ रहे हैं? बहुत धन्यवाद भैया रक्षाराम वर्मा भैया गोंडा से। डॉक्टर साहब एक अंतराल और है
2: जी।
1: फिर कार्यक्रम हेलो किसान में दूसरे तीसरे चरण और अंतिम चरण में मिलते हैं एक बार फिर।
3: नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। इफको

0: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
1: इफको नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली।
2: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
3: नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली।
0: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
4: कार्यक्रम हेलो किसान के अंतिम चरण में एक बार फिर स्वागत है किसान भाइयों बहनों आप सभी का। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के निदेशक डॉक्टर एस एन सुशील साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, इस चरण में भी आपका स्वागत है।
5: धन्यवाद।
4: लगातार किसान भाई बहन आपसे सीधा संवाद कर रहे हैं, जो भी उनके मन में सवाल है, कोई शंका है, कोई समस्या है या कोई जिज्ञासा है। डॉक्टर साहब, अभी कृषि रक्षा रसायनों की बात हुई और उसके पहले जैविक उपायों में ट्राइको कार्ड की बात हुई, क्या कोई और भी बायोलॉजिकल कंट्रोल है?
5: जी, कई और, जैसे मुख्य रूप से क्या होता है, कोई तितली है अंडे देती है, तो जो ट्राइको कार्ड की बात आप किए तो वो अंडे की अवस्था को ही मारेगा।
4: हाँ,
5: उसी में अपना जीवन चक्र बनाएगा, उनको मारेगा
4: जी।
5: अंडे से कुछ इल्लियां बन जाएंगी।
4: हाँ, हाँ।
5: अब उस इल्लियों के भी कई दुश्मन कीट हैं, मतलब मित्र कीट, हमारे मित्र कीट जो उनको खाएंगे।
4: हाँ।
5: जैसे कोटेसिया फ्लेविप्स है, आइसोटीमा जिवेंसिस है।
4: लेकिन मिलेगा कहाँ?
5: ये हमारे संस्थान से थोड़ी मात्रा में तो जरूर मिल जाएगी,
4: और उसको किसान भाई अपने खेत में ले जाएंगे।
5: इसकी खासियत ये है कि अगर थोड़ी मात्रा भी अगर आप डाल देते हैं, थोड़ी मात्रा मतलब कि अगर 100, 200, 500 भी डाल देते हैं
4: तो अपने आप बढ़ जाएगा,
5: तो वो अपने आप बढ़ता चला जाता है। बस उनकी रक्षा करनी रहती है, उसको दवा बिना बात दवा डाल करके उनको नहीं मारना है।
4: डॉक्टर साहब, एक किसान भाई जुड़े हैं इस बीच। हेलो, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से प्रयास करें। डॉक्टर साहब, ढेर सारे मित्र फफूंद भी हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा है
5: जी,
4: स्यूडोमोनास है
5: जी,
4: मेटाराइजियम है
5: जी,
4: इसका भी प्रयोग क्या मिठास की फसल में कुछ रोग दोख के बचाव के लिए हो सकता है?
5: बिल्कुल हो सकता है। ये अपने आप, जैसे जैसे जैसे हम लोग को बीमारी होती है, वैसे कीट पतंगों को भी बीमारी होती है
4: जी।
5: तो उसमें कई प्रकार के बीमारियों की पहचान की गई, जैसे मेटराइजियम एनिसोपली, बेवेरिया बेसियाना, ये अलग अलग तरह की बीमारी उसमें लाते हैं। किसी में सफ़ेद कलर हो जाते हैं, किसी में हरे रंग के हो जाते हैं। और इसी तरह ट्राइकोडर्मा, जैसे आपने नाम लिया, ये फफूदनाशी है, जो कि दूसरे जो हमारी जो बीमारियाँ पैदा करते हैं, चाहे वो सुखाते हैं,
4: दुश्मन फफूद

0: खा जाए, दुश्मन पफूद के ऊपर ये अपना अटैक करके उनको खा जाते हैं, उनका वही भोजन है, तो उसका भी प्रयोग करना उचित रहता है। और कई बार आप देखेंगे कि सामान्यतः नेचर में वो कर रहा होता है,
1: हाँ,
0: वो प्राकृतिक रूप से वो कर रहा है,
1: लेकिन लगातार जो कृषि रक्षा रसायनों का प्रयोग है, रासायनिक खादों का, उसका भी तो दुष्प्रभाव है।
0: बिल्कुल है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले शुरू से ही बोल रहा हूँ कि संतुलित मात्रा में हमेशा करें, आवश्यकता के हिसाब से ही करें,
1: यानी पर्यावरण हितैषी,
0: पर्यावरण हितैषी चीजों को ही ज्यादा प्रयोग करें, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है और पर्यावरण के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे मित्र कीटों के लिए भी अच्छा नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, कृषि रक्षा रसायन जहर है, अभी तक तो हम लोग मिठास की बात किए, मिठास की फसल की, जो अन्य फसलें हैं, सब्जियां हैं, दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, बागवानी है, उनमें कृषि रक्षा रसायनों का प्रयोग सुरक्षित हो, इसके लिए क्या करना है?
0: अब फिर से मैं अपनी बात को ही दोहराऊंगा कि जब भी आपके यहाँ, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि थोड़े बहुत मात्रा में अगर कीट लग रहे हैं या बीमारी आ रही है, तो तुरंत उस पर आपको नहीं दवा के छिड़काव करना है,
1: हाँ।
0: आपको उसकी मात्रा को समझना पड़ेगा कि ये बढ़वार की तरफ है या इतना ही आके रहेगा,
1: हाँ।
0: क्योंकि मित्र कीट भी वहीं घूम रहे हैं, आपके तमाम जो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट उसी एरिया में हैं, तो वो अपने आप कंट्रोल कर लेंगे,
1: यानी उनका दुश्मन के साथ साथ मित्र को नुकसान ना हो,
0: नुकसान ना हो, तो वो उसको कंट्रोल कर लेंगे, तो इस बात को ध्यान रखना है।
1: एक किसान भाई जुड़े हैं डॉक्टर साहब। हेलो,
2: हेलो
1: भैया, नाम बताए।
2: लालचंद, हमारा नाम बाराबंकी जिला से बोल रहा है।
1: बहुत स्वागत है लालचंद भैया, सवाल क्या है?
2: खेत में हमारे घर मोथा और यही सब खर बहुत हो गया, इसमें कौन सी दवा?
1: ये बताइए कौन सी फसल है कोई खेत में कि पड़ती है?
2: फसल कोई नहीं है, ऐसे खाली पड़ा है, धान लगाना है उसमें तो खर,
1: देखे
2: खर
1: गर्मी की जुताई कर दें, बस इस समय देखिए मिट्टी पलट हल से गहरी जुताई करके छोड़ दें और खुद ही
0: खत्म हो,
1: इतनी तेज तापमान में, तेज गर्मी में जो भी खरपतवार हैं उनका प्रबंधन हो जाएगा, सबसे कोई भी दवा डालने की जरूरत नहीं है। बहुत धन्यवाद लालचंद भैया बाराबंकी से। डॉक्टर साहब समय कम है, बातें बहुत कुछ हैं, जो कृषि रक्षा रसायनों का प्रयोग है उसमें भी अलग अलग तिकोना निशान होता है, लाल, पीला, नीला, हरा, इसका प्रयोग कैसे करें किसान?
0: देखिए इसमें आप देखेंगे जब भी डब्बे को लेंगे तो इस बात को जरूर समझिएगा कि पहले तो ओरिजिनल हो, उसकी पहचान करेंगे। अभी नया सिस्टम बन गया, QR कोड उसमें लगा रहता है,
1: हाँ।
0: तो QR कोड से पढ़ने की कोशिश करें कि QR कोड में पहली बात तो असली दवा है,
1: हाँ।
0: दूसरा चीज जो उसमें हरा रंग का ट्रेंगल है, कोशिश करिए कि सबसे पहले हरा ही ले जाएं,
1: वो अति सुरक्षित,
0: अति सुरक्षित है, उसके बाद अगले पर जाए नीले रंग पर या पीले रंग पर, और लाल का प्रयोग तो कतई ना करें,
1: बिल्कुल ना करें।
0: वैसे भारत सरकार ने ज्यादातर लाल वालों को बैन ही कर दिया है, अभी कुछ अक्के दुक्के वहीं बचे होंगे लेकिन ज्यादातर बैन हो गए हैं।
1: डॉक्टर साहब गन्ने की फसल की बात करें तो कौन कौन से कीटनाशी जिनका प्रयोग कर सकते हैं?
0: इसमें देखिए करीबन 28 ऐसे पेस्टिसाइड हैं केमिकल, जिसका कि गन्ने में जिसका संस्तुति है,
1: हाँ।
0: भारत सरकार की तरफ से,
1: हाँ।
0: तो आप उनको ले सकते हैं
1: जी,
0: है ना, जैसे 2-3
1: अच्छा होगा किसी विशेषज्ञ की सलाह
0: लें। एक बात यहाँ मैं कहना चाहूंगा, जिसे क्लोरेंटेनली CPTR बोलते हैं लोग शॉर्ट में, उसकी भी कई बार हमारे किसान भाई बोतल खरीद के लाते हैं, उसकी भी दो तरह के आने लगे हैं,
1: हाँ।
0: एक में 18.5% आता है और एक में 47.85% आता है। अब जाने अनजाने में आपको 47.85% वाला लाए
1: और मात्रा वही
0: मात्रा पुरानी वाली डाल दी है 150 ml प्रति एकड़ का, तो मात्रा बहुत ज्यादा चली जाएगी,
1: हाँ।
0: तो आपको देख थोड़ा सा पढ़ लें, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो उसके अंदर लीफलेट रखता है, पर्ची रहती है, उस पर्ची को जरूर खोल लें और उसको ध्यान से पढ़ें कितनी मात्रा लिखी हुई है, उतना ही मात्रा का प्रयोग करेंगे तो उचित होगा।
1: डॉक्टर साहब बहुत सारे किसान भाई आपसे सीधे संवाद किए, कुछ नहीं कर पाए, उनकी भी इच्छा होगी कि आपसे अपने सवालों का जवाब पाएं, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें
0: जी, नोट कर सकते हैं 9910995 8766,
1: हिंदी में
0: 9910558766,
1: यानी
0: 99 100 105 5 और 8766।
1: चलते चलते आज हेलो किसान के

0: माध्यम से किसान भाइयों बहनों का क्या आह्वान करना चाहेंगे?
1: मैं यही कहना चाहूँगा सभी किसान भाइयों को कि खेती बाड़ी पूरे इंटरेस्ट के साथ करें, आधे मन से ना करें, पूरे मन से करें और खेत की निगरानी करते रहें, खेत पर रेगुलर जाएं, ज़रूरत पड़े कोई समस्या दिखती है तो हमारे निकट के कृषि विज्ञान केंद्र या जो हमारा फ़ोन नंबर लिए हमसे संपर्क डायरेक्ट करें या हमारे और भी किसान कॉल सेंटर उस पर कॉल कर लें। दवा का छिड़काव बहुत समझदारी से करें, अनायास दवा का छिड़काव ना करें बिना मतलब का। कई बार ऐसा भी हो सकता है आपका पैसे का भी नुकसान होगा, प्रकृति का भी नुकसान होता है, आपका सेहत का भी नुकसान होगा। सभी को ध्यान में रखें और अच्छी खेती करें।
0: बहुत धन्यवाद डॉक्टर एस एन सुशील साहब, आज आप कार्यक्रम हेलो किसान में आप आए और सीधा संवाद आपने मिठास के किसान भाइयों बहनों से किया। अब आज का मौसम क्या है और चार मंडियों का थोक बाजार भाव, इसको बता रहे हैं हिमांशु और रियाज भैया। नमस्कार
2: हिमांशु भैया।
3: हाँ रियाज भैया,
2: देखो कितनी महत्वपूर्ण बैठक रही और अपने किसान भाई बहन हो फोन के माध्यम से अपने डॉक्टर साहब से अपने जो समस्या रही उसके समाधान प्राप्त की।
3: बिल्कुल,
2: तो इतनी बढ़िया जानकारी दिए के लिए डॉक्टर सत्यानंद सुशील साहब जो उनकी निदेशक हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, इनका भी और डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: हाँ,
2: अब देखो बता दी जाए कि ये जो मौसम के उनके काम इजाज है।
3: बिल्कुल बिल्कुल भैया, तो हमारे पास मौसम है भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ से ने प्राप्त मौसम जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहाँ आज कल परसों यानी 17, 18, 19 के यहाँ संभाग में यहाँ कहूँ कहूँ वर्षा गरज चमक के साथ बौछार पड़े की संभावना है। और चेतावनी में अगर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ तो कोई विशेष चेतावनी नहीं है, पूर्वी में यहाँ कहूँ कहूँ लू चलने की संभावना है। तो भैया खुद अपने हरहा गोरुन के यहाँ और अपने बड़े बुजुर्गों विशेष ध्यान रखें।
2: तो ये तो रही जो है मौसम की जानकारी, और अब अपने पंचन से ये बता दी जाए कि जो अपन ईमेल आईडी है कार्यक्रम के farmandhome@gmail.com ये पर जो है मेल करके जो उनके सुझाव है वो का भेज सकते हैं और जो कार्यक्रम सुनना चाहते हैं उनके बारे में भी अवगत करा सकते हैं।
3: बिल्कुल,
2: और अब देखो धीरे धीरे घड़ी ई इशारा कर रही है कि अपने कार्यक्रम के समय जो उन्हें वो समाप्त हो ही रहा है। तो पंचन सलीन जाए आज्ञा, जय हिंद।
4: इफको नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली।
5: 30% नाइट्रोजन का असर दमदार इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे नैनो यूरिया प्लस और नैनो डीएपी के निर्माता इफको।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो किसान, मीडियम वेव के मीटर पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: PLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
5: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PMsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, बेहतर सुरक्षा से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार। नीट पुनर्परीक्षा के उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मिलेगी 50% की छूट। मुख्यमंत्री ने जरूरतमंद उम्मीदवारों के लिए ठहरने की अस्थायी व्यवस्था करने के भी दिए निर्देश। बदायूं में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 3 घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर जताया दुख। और लखनऊ में खेला जा रहा है भारत अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय मैच। टीम इंडिया ने जीत के लिए खड़ा किया 403 रनों का लक्ष्य। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित ग्रेड ए के 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आप सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन को बढ़ाने के सारथी हैं। श्री योगी ने कहा कि ड्यूटी के प्रति सजगता और हर कार्य में गंभीरता होनी चाहिए। ड्यूटी के दौरान रील बनाना अनुशासनहीनता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा के बेहतरीन वातावरण में अर्थव्यवस्था को गति मिली है। 9 वर्ष में यूपी की अर्थव्यवस्था तथा प्रति व्यक्ति आय 3 गुना से अधिक बढ़ी है।
1: हमने प्रदेश के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी लाने का कार्य किया, भर्ती आयोगों में, बोर्डों में, उसके परिणाम आए हैं। हमने 9 लाख से अधिक तो केवल सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो वातावरण बना है, लाखों नौजवानों को उसके माध्यम से निवेश से और उद्योगों की संख्या, आप सोचो कि यूपी के अंदर कुल 14,000 बड़े कारखाने थे, कुल 14,000, इतनी बड़ी आबादी का राज्य। एमएसएमई लगभग बंद हो गया था। आज हमारे पास बड़े कारखानों की संख्या इन 9 वर्ष में 32,000 से अधिक हुई है।
0: प्रदेश में नीट पुनर्परीक्षा के उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा में लगभग 3.5 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि परीक्षा के लिए दूसरे जिलों में जाने वाले और वहां ठहरने के लिए स्थान की समस्या से जूझ रहे उम्मीदवारों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाए। इस संबंध में परिवहन निगम ने निर्देश जारी कर दिए हैं। किराए पर छूट की व्यवस्था 20 और 21 जून को लागू रहेगी। उधर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
2: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में हुई प्रगति, आत्मनिर्भरता के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की पर भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुरक्षित भारत ही विकसित भारत की आधारशिला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत ने सुरक्षा और सामरिक सामर्थ्य के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। इसी क्रम में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने वाराणसी में कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है।
3: जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर सबका साथ देने का काम किया है, इसलिए प्रधानमंत्री जी को और हम लोग दीर्घायु होने की कामना भी करते हैं, ताकि आने वाले भविष्य में जो प्रधानमंत्री जी का सोच है कि 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें हमका योगदान हो सके।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
1: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
0: वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुँच प्रदान कर रहा है।
2: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीट वेव की परिस्थितियों को देखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि बढ़ाकर 24 जून तक कर दी है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब प्रत्येक वर्ष 20 मई से 24 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा और 25 जून से विद्यालयों में नियमित पठन पाठन आरंभ होगा। एक रिपोर्ट।
4: नई व्यवस्था से पूरे प्रदेश में एक रूपता सुनिश्चित होगी और विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा शिक्षकों को स्पष्ट शैक्षणिक कैलेंडर उपलब्ध हो सकेगा। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि विद्यालय खुलने से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 220 कार्य दिवस और नियमित पठन पाठन सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारियों को भी स्थानीय स्तर पर अवकाश घोषित करने से पूर्व इस विधिक प्रावधान को ध्यान में रखने के निर्देश दिए गए हैं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
3: बदायूं जिले के थाना उजानी क्षेत्र में ग्राम बुटला के पास आज एक ट्रैक्टर और ई रिक्शा में हुई टक्कर में 6 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 3 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदायूं में हुई दुर्घटना में जान माल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि उनकी सहानुभूति उन सभी के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे में हुई जनहानि पर गहरा शोक जताया है। लखनऊ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जा रहा है। शुभमन गिल और ईशान किशन के शतकों की बदौलत भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 403 रनों का लक्ष्य रखा है। समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 2 विकेट के नुकसान पर 86 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा बेहतर सुरक्षा से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार। नीट पुनर्परीक्षा के उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मिलेगी 50% की छूट। मुख्यमंत्री ने जरूरतमंद उम्मीदवारों के लिए ठहरने की अस्थायी व्यवस्था करने के भी दिए निर्देश। बदायूं में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 3 घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर जताया दुख। और लखनऊ में खेला जा रहा है भारत अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय मैच। टीम इंडिया ने जीत के लिए खड़ा किया 400

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत हैंडिंगले लीड्स में भारत और नीदरलैंड के मध्य खेले जा रहे टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय होने को है रात के 8:45। अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हॉर्मुज जल

0: पूर्व मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियो में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में

0: और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के समक्ष ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।

0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
1: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
2: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
5: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर

0: 72,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर ₹94.53 पर बंद हुआ।
1: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज़, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian. Issues of seafarers' safety and opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment to innovation, artificial intelligence and technology cooperation at inauguration of India Pavilion at Viva Tech 2026 in Paris. Railways approves multiple projects worth over 1,200 crore rupees to improve connectivity and safety. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. And in men's cricket, Afghanistan chase target of 403 runs set by India in second ODI of 3-match series in Lucknow. A crucial bilateral meeting was held between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump at Evian, France on the sidelines of G7 summit this evening. During the talks, issues of seafarers' safety and opening of Strait of Hormuz figured prominently. Prime Minister Modi commended President Trump for the progress in peace efforts in West Asia. The Prime Minister said that India has consistently emphasized the importance of the freedom of navigation and all should work together to place a particular emphasis on it. Mr. Modi added that lakhs of Indian seafarers in maritime trade are on duty in different oceans of the world and their safety is of utmost importance to India.
3: Excellency, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।

0: A resident of Varanasi, Priyanshu Singh, said that the corridor is providing ease of access to pilgrims.
1: Kashi mein Modi ji ne bahut kaam kiya hai.
2: Prime Minister Narendra Modi has done a lot of work in Kashi. Earlier, the road leading to the temple used to be quite narrow, which caused a lot of inconvenience. But now, since the corridor has been built, the crowd management is more efficient and people can visit and have a darshan more easily.
1: Darshan karne mein kaafi aasani hoti hai.
0: Saklain Akhtar, Akashwani News, Delhi.
3: The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal for tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Bihar, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal tomorrow. The IMD said that conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into some more parts of Telangana, Odisha, Jharkhand, Bihar and some parts of Chhattisgarh during the next 4 to 5 days. In cricket, chasing a target of 403 runs set by India, Afghanistan were 225 for 8 in 42 overs in the second ODI of the three-match series in Lucknow when reports last came in. India were bowled out 402 in 49.5 overs. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian. Issues of seafarer safety and opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment to innovation, artificial intelligence and technology cooperation at inauguration of India Pavilion at Viva Tech 2026 in Paris. Railways approves multiple projects worth over 1,200 crore rupees to improve connectivity and safety. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. And in men's cricket, Afghanistan chased target of 403 runs set by India in second ODI of three-match series in Lucknow. That is all in the news at 9. Good night.
4: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एवियों में G7 सरबराह इजलास के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग की। मीटिंग में बहरी जहाजों के अमले की सलामती और आबनाई हुरमुज को खुला रखने के उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स, यूरोपीय कौंसिल के सदर अंतोनियो कोस्ता और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ भी दोतरफा मीटिंगें की। पेरिस में विवाटेक 2026 के दौरान इंडिया पवेलियन की इफ्तिताही तकरीब में भारत और फ्रांस ने जिद्दत तराजी, मस्नूई जहानत और तकनीकी ताउन के फरोग के अजम का इयादा किया। रेलवे ने कनेक्टिविटी और मुसाफिरों की हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई प्रोजेक्टों की मंजूरी दी। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों और मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खत्ते में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और मर्दों के क्रिकेट में लखनऊ में 3 एक रोजा बैन अलावामी मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 403 रन का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। फ्रांस के शहर एवियों में G7 सरबराह इजलास 2026 के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक अहम दोतरफा मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान वजीर आजम मोदी ने मगरबी एशिया में अमन के कयाम की कोशिशों में होने वाली पेशरफ्त पर सदर ट्रंप की तारीफ की। वजीर आजम ने कहा कि भारत हमेशा समंदरी रास्तों पर जहाजों की आमदोरफ्त की आजादी की अहमियत पर जोर देता रहा है और तमाम मुल्कों को इसके तहफ्फुज़ के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वजीर आजम ने मजीद कहा कि दुनिया के मुख्तलिफ समंदरों में बहरी तिजारत के शोबे से वाबस्ता लाखों भारतीय मल्लाह अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और उनकी सलामती भारत के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है।
5: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्व

0: महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेयरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सलेंस, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मस्नूई जहानत एआई के महफूज तेज रफ्तार और मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के मौजू पर मुनक्दा वर्किंग लंच में शिरकत की। इस इजलास में G7 के रुकन मुल्कों, शराकतदार ममालिक और मस्नूई जहानत की मारूफ कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान शरीक हुए, जहां डिजिटल इख्तरा के मुस्तकबिल पर ख्यालात का तबादला किया गया। वजीर आजम मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स ने इलाकाई और आलमी हालात व वाकयात पर बातचीत की, जिसमें मगरबी एशिया की सूरत हाल और रूस यूक्रेन तनाज़ा भी शामिल था। दोनों रहनुमाओं ने दोतरफा ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायजा लिया और भारत जर्मनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में नई रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। इस सिलसिले में चांसलर मर्स के भारत के कामयाब दौरे और रवां साल भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती मुआहदे के मुजाकरात की तकमील का भी जिक्र किया गया। चांसलर मर्स ने वजीर आजम मोदी को इस साल जर्मनी में मुनक्किद होने वाली 8वीं भारत जर्मनी बैन हुकूमती मुशावरत में शिरकत की दावत दी। वजीर आजम मोदी ने सरबराह इजलास के मौके पर यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फोन देर लेन और यूरोपीय कौंसिल के सदर अंतोनियो द कोस्टा के साथ भी मीटिंग की। पेरिस में जारी विवाटेक 2026 में भारतीय पवेलियन के इफ्तिताह के मौके पर भारत और फ्रांस ने इख्तराम मस्नूई जहानत और टेक्नोलॉजी के शोबे में तावुन के अपने अहद को दोहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल और फ्रांस की मस्नूई जहानत और डिजिटल उमूर से मुतालिक वजीर एनेली हेनाम्प ने दोनों ममालिक के माबैन कलीदी शराकतदारी की बढ़ती हुई अहमियत को उजागर किया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इख्तराकारों और स्टार्टअप से खिताब करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुएल मीखों के जरिए भारत फ्रांस इख्तरा के साल 2026 के ऐलान के जरिए भारत और फ्रांस की शराकतदारी मजीद मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि मस्नूई जहानत एआई के दौर में भारत को कई नुमाया फवायद हासिल हैं, जिनमें नौजवान आबादी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी स्टेम के माहिरीन की बड़ी तादाद, मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा और जमहूरी तर्ज हुक्मरानी शामिल हैं। उन्होंने भारत फ्रांस इख्तरा के साल का जिक्र करते हुए कहा कि स्टार्टअप्स और तहकीकी इदारों के जरिए बढ़ता हुआ तआवुन नई राहों और मौके को जन्म दे रहा है। काबिले जिक्र है कि विवाटेक 2026 में कायम इंडिया पवेलियन कौमी सतह के सबसे बड़े पवेलियन में शुमार होता है, जहां भारत के तेजी से फरोग पाते हुए स्टार्टअप्स और इख्तराई माहौलियाती निजाम की भरपूर नुमाइश की जा रही है। पेरिस से महेश चोबड़े की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के अपने दौरे के एक हिस्से के तौर पर आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय बिरादरी के अफराद उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उनके खैर मकदम के लिए तैयारियां जारी हैं। कल सुबह वजीर आजम मोदी सरकर्दा चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान के साथ मीटिंगें करेंगे और तवक्को है कि यह तबादला ख्याल दोपहर तक जारी रहेगा। इसके बाद वजीर आजम मोदी विवाटेक समिट में शिरकत करेंगे, जो कि यूरोप की टेक्नोलॉजी और इख्तराअ से मुतालिक एक अहम मीटिंग है। तवक्को है कि जनाब मोदी इस मौके पर खिताब भी करेंगे। शाम में वजीर आजम एक कम्युनिटी तकरीब में शिरकत करेंगे और भारतीय बिरादरी के साथ तबादला ख्याल करेंगे। भारतीय रेलवे ने गुजरात, महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल और मध्य प्रदेश में रेलवे की गुंजाइश बढ़ाने, माल बर्दारी के निजाम को बेहतर बनाने, हिफाजती इंतजाम को मजबूत करने और शहरी नकलो हमल के बुनियादी ढांचे को जदीद बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपए से जायद मालियत के मुतादिद बुनियादी ढांचा जाती मनसूबों की मंजूरी दी है। इन मंसूबों में गुजरात के एक अहम रेलवे सेक्शन पर दोहरी लाइन बिछाने, महाराष्ट्र में मालगाड़ियों के लिए एक नई कॉर्ड लाइन तामील करने, मशरकी रेलवे में सिग्नलिंग निजाम को जदीद बनाने और इंदौर में एक अहम रोड ओवर ब्रिज की असरे नौ तामीर शामिल है। इन इकदामात से रेलवे ऑपरेशंस की कारकर्दगी में इजाफा, मसरूफ रेलवे राहदारियों पर दबाव में कमी, मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात की फराहमी और मौशी सरगर्मियों को फरोग मिलने की तवक्को है। कच्छ के खित्ते में रेलवे राबते को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए मगरबी रेलवे के 49 किलोमीटर तवील आदिपुर भुज सेक्शन की दोहरी लाइन बिछाने के मंसूबे को तकरीबन 493 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई है। इस मंसूबे से इलाके में मुसाफिरों और माल बर्दारी दोनों के लिए बेहतर सहूलतें फराहम होंगी।

0: इस तरह भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र में 3.7 किलोमीटर तवील सोमटाने चिखली कोडलाइन की तामीर की मंजूरी दी है, जिस पर तकरीबन 172 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जदीदकारी के एक अहम इकदाम के तहत मशरूकी रेलवे में 450 करोड़ रुपए के सिग्नलिंग अपग्रेडेशन मंसूबे को भी मंजूरी दी गई है। रेलवे और इत्तला तो नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज तकरीबन 600 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से पुणे रेलवे स्टेशन की बड़े पैमाने पर तौसी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा 6 प्लेटफार्मों के साथ मजीद 6 नए प्लेटफार्म तामीर किए जाएंगे, जिसके बाद प्लेटफार्मों की कुल तादाद 12 हो जाएगी। इसके अलावा कामकाज की कारकर्दगी और मुसाफिरों की हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम की जगह जदीद इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम नस्ब किया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर अमल करते हुए भारत ने नुमायां तरक्की की है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए मुतअद्दिद अहम इक़दाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज़ आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम मुल्क के सकाफती विरसे के तहफ्फुज़ और फरोग के लिए हुकूमत के जरिए किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारत ने अपनी तहजीबी विरासत के तहफ्फुज़, फरोग और उसका जश्न मनाने के लिए कई तारीखी इकदाम किए हैं, जिनसे लाखों शहरियों में फख्र का जज्बा पैदा हुआ है। अहम वाकयात में सबसे अहम वाकया जनवरी 2024 में पेश आया, जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में अजीमुशान श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को अंजाम दिया। ये सदियों पुरानी एक ख्वाहिश की तकमील थी। हाल ही में मंदिर का दौरा करने वाले एक अकीदतमंद पंकज जारिया ने आकाशवाणी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए अपने तजुर्बात बयान किए।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में महाकाल लोक प्रोजेक्ट का पहला मरहला अक्टूबर 2022 में कौम के नाम वक्फ किया गया। ये अजीम कॉरिडोर शानदार मुजस्मों, दीवारों पर बने फन पारों और तामीरात पर मुश्तमिल है, जो भगवान शिव की जिंदगी और उनसे मंसूब रिवायात की अक्कासी करते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी और मस्नूई जहानत पर मबनी निगरानी के निजाम से आरास्ता महाकाल लोक विरासत और जिद्दत का हसीन इम्तिजाज पेश करता है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसका इफ्तिताह दिसंबर 2021 में किया गया था, ने यात्रियों के सफर के तजुर्बे को यकसर बदल कर रख दिया है। ये कॉरिडोर मंदिर को बराह रास्त दरियाए गंगा से जोड़ता है। 5.5 एकड़ पर मुहित इस प्रोजेक्ट ने लोगों की रसाई को बेहतर बनाया है और भारत के सबसे मौजिज रूहानी मराकज में से एक को नई जिंदगी बख्शी है। आकाशवाणी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए वाराणसी के रहने वाले प्रियांशु सिंह ने कहा कि ये कॉरिडोर यात्रियों की आमद रफ्त में काफी आसानी फराहम कर रहा है।
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये इनकलाबी इकदामात इस बात की अक्कासी करते हैं कि मुल्क अपनी सकाफती जड़ों के तहफ्फुज़ के साथ साथ एतमाद के साथ मुस्तकबिल की जानिब गामज़न है। सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: दिल्ली पुलिस के खसूसी सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के मुबैना हैंडलर शहजाद भट्टी से वाबस्ता 8 रुकनी कसीर रियासती दहशतगर्दी मॉड्यूल के मजीद 5 मुलजमों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन गैंग बेस्ट 2.2 के दौरान मस्कूरा मॉड्यूल के 3 अरकान को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान को दिल्ली और पड़ोसी रियासतों में पुलिस अहलकारों को निशाना बनाने, पाकिस्तान में मौजूद राबताकारों की तशहीर करने और ISI की सरपरस्ती में मुबैना तौर पर कायम तंजीम तहरीक तालिबान हिंदुस्तान को फरोग देने की जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5 हथियार, शहजाद भट्टी नेटवर्क से मुतालिक पोस्टर्स और दीगर काबिल एतराज मवाद भी बरामद किए, जिनमें पुलिस अहलकारों को धमकियां देने वाली वीडियोज भी शामिल हैं। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आपको सुनवा रहे हैं पैपॉन की आवाज़ में जोर लगा के हाईशा इस फिल्म का गीत।

0: जोर लगा के हईशा, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाज थी पेपॉन की।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
0: एक बार फिर हम हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर। अब सुनिए तुलसी कुमार और अरिजीत सिंह की आवाजों में एयरलिफ्ट फिल्म का गीत।

0: तुलसी कुमार और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में अभी आपने सुना एयरलिफ्ट फिल्म का गीत, और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमियो में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
1: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के

0: बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
1: दो प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। थर्ड प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर फोर्थ प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आर कंट्री।
0: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: के जन कल्याण के। नाउ वी ब्रिंग यू एन इंटरव्यू।
1: 1.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है रात के 11:34:10। हमारी आज की ये सभा अब समाप्त होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।